हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। आज सोमवार है, सकसम्मत 1948 के श्रावण माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

0: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। इसके ठीक बाद विविध भारती के कार्यक्रम वंदनवार, चिंतन, श्री रामचरित मानस, संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।

0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक EOD अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

इस देशभक्ति गीत के साथ ही आज का वंदनवार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 276, जिसमें आज आप सुनेंगे किष्किंधा कांड।

सरिता, इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रृंखला वर्षा चौमासा, इसका 10वां भाग। कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, प्रस्तुति कांचन प्रकाश की। कार्यक्रम का समय सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:00, 7:30 पर। हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8:00 और 8:15 पर। सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम, आलेख और स्वर राजेश झा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप दोबारा दिन में 2:00 सुन सकते हैं। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30, आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर, पुनः प्रसारण रात्रि 9:30। रंग तरंग कार्यक्रम दिन में 11:00, 12:00 हिंदी में समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। सुरीला सफर आप तय करेंगे, दोपहर 1:00 फेसबुक कमेंट्स द्वारा श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं। दोपहर समाचार का समय होगा 2:15 और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 3:00 और 4:00 होगा पिटारा कार्यक्रम। सेहतनामा के अंतर्गत सुनिए हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा से यूनुस खान की बातचीत। संपादन सहायक काजल भद्रगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 4:00। तराने नए पुराने, कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक और इसमें बीच में आप 6:00 सुनेंगे समाचार। 6:30 पर शाम में सुनिए झरोखा, आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। संध्या रंजन का समय होगा शाम 6:35 और शाम 7:00 जयमाला। इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से में आज आप सुनेंगे आसपास फिल्म के गीत। हवा महल में सुनिए नाटिका गुड्डी की माँ, लेखन हरिशंकर परसाई, निर्देशन मधुप शर्मा। समय रात्रि 8:00। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर, 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या। रात्रि 9:00 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए और छाया गीत कार्यक्रम होगा रात 10:00, आलेख और स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम, और रात 11:00 रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

रात्रि 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए, और छाया गीत कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। आलेख और स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात ये कार्यक्रम, और रात 11 बजे रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस का 276वां भाग। इसमें आप सुनेंगे किष्किंधा कांड।

सागर तट पर श्रीराम की सेना डेरा डाले हुए है। रीछराज जांबवान वानर सेना को उपदेश कथाएं सुना रहे हैं। समीप ही पर्वत कंदरा में भूखे बैठे जटायु के भाई वृद्ध संपाति हर्षित होते हैं कि आज घर बैठे विधाता ने उनके लिए आहार भेज दिया। कंदरा से बाहर संपाति को देख वानर भयभीत होते हैं, किंतु अंगद को जटायु का स्मरण हो आता है जिन्होंने प्रभु सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अपने छोटे भाई जटायु के प्राण विसर्जन की बात सुनकर संपाति को वास्तविकता का ज्ञान होता है। वे सागर तट पर भाई को तिलांजलि देकर युवावस्था की अपनी और जटायु की उस उड़ान की कथा सुनाते हैं जब दोनों भाई सूर्य के निकट पहुंच गए थे। जटायु तो थककर लौट आए थे, किंतु युवावस्था के उत्साह में स्वयं उन्होंने अपने पंख जला लिए थे। उनका उपचार करने वाले दयालु सन्यासी चंद्रमा ने उन्हें तब आश्वस्त किया था कि त्रेता युग में स्वयं परम ब्रह्म के दूतों से मिलकर तू पवित्र हो जाएगा। आज वही अवसर आ गया था। संपाति ने अपनी गीत की दूरदृष्टि का लाभ उठाया और उस स्थान का पता बताया जहां रावण ने सीता को छिपा रखा था।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों नमस्कार। शुभा जी आपका विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: शुभा जी, कल आपने हमें दादरा सुनाया है और एक बहुत ही सुंदर रचना जो वर्षा ऋतु से संबंधित, जैसे बोल कितने ही सुंदर और उसमें आपने एक पद भी जोड़ा
1: जी।
0: और बहुत ही सुंदर रचना, कुल मिला के हमें बहुत आनंद आया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि ठुमरी दादरा,
1: जी
0: मतलब ठुमरी पहले गाई जाती है और दादरा बाद में, या ऐसा
1: नहीं? ऐसा वैसे ठुमरी का जो विस्तार मैंने बताया था वो ज़्यादा होता है, अधिकांश उसकी लय भी थमी हुई रहती है, इसलिए लोग ठुमरी पहले गाते हैं और बाद में दादरा इत्यादि, दादरा हो या फिर ऋतु संबंधी जो चीज़ें हैं जैसे कजरी इत्यादि वो गाई जाती हैं।
0: जी
1: एक नमूने के तौर पे वो दादरा प्रस्तुत किया था
0: जी
1: और
0: जी
1: ठुमरी बाद में भी गा सकते हैं, स्पेशली जैसे अगर कोई ऐसी ठुमरी हो जैसे बंदिश की ठुमरी तो वो गाई जा सकती
0: तो
1: है
0: बंदिश की ठुमरी का क्या मतलब होता है?
1: जी। इसमें जो बंदिश जो है वो सर्वोपरि है, और जैसे बंदिश में मैंने पहले भी कहा था एक कार्यक्रम में कि गढ़ी हुई चीज़ जिसमें कि एक एक मात्रा पे क्या चीज़ रखनी है, कौन सा शब्द, कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन रखना है, वो पूरा गढ़ा हुआ मामला होता है।
0: जी
1: ये नहीं कि आपको जो आपकी जो गति है उसमें एक मात्रा और दूसरे मात्रा के बीच में इतना समय हो कि आप कुछ उसके एक बना के कुछ नया गढ़ के कह सकते हैं, ऐसा नहीं। बंदिश जो है वो बिल्कुल एक एक
0: बंधा
1: मात्रा
0: हुआ
1: के बंधा हुआ है, तो बंदिश की ठुमरी भी इसी प्रकार की, बल्कि इतनी अच्छी तरह गढ़ी हुई रहती है कि कई बार थोड़ा सा संदेह भी ये होता है कि ये ख्याल है या ठुमरी है। और बहुत सारी ऐसी बंदिश की ठुमरियां हैं जो कि कुछ लोग ख्याल के नाम से गाते हैं और कुछ लोग बंदिश की ठुमरी के नाम से गाते
0: जी
1: हैं। इसका संबंध ठुमरी का और बंदिश की ठुमरी का संबंध नृत्य से भी है। तो कहा जाता है कि ठुमरी की जब उत्पत्ति हुई तो वो नृत्य के साथ गाई जाने वाली
0: जी
1: रचनाएं विशेष रूप से जो बनती थी वो ठुमरी के रूप में आज प्रचलित हैं
0: जी
1: और परिवर्तित होके भी आई हैं। तो बंदिश की ठुमरी का नृत्य से भी संबंध है, और जो उसमें जो लग्गी का जो अंश है, जब जो तबले पे बजाई जाती है, जो बाद में आप कार्यक्रम में सुनेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि वो एक संबंध कैसे स्थापित होता है।
0: उसमें बोल भी तो बिल्कुल बंधे हुए होंगे,
1: बिल्कुल
0: तराश
1: बिल्कुल
0: तराश कर
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सुनाइए ना।
1: ये मैंने मुझे मिली ये चीज़ मंदिर के साहित्य से।
0: जी
1: तो कृष्ण का संबंध जो है वो भारतीय कलाओं से सर्वमान्य है।
0: और वर्षा ऋतु में ये कृष्ण जन्माष्टमी तो होती ही है।
1: बिल्कुल, राधा जी का जन्म भी वर्षा ऋतु में ही होता
0: जी
1: है, और फिर जो लीला हैं, कृष्ण लीलाएं हैं, वो वर्षा में तो बहुत

0: लिखा है संतों ने, संत कवियों ने, तो ये एक पद मैंने लिया है। आज पिय पावस रैन अंधेरी, पावस की रैन वो भी घनी स्याह काली अंधेरी। आज पिय पावस रैन अंधेरी, लाल रसिक मणि उठ किन देखहु, दामिनी लरजत नेरी। इतने पास आ गई, मतलब लगता है कि बिल्कुल कमरे के अंदर दामिनी दमक रही है,
1: हाँ
0: बिजली चमक रही है। आज पिय पावस रैन अंधेरी, लाल रसिक मणि उठ किन देखहु, दामिनी लरजत नेरी। जल बोझक झुके आए बदरा, इतने ज्यादा भारी हो गए हैं जल लिए हुए बादल कि वो लगता है कि बिल्कुल अपने बोझ से ढरक जाएंगे।
1: जी,
0: जल बोझक झुके आए बदरा, मोरन कुहुक घनेरी,
1: मोरन की कुक कुहुक।
0: हाँ घनेरी, अरु गहरी गर्जन सुनि दिस दिस, हर दिशा से आ रही है बादलों की गर्जन। अरु गहरी गर्जन सुनि दिस दिसी, नींद अहुर गई मेरी, उचट गई मेरी नींद। तुम आलस बस सुनत न नागर, वर्षत बन सुख ढेरी। बन में देखो, कुंज में देखो, वर्षा जो हो रही है वो सुख वर्षा हो
1: वर्षा हो
0: रही है।
1: रही है।
0: चौंक परी सोवत ते पिय पिय, कहत पपीहा टेरी। ये पद है।
1: तो शुभा जी, अब देर क्यों, ठेठ
0: नहीं
1: बंदिश सुनते हैं।
0: बिल्कुल, ये देश राग में निबद्ध है और सितार खानी या अद्धा जो ठेका है उसमें बांधी गई
1: मतलब
0: है।
1: सितार खानी ही को अधा कहते
0: जी हाँ
1: हैं।
0: जी
1: जी, तो अनीश जी हमें समझाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
2: सोला मात्रे का सितार खानी या अद्धा ताल।

0: श्रोता मित्रों, शुभाजी से हम सुन रहे थे राग देश में बंदिश की ठुमरी, आधा ताल में निबद्ध, और आज हम इसी के साथ आगे चाहेंगे। कल फिर मिलते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम में वर्षा चौमासा श्रृंखला के अंतर्गत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने

0: अंकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं महल फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। नक्षब जाराचवी ने इसे लिखा है और खेमचंद प्रकाश का संगीत।

श्रोताओं, आज पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस बेमिसाल संगीतकारों में से एक खेमचंद प्रकाश को, जिनका संगीत अपनी मधुरता और भावनात्मक गहराई के लिए आज भी याद किया जाता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं रिमझिम फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार की, भरत व्यास के बोल और संगीत खेमचंद प्रकाश का।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खुर्शीद की आवाज में तानसेन फिल्म का गीत। डी एन मधोक ने इसे लिखा है, खेमचंद प्रकाश का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं इस अंतराल के बाद विविध भारती कार्यक्रम से भूले बिसरे विविध भारती से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के अंतर्गत ये गीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: आइए अब गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपको सुनवाते हैं हिल स्टेशन फिल्म का गीत। एसएच बिहारी के बोल हैं, हेमंत कुमार का संगीत।

0: अभी आपने सुना एक गांव की कहानी। इस फिल्म का गीत तलत महमूद की आवाज में। सलील चौधरी ने इसे लिखा था और संगीत था शैलेंद्र का।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त सचिन के तरफ से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से।

दौलत से इंसान को जो इज्जत मिलती है वह उसकी नहीं, उसकी दौलत की इज्जत होती है। मुंशी प्रेमचंद्र। सुविचार के उपरांत अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास के ऊपर। आज 10 अगस्त है। आज के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो आज ही के दिन यानी कि 10 अगस्त सन 1793 ईस्वी में पेरिस का प्रसिद्ध लूवर संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया था। तो वहीं सन 1821 ईस्वी में मिसौरी अमेरिका का 24वां राज्य बना। और अब बात सन 1990 की। आज ही के दिन यानी कि 10 अगस्त को ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मैगेलन अंतरिक्ष यान शुक्र की कक्षा में प्रवेश किया। और अब बात सन 2001 की। अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को रूस का सशर्त समर्थन मिला। तो वहीं सन 2004 ईस्वी में आज ही के दिन यानी कि 10 अगस्त को ही संयुक्त राष्ट्र और सूडान के बीच दारफूर कार्ययोजना पर हस्त

हस्ताक्षर हुआ था, तो वहीं सन 2010 ईस्वी में भारत ने उपग्रह स्थिति तंत्र आधारित विमान प्रचालन तंत्र गगन का सफल परीक्षण किया था। और सन 2018 ईस्वी में प्रधानमंत्री ने जैव ईंधन दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन्य जीव, वन्य और तटवर्ती नियमन क्षेत्र से संबंधित मंजूरी देने के लिए परिवेश वेब पोर्टल की शुरुआत की। तो श्रोताओं, ये था आज का इतिहास। और अब जान लेते हैं आज के दिन जन्म लेने वाले महान विभूतियों के नाम। तो सबसे पहले नाम आता है विष्णु नारायण भातखंडे का, जिनका जन्म आज ही के दिन 10 अगस्त सन 1860 ईस्वी में हुई थी। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। सन 1894 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के चौथे राष्ट्रपति वी.वी. गिरी का जन्म हुआ।

विष्णु नारायण भातखंडे का, जिनका जन्म आज ही के दिन 10 अगस्त सन 1860 ईस्वी में हुई थी, वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। सन 1894 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म हुआ, तो वहीं सन 1975 ईस्वी में झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी जन्म हुआ था, और सन 1963 ईस्वी में प्रसिद्ध महिला राजनेता और सांसद रही फूलन देवी का जन्म हुआ।

और अब श्रोताओं जान लेते हैं आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले महान व्यक्तियों के नाम। तो सन 1980 ईस्वी में सरस्वती देवी ने दुनिया को अलविदा कहा। वे भारत की पहली महिला संगीतकार थीं। वहीं सन 1986 ईस्वी में अरुण कुमार श्रीधर वैद्य ने दुनिया को अलविदा कहा। वे भारतीय सेना के 13वें थल सेनाध्यक्ष थे। तो सन 1999 ईस्वी में पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय ने अपनी आखिरी सांसें ली। वे भारतीय संस्कृत के विद्वान थे। और सन 2021 ईस्वी में बालाजी तांबे, जो कि भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य तथा आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। तो श्रोताओं ये थे आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले लोग। कार्यक्रम में आगे जानेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक के गतिविधियाँ। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक गीत।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और अब एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक के गतिविधियों पर। कला एवं संस्कृति विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान 2026 को लेकर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सपर जिला अधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जीविका डीपीएम, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी और जिला खेल पदाधिकारी, अन्य कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक स्तर पर चलाते हुए हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2026 को 9 अगस्त से 17 अगस्त तक के भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा हर पंचायत में दलित और महादलित टोलों में सुगमता से झंडा वितरण करने का निर्देश दिया गया।

जिले के चर्चित कथाकार नर्मदेश्वर की साहित्यिकी उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। उनकी चर्चित कहानी कंघी को बिहार के विश्वविद्यालयों के एमए हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब यह कहानी बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एमए हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। वहीं उनकी कहानी बीज को

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पढ़ें और बढ़ें श्रृंखला के तहत तैयार की गई अन्न का साहित्य पठन में शामिल किया गया है।

रोहतास के कोचस में विश्व आदिवासी दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम को प्रमोद पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार खरवार समाज के उत्थान के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनका विकास कर रही है। समारोह को संबोधित करते हुए आयोग के सदस्य राजू खरवार ने कहा कि बिहार में निवास करने वाले हमारे किसी भी भाई को यदि कोई प्रताड़ित करता है तो उसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब बात विक्रमगंज की। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अनुमंडल क्षेत्र में तैयारियां काफ़ी तेज हो गई है। आगामी 15 अगस्त को लेकर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई और सजावट का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, देशभक्ति गीतों, भाषण, नृत्य एवं अन्य प्रस्तुतियों की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं।

रोहतास वन प्रमंडल के वन प्रमंडल पदाधिकारी स्टालिन फिडल कुमार के निर्देशानुसार और जिला शिक्षा पदाधिकारी के समन्वय से कल यानी कि रविवार को बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मौके पर उपस्थित फॉरेस्टर अमलेश कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वी को सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और बच्चे इस बदलाव के सबसे बड़े संवाहक हैं। विद्यालय के निर्देशक ने शिवानी कुमार ने वन विभाग की इस पहल की सराहना की और बच्चों को अपने जीवन में कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प दिलाया।

नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत कैमूर पहाड़ी के ऊपर स्थित बरकट्टा गांव में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज ने एकजुट होकर अपनी संस्कृति, अधिकारों और पहचान की बात बुलंद की। कार्यक्रम में जल, जंगल और जमीन को जीवन एवं असीमता से जोड़ते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा और वीर बुद्ध भगत और स्वर्गीय शिबू सोरेन एवं हरिप्रसाद खरवार के तैलचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई।

विद्यालय दमनपुर में बना बिहार का पहला संगीत कक्ष। अब विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ संगीत की तान भी गूंजने लगी है। अब सुर ताल की बारीकियां आसानी से सीख सकेंगे। शैक्षणिक के गतिविधियों से होगा सर्वांगीण विकास। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा आम उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्युत आपूर्ति प्रमंडल भभुआ में एक विशेष हेल्प डेस्क काउंटर स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में विद्युत विभाग द्वारा लगातार जागरूकता एवं सुविधा संबंधी पहल की जा रही है। इस क्रम में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पटना भभुआ कार्यालय में स्थापित इस हेल्प डेस्क काउंटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा एवं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्प डेस्क का काउंटर पर आने वाले उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना योजना के तहत मिलने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण, अधिकृत विक्रेता के माध्यम से सोलर संयंत्र की स्थापना, नेट मीटरिंग तथा बैंक ऋण सुविधा सहित योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

भभुआ में इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नए नामांकन और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया है। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी इग्नू के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SVP कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर अजीत कुमार राय ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी बिना किसी विलंब के 16 अगस्त से पूर्व अपना नामांकन सुनिश्चित कर लें।

कृषि विज्ञान केंद्र भभुआ द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए महिला किसानों को तैयार किया जा रहा है ताकि उपज की गुणवत्ता बेहतर हो सके। रसायनों के बढ़ते उपयोग के इतर प्राकृतिक तरीके से खाद्यान्न उपजाए जा सके, इसके लिए किसान सखियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रविवार को पिछले 5 दिनों से चल रहे इस प्रशिक्षण का समापन हुआ। इस दौरान महिला किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई।

तो श्रोताओं, ये था स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। और अब जान लेते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियाँ। हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद है दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और प्रभात खबर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य। इस खबर को सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण के हवाले से खबर है कि शिक्षा में सुधार को सरकार लगाएगी सहयोग शिविर, छात्रों से होगा संवाद। हिंदुस्तान लिखता है कि परीक्षा और शिक्षा में सुधार के लिए दो अलग अलग राज्य स्तरीय कमेटी बनेगी। शिक्षा से जुड़े चार विभागों का एक कल्याण निदेशालय होगा।

प्रभात खबर ने इसी खबर को लिखा है कि शिक्षा विभाग की कार्यशाला सह चिंतन शिविर में सम्राट चौधरी की बड़ी घोषणाएं। शिक्षा की गुणवत्ता एवं परीक्षा सुधार के लिए बनेगी कमेटी, छात्रों से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है, बिहार की शिक्षा परीक्षा में बड़े बदलाव, सीएम खुद भी विद्यार्थियों की समस्याओं को निपटाएंगे, छात्रों से मंत्री विधायक मिले, समस्या एवं सुझाव भी जानें।

दैनिक जागरण अपने पहले पेज पर लिखता है कि पाक में लश्कर पर धुरंधर का खौफ, एक और कमांडर की रहस्यमय मौत, और बिहार में सरकार बनाएगी 1001 मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। साथ ही साथ मेटा को केंद्र सरकार की हिदायत, भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। बंगाल में ममता के काफिले पर फेंके गए पत्थर, चप्पल और कीचड़।

दैनिक भास्कर की सुर्खियां है, TRI शिक्षक भर्ती परीक्षा, 34,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, 2,000 सीटें और बढ़ेंगी, गणित एवं विज्ञान की सबसे ज़्यादा सीटें। और हेमंत सोरेन ने कहा, समस्याओं का समाधान संवाद से होगा, लाठी से नहीं। 98% मांगे मानी, लेकिन छात्र CBI जांच पर अड़े। और साथ ही साथ ट्रंप के दामाद माइकल का केरल टूर, या अमेरिकी रिसोर्ट प्रोजेक्ट के आसार हैं। प्रभात खबर की सुर्खियां हैं, पटना समेत 18 जिले मानव तस्करी के हाई रिस्क जोन में, और कामेश्वर होंगे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। साथ ही साथ बिस्किट से साबुन तक रोजमर्रा के सामान होंगे महंगे।

जेपीएससी के तीन सदस्यों का इस्तीफा और फिलिस्तीन मेरे पीएम रहते देश नहीं बनेगा नेतन्याहू और महंगे पेट्रोल के विरोध में सड़कों पर उतरे पाकिस्तानी। और बिहार के मधुबनी में सुबह की सैर कर रही तीन महिलाओं को वाहन ने रौंदा और बिहार में अब राज्य के सरकारी स्कूलों को अब आजीवन ले सकते हैं गोद। यह 3 वर्ष 5 वर्ष या लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं गोद। मेरा विद्यालय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मेरा विद्यालय मेरा स्वाभिमान पोर्टल शुरू हुआ है।

0: और चलते चलते जान लें मौसम पूर्वानुमान। तो आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। आकाश में बादल छाए रहने और बारिश की भी संभावना है। और अब श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का।
1: राजा रोहित का किला ये बता।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। समाचार प्रभात के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
3: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगगा जामी स्थित अपने

0: आवाज से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले

0: दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले 2 दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, JPSC के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी CBI जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मॉनसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक DGCA ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ

0: समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रातः के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों के गाए इसी गीत के साथ ही देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। प्रातः के 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सचिन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ से। जावेद अख्तर के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है सागर। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश जो पत्र हम तक पहुंची है, आप हैं मछली गोदाम कैदीमूरा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रीलू सिंह। और आप हमारे श्रोता हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। और आप हमारे श्रोता हैं ढोली सकड़ा से जयंत कुमार बैरागी। और आप हमारे श्रोता हैं नूरमहल मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज शिक्षिका, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीनाज और नाजिया नूरीनाज। आप हमारे श्रोता हैं कलेर बिहार से बेगम निकहत परवीन और सदफ आरजू। और आप हमारे श्रोता हैं ग्राम धनपुरवा सासाराम से विश्वनाथ सिंह गार्जियन, टुट्टू भैया, डब्बू, ज्ञानचंद, गुड्डू और इनके समस्त दोस्त।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सागर फिल्म का ये गीत सुना, जावेद अख्तर के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और फिल्म का नाम है मर्यादा।

इस गीत को सुनने के लिए फरमाइशाई है थाना छेनारी ग्राम पोस्ट खुरमाबाद बाजार वार्ड नंबर 5 से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं रामजी प्रसाद चौरसिया, सूरज कुमार, लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया, सुजल कुमार, सनी कुमार चौरसिया, सोनू कुमार चौरसिया, पिंकू कुमार चौरसिया और आप हैं भरत प्रसाद चौरसिया। और आप हमारे श्रोता हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित।

0: और आप हमारे श्रोता हैं ब्रह्मपुरा मनीगाछी से भाई अच्छेलाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार।
1: अरे चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते शोरम मत।

0: भी नहीं आया अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: So girls, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
2: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं और अब लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं और विजू शाह का संगीत है फिल्म मोहरा। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, माला मिश्रा, रेणु मिश्रा गोल्डी, मास्टर रुद्र गुप्ता। राजनगर गांधी चौक से हमारे श्रोता हैं रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता गुप्ता, मेनिका गुप्ता, पलक के पंखुरी, माधवी, साध्वी, हैप्पी और आप हैं चुलबुल, रेणु, ज्योति जी, शालू, दीपशिखा और अर्चना और आप हैं साक्षी मिश्रा।

आप हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू।

और आप हमारे श्रोता हैं चौसा गोला बक्सर से जयराम बिंद, सीता मुनि देवी, जानकी कुमारी, ललसा कुमारी, काजल कुमारी और प्रीतम कुमार।

और आप हमारे श्रोता हैं जतुका किशनपुर से, आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, आप हैं सिराजपुर गरेशपुर से, वकील राही, फिरोज आलम, नाज परवीन और अर्श बाबू।

और आप हमारे श्रोता हैं कनेर मुहाला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, जीतू, निहारिका और वंश बत्ता।

और आप हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। तो लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में मोहरा फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं और विजू शाह का संगीत है।

0: यात्रा को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वह भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। एक रिपोर्ट।
1: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देशभर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राज्य सरकार शिक्षा में सुधार के लिए चार विभागों को मिलाकर एक निदेशालय गठित करेगी। इसमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षा और परीक्षा में सुधार के लिए दो राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये समितियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के साथ ही परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कार्य करेंगे।
2: पूरे राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा हाई लेवल पर, जो बिहार जैसे बिहार के बच्चों को और अच्छा कैसे पढ़ाई कराया जा सकता है, उनको कैसे गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कराए, इसकी पूरी संरचना का एक क्रिएशन करने का काम किया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक महीने सहयोग शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में मंत्री और वरीय पदाधिकारी शिक्षण संस्थानों में जाकर छात्रों से संवाद करेंगे।
2: ये सजेशन के तौर पर उनको पोर्टल पर अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यदि 30 दिन में हमने निदान नहीं किया तो मैं बिहार के नौजवानों को, छात्रों को स्पष्ट करता हूं कि उसके मुख्यमंत्री के लेवल पर महीने में एक बार छात्रों के लिए अलग से सहयोग शिविर भी चलाने का काम।
0: राज्य के सभी नवगठित 211 डिग्री महाविद्यालयों में नियुक्त संविदा शिक्षकों का कॉलेजवार और विषयवार आवंटन कर दिया गया है। लोक भवन सचिवालय के अतिरिक्त सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। लोक भवन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को आज आवंटित महाविद्यालयों में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी कामेश्वर राव के नाम की अनुशंसा की है। केंद्र सरकार की मंजूरी और नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। श्री राव पटना हाई कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार।

0: के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 1100 रुपए मासिक पेंशन की राशि DBT के माध्यम से भेजेंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना समेत 6 योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद रहेंगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान करना सुनिश्चित किया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल EIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवरिया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मॉनसून के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 10 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग एवं दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर जबकि उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इलाकों में कुछ जगहों पर आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है। कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया और गया जिले के मदनपुर में भारी बारिश हुई। इस अवधि में गलगलिया में सबसे अधिक 128.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में पंच सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि इस सम्मेलन में मुखिया, पंच और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। लोगों को इस योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 15 अगस्त तक यह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अरविंद कुमार पनघड़िया ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों को अपनी नीतियों और कार्य प्रणालियों में आवश्यक सुधार लाने की जरूरत है। बिहार लोक भवन में आयोजित विशेष व्याख्यान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। व्याख्यान में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश

0: साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: राजस्थान के जयपुर में आयोजित 42वीं सब जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पटना के युवा तैराक श्रेयांश यादव ने कांस्य पदक हासिल किया है। श्रेयांश यादव ने बालक 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में 1 मिनट 2 सेकंड और 5 नैनो सेकंड का समय लेते हुए यह उपलब्धि हासिल की। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 33 राज्यों के लगभग 550 तैराकों ने हिस्सा लिया। बेगूसराय जिले के मंझौल में अनुमंडलीय अस्पताल में घायल मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभिनव प्रियदर्शी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें मूल पदस्थापन मटिहानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि एक मरीज के इलाज के दौरान उसके पैर में गद्दे लगाए जाने से संबंधित समाचार सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले में संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की। पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र के मसौढ़ा के पास सोन नहर में कार के पलटने से 2 भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अरवल जिले के उसरी गांव निवासी के रूप में की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शिक्षा से जुड़े 4 विभागों का एक कल्याण निदेशालय होगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, मेटा को भारतीय कानूनों का ही करना होगा पालन। दैनिक भास्कर ने TRE4 भर्ती से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, 2000 शिक्षक बढ़ेंगे, गणित और विज्ञान में सबसे ज्यादा। प्रभात खबर ने लिखा है, पटना समेत 18 जिले मानव तस्करी के हाई रिस्क जोन में, बिहार से महाराष्ट्र तक फैला जाल। आज अखबार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान को तरजीह देते हुए लिखा है, बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं से राजस्व मामलों के निष्पादन में आई तेजी। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा, 10 अगस्त से सीआईडी करेगी पूछताछ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे यात्रा का नेतृत्व। प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए 4 विभागों को मिलाकर एक निदेशालय बनाया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए हर महीने आयोजित होंगे सहयोग शिविर। मौसम विभाग की आज कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश की चेतावनी। और राजस्थान में आयोजित 42वीं सब जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पटना के श्रेयांश यादव ने जीता कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मलिका। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। और पूर्वाह्न 10:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य आप सुन सकते हैं पूर्वाह्न 10:05 पर। और 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित हमारा कार्यक्रम रसधार।

शाम की सभा की शुरुआत होगी 5:10 पर वंदन कार्यक्रम से और 5:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार और 5:35 पर आप सुनेंगे महिला बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 आप सुनेंगे, माफ़ कीजिएगा, 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम और 6:10 पर आप सुनेंगे हमारी ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:40 पर, और 7 बजे आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 7:15 समय होगा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम का, और 7:25 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। सात बजकर 50 पर आप सुनेंगे आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद, और रात्रि 8 बजे आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। कार्यक्रम ई मनपसंद का शेष भाग हम पुनः लेकर हाजिर होंगे रात्रि 8:15 पर, और 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, और 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बंदगी। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे आपको एक बार फिर लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण। रात्रि 10:15 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग, और 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। 10:55 पर जानेंगे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, और सभा का समापन होगा हमेशा की ही तरह रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये था आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले की आवाज़ से। सावन कुमार के बोल हैं और महेश किशोर का संगीत है फिल्म चांद का टुकड़ा।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म में चांद का टुकड़ा का ये गीत। सावन कुमार के बोल थे, महेश किशोर का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए एक बार फिर से आशा भोसले की ही आवाज़ में भुला ना देना फिल्म का ये गीत। अमित खन्ना के बोल हैं, बप्पी लहरी का संगीत है।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गीत, इंदिवर के बोल थे और उषा खन्ना का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए कुमार शानू और पूर्णिमा की आवाज़ों में गोपी किशन फिल्म का ये गीत, समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है।

श्रोताओं, वह ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इस गीत को सुनने के बाद आपको सीधे लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।

0: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए,
1: संगीतकार रवि।
0: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
2: आप खाए थाली में, कोदे प्याली में।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिल्म संगीत के चाहने वालों में बिरला ही कोई होगा जिसने महल फिल्म का ये गीत ना सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक के मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश की। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें समुचित सम्मान और प्रसिद्धि मृत्यु उपरांत मिली है। खेमचंद प्रकाश उन्हीं में से एक थे।

खेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। न केवल संगीत बल्कि नृत्य की भी आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो राज दरबार में ध्रुपद गायक

हेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। न केवल संगीत बल्कि नृत्य की भी आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक नर्तक थे। किशोरावस्था में ही खेमचंद प्रकाश को पहले बीकानेर और उसके बाद में नेपाल के राज दरबार में गायक कलाकार के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। आगे किस्मत उन्हें कोलकाता ले आई, जहां वे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर्स में नियुक्त हुए। 1935 में बनी फिल्म देवदास के संगीतकार तिमिर बरन के सहायक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। 1938 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक मजाहिया गीत भी गाया। उसके बाद खेमचंद प्रकाश मुंबई आ गए। शुरुआत हुई 1939 में। सुप्रीम पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्में मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन के लिए उन्होंने संगीत निर्देशन किया।

और फिर बहुत जल्द रणजीत मूवीटोन फिल्म स्टूडियो के नियमित संगीतकार के रूप में खेमचंद प्रकाश नियुक्त हुए। उस शुरुआती दौर में रणजीत मूवीटोन की फिल्में थीं दिवाली, होली, परदेसी, फरियाद इत्यादि। उन दिनों खेमचंद प्रकाश के गीतों में ज्यादातर स्वर होता था खुर्शीद का। इस जोड़ी ने 40 के दशक के आरंभ में बहुत से मशहूर गीत दिए। 1943 में बनी रणजीत स्टूडियो की फिल्म तानसेन जबरदस्त हिट हुई।

1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी। इस फिल्म में एक गायक के रूप में किशोर कुमार को सबसे पहला अवसर दिया संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने। जिद्दी का ही एक और गीत जो लता जी ने गाया था, संगीत प्रेमियों द्वारा खूब पसंद किया गया।

और फिर 1949 में आई फिल्म महल। महल के पहले बाजार में फिल्मी गीतों के जो रिकॉर्ड्स मिलते थे, उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर फिल्म की कहानी के उस गीत को पर्दे पर गाने वाले पात्र का नाम हुआ करता था। महल फिल्म का ये गीत आएगा आने वाला रिकॉर्ड पर इन बोलों के आगे नाम लिखा था कामिनी। ऑल इंडिया रेडियो से ये गीत प्रसारित हुआ। बहुत से सुनने वालों ने रेडियो के दफ्तर में फोन करके जानना चाहा कि ये आवाज किसकी है, और फिर रेडियो से गायिका का नाम प्रसारित हुआ, लता मंगेशकर। संगीतकार खेमचंद प्रकाश। इस गीत को और लता जी को बेशुमार शोहरत हासिल हुई, मगर अफसोस महल के रिलीज होने से 2 माह पूर्व 10 अगस्त 1950 को संगीतकार खेमचंद प्रकाश 42 वर्ष की अल्पायु में इस संसार से विदा हो चुके थे।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को दीजिए इजाजत।
1: आज के फनकार।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती।
3: उजाले उनकी यादों की।
4: लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच 3 दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। छात्रों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार

0: नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने कार्यक्रम पर अडिग हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोचि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूसी उप प्रधानमंत्री मरार खुसुनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मोज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसनोलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कार्य योजना की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। समिति के प्रवक्ता हसन कशकवी के हवाले से ईरान के स्थानीय मीडिया ने बताया कि इस योजना पर संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति में चर्चा हुई और बिना किसी विरोध के इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को 13 जुलाई को संसद में औपचारिक रूप से पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरु मोंगपंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम का भार उठाया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। स्वर एवं संकलन रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
4: आकाशवाणी देश

0: भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और कार्यक्रम में आज मैं हूं आप सबों का रेडियो साथी रवि भूषण। सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में पूरी दुनिया में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है ताकि लोग यह जान सकें कि एक नवजात शिशु के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है। यह प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया बच्चे का पहला आहार है जो माँ से उसे मिलता है। श्रोताओं, आज के अपने एपिसोड में अपने विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति पराशर से, जो कि रोहतास जिले की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, से जानेंगे हम कि माँ का दूध बच्चे और माँ दोनों के लिए कितना फायदेमंद है। डॉक्टर कीर्ति पराशर, आज के अपने इस एपिसोड में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं।
2: शुक्रिया, हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है।
1: डॉक्टर कीर्ति, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं, स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और बहुत लोग अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। डॉक्टर कीर्ति, स्तनपान बच्चे और माँ दोनों को कई लाभ प्रदान करता है, जिनके बारे में नवजात शिशु को स्तनपान कराने का अवसर प्राप्त करने वाली जो महिलाएं होती हैं उन्हें यह अवश्य जानना चाहिए कि स्तनपान के फायदे क्या हैं। हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि इसके फायदे कितने हैं।
2: एक्चुअली आप सोचिए कि ये प्रकृति ने ही दिया है
1: जी,
2: और हर चीज हम प्रकृति से लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि इसके फायदे हैं या नहीं और इसके फायदे कितने हैं
1: जी,
2: क्योंकि इसे स्वयं मदर नेचर ने आपके बच्चे के लिए डिज़ाइन किया है। और जैसे जैसे हमारा ये जो वार्तालाप आगे बढ़ेगा, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि माँ के दूध में हर वो ऐसी चीज़ है जो आप बाहर से खरीद ही नहीं सकते
1: जी,
2: ना आप बना सकते हैं।
1: डॉक्टर कीर्ति, कुछ महिलाओं को लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ एक रूटीन है और बच्चा है तो उसे दूध पिलाना है, लेकिन बच्चों को दूध पीने से कितने फायदे होते हैं, उनके विकास के लिए कितना जरूरी है, यह नहीं जान पाते हैं। इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका क्या असर बच्चे के शरीर पर पड़ता है।
2: वैसे तो ये फ्रस्ट्रेशन वर्ड बहुत नेगेटिव है, बट यस, मेरे लिए ओपीडी में इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। जो माँ बनना चाहती है, क्यों बनना चाहती है
1: जी?
2: उसके पास एक संतान है तो उसकी पहली जिम्मेदारी उसे पोषित करना है, लेकिन उनको मुझे ये इम्पोर्टेंट समझाना पड़ता है। ये तो खुद ही में होना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। माँ के दूध जो है स्पेशली अगर देखा जाए तो, आज आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो भी सुन रही हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे, माँ का दूध आपका बच्चे के लिए स्पेशली टेलर्ड होता है। माना इसको आसान भाषा में कहें तो, जैसा आपका बच्चा, मान लीजिए आपका बच्चा 8.5 महीना पर हुआ है
1: जी,
2: तो आपका दूध जो है ना वो ठीक उस 8.5 महीने के बच्चे को पोषित करने के लिए जो जो चीज चाहिए
1: जी,
2: जितनी मात्रा में चाहिए आपके प्रकृति से वही मिलेगा उसको। क्या आप डब्बा के दूध से ये दे सकती हैं? नहीं दे सकती हैं। अगर आपका बच्चा जो है वो IUGR है, कमजोर है, तो आपका दूध वैसे ही होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है माँ का दूध। वैसे तो माँ के दूध जो है जिसे अमृत कहा जाता है, कहा जाता है द फर्स्ट गिफ्ट ऑफ द मदर टू द बेबी, है ना, स्तनपान को अमृत पान कहा जाता है, कहा जाता है ना। क्यों होता है? स्पेशली जो गोल्डन आवर जिसे हम कहते हैं, गोल्डन आवर, सुनहरा घंटा, वो एक घंटा जो होता है जब आप डिलीवर करते हैं। और एक चीज और, गोल्डन आवर चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन
1: जी,
2: समझ रहे हैं, चाहे नॉर्मल चाहे सिजेरियन, याद रखेंगे एक घंटा होता है दोनों के लिए। पहले एक घंटे में आपको अपने शिशु को अपने स्तन से लगाना ही है
1: जी,
2: चाहे आपका मिल्क उतरे या ना उतरे। जो पहला चीज आपके शिशु के मुख में जाना चाहिए वो स्तन पान होना चाहिए, वो पहले एक घंटे में शुरू हो जाना चाहिए
1: जी।
2: ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इससे होता है? सबसे पहले तो हम माँ को क्या क्या फायदा होता है वो बताते हैं
1: जी।
2: जो माँ पहले

0: घंटे में अपने शिशु को स्तन से लगाती हैं, तो जैसे ही जब बच्चा वो उसको सक करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है।
1: जी
0: ऑक्सीटोसिन माँ के लिए क्या फ़ायदा करता है, जो यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता
1: जी
0: है ना, माने आपका गर्भाशय को संकुचित कराता है, तो रक्त स्राव कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है,
1: जी
0: तो पीपीएच के लिए अपने आप ये कि नेचुरल प्रोटेक्शन हो जाता है। दूसरा, माँ को ना वो जो दर्द होता है ना नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बाद भी, वो पीड़ा कम महसूस होती है। जब वो शिशु उसके पास आके उसके सीने से लगता है तो माँ को ये एक तो इमोशनल हुआ, फिजिकल हुआ, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा माँ के लिए बेनिफिशियल है। अब ये तो हो गया आपको क्यों पहले एक घंटे में करना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट जैसे कि डिलीवरी के बाद आपको हम बाकी सारे इंजेक्शंस दे रहे होते हैं कि ब्लीडिंग कम हो, दर्द कम हो, बाकी जो भी मैनेजमेंट होता है, उतना ही इक्वल ये भी उतना ही ज़रूरी है।
1: जी
0: मैं ना जब BHU में थी, कई साल पहले सोचिए, जब मैं
1: जी
0: MS कर रही थी, तो जब मेरा पहला पहला ज्वाइनिंग हुआ था, मेरा पहला दिन था लेबर रूम में, और मैंने डिलीवरी कराई,
1: जी
0: डिलीवरी कराते ही वहाँ पे पीडियाट्रिशियंस रहते हैं
1: जी
0: हमेशा, ठीक है ना रवि जी,
1: जी
0: वहाँ हमेशा पीडियाट्रिशियन ही अटेंड करते हैं, और वो तुरंत माँ का, इधर हम लोग जो हैं एपिजियोटमी स्टिच कर रहे हैं, माना नॉर्मल डिलीवरी में जो टांका देते हैं वो हम लोग दे रहे हैं,
1: जी
0: और वहाँ पे बच्चा उनको स्तन पे है। मैंने देखा है ये अपनी आँखों से कई बार देखा है, और
1: जी
0: मेरे जो साथी डॉक्टर्स हैं वो भी इसको फील करते हैं, लेकिन ये मैसेज मैं माताओं को देना चाहती हूँ कि बच्चा को ना वो क्रॉल कर जाता है स्तन, तुरंत डिलीवर हुआ हुआ बच्चा,
1: जी
0: उसको जैसे ही हम रखे माँ के पेट के पास, वो क्रॉल करता है स्तन तक की तरफ,
1: जी
0: इट इज सो नेचुरल। तो ये तो बेनिफिट्स की बात हुई मदर के लिए और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो है, बच्चे के लिए क्या क्या बेनिफिट है, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट,
1: जी
0: लेकिन आपको क्या क्या जानना जरूरी है, वो चीजें जानना जरूरी है जो आपको बाकी जो डब्बा बंद दूध है या ये सब चीजें नहीं दे सकती
1: नहीं दे
0: है।
1: सकते। डॉक्टर कीर्ति, हमने यह भी देखा है कि डॉक्टर से जब लिखते हैं दवाई तो उसमें वो बच्चों के लिए डब्बा बंद दूध भी लिखते हैं, यह बच्चों के लिए कहाँ तक फायदेमंद है?
0: हाँ, ये दिस इज़ ट्रू, और देखिए हम भी प्रैक्टिस करते हैं डिलीवरी कराना, सिजेरियन करना, तो मैं अपने पास भी इमरजेंसी के लिए वो रखती हूँ,
1: जी
0: ऐसा नहीं है, लेकिन आपको हम ये बताएं, उसकी ज़रूरत जब बहुत मजबूरी हो जाए तभी देनी चाहिए, बहुत रेयर सिचुएशंस ऐसे होते हैं तब, लेकिन आपको जैसे ही बच्चा हुआ, कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि माँ का सिजेरियन हुआ है
1: जी
0: इसलिए बच्चा माँ का दूध नहीं पी सकेगा, ऐसा नहीं होता है।
1: जी
0: इस बार का ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो 1 से 7 अगस्त हर वर्ष मनाया जाता है, उसका थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि जितने आसपास के लोग हैं
1: जी
0: वो सब मिल के प्रयासरत रहें ताकि इसका आउटकम जो है वो हमें अच्छा मिले।
1: जी
0: तो अगर माँ का सिजेरियन डिलीवरी हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन भी है, माँ इस अवस्था में नहीं है कि
1: जी
0: खुद बच्चे को लैच कर सके स्तनपान के लिए, लेकिन वहाँ के जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, वहाँ उनके जो रिलेटिव्स हैं, इन सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से बच्चे को माँ के पास लाएं और स्तनपान शुरू करें।
1: जी
0: कभी कभी जब देखा गया है बहुत ही रेयर सिचुएशन में कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आए या बच्चा का वजन कम
1: जी
0: है ना, थोड़ा लो बर्थ वेट है, उस केस में आपके पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के सलाह से कितना देना है फॉर्मूला मिल्क तब आपको भले ही दें, लेकिन आप ऐसे नहीं कि बच्चा हुआ है, मैंने देखा है एक बार हम OT से आए और उसके बाद देखते क्या है कि कटोरी में से दूध पिलाया जा रहा है,
1: जी
0: अब आप बताइए कि इसमें हमको तो प्राणायाम करना पड़ेगा ना अपने आप को शांत रखने के लिए। आपने किससे पूछा था तो मुझे क्या जवाब मिला पता है रवि जी, दूध अभी उतरत नहीं खे, दूध उतरी कैसे, जब से आप नहीं चुसवाएंगे दूध नहीं उतरेगा।
1: जी
0: तो फिर उसके बाद हमने स्टाफ और उनके रिलेटिव जितने हैं सबको बुलाया, मैं खुद खड़ी हुई, बच्चे को उससे लगाया, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही सक कराया गाढ़ा पीला दूध उतरा,
1: जी
0: ठीक, एंड दैट इज कोलेस्ट्रम।
1: जी
0: और कोलेस्ट्रम क्या होता है मालूम है आपको,
1: जी नहीं, हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट वैक्सीन।
1: जी
0: बचवा की टीका कब लागी पूछते हैं लोग, बचवा की
1: जी
0: टीका कब लागी,
1: जी
0: बचवा के पहला टीका बा माँ के दूध,
1: जी बिल्कुल
0: कोलेस्ट्रम सारा कुछ उसमें है, एंटीबॉडीज से लेके सब कुछ है। जब तक आप नहीं सक कराएंगे मिल्क लेट डाउन नहीं होगा।
1: जी
0: कई बार हम सोचते हैं कि जो स्तनपान है वो नेचुरल है, लेकिन स्तनपान की शुरुआत होती है ब्रेन से,
1: जी
0: जब माँ की इच्छा होती है, जब माँ अपने शिशु को प्रेम से देखती है, जब माँ को ये

0: स्तन से लगाती है, तब कह लीजिए आपके ब्रेन से, मस्तिष्क से ये सिग्नल मिलता है, और फिर जब बच्चा स्तनपान शुरू करता है यानी सक करता है, तब ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है और मिल्क लेट डाउन होता है तब बच्चे की। तो आप ना तो इच्छा रख रही हैं, आप अलग हैं, बच्चा अलग है, बच्चा आपसे दूर है, बच्चा आपके रिलेटिव के गोदी में बैठ करके कटोरी चम्मच से दूध पी रहा है या बोतल पकड़ा दिया है, कैसे दूध होगा
1: जी?
0: नहीं होगा ना। तो ये बात आपको बहुत जरूरी है समझना कि यदि माँ इस अवस्था में नहीं है तो सारे पैरामेडिकल स्टाफ, सारे रिलेटिव ये मिल करके बच्चे को माँ के तन से लगाएं, सक करवाएं, तो दूध उतरेगा। पहला गाढ़ा दूध बहुत कम मात्रा में उतरता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट दैट इज यू नो वो उतना पर्याप्त होता है बच्चे के लिए, ठीक है ना, वो पर्याप्त है। ऐसा नहीं है, उसको जल्दी सक कराना होगा, आपको जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी कराना होगा। कोलोस्ट्रम क्या करता है? कोलोस्ट्रम में वो सारे एंटीबॉडीज हैं जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को भी बढ़ाता है और आपको जो संक्रमण है उससे बचाता है। संक्रमण बोले तो माना इन्फेक्शन से बच्चे को बचाता है, उसमें आईजी एंटीबॉडीज होती हैं। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें जो माँ का दूध होता है उसमें एक और चीज होता है, वो कहते हैं उसको ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड। वो क्या करता है, HMO उसको बोलते हैं, वो आपको नहीं मिल सकता और कहीं से। कुछ लिविंग एंजाइम्स होते हैं, है ना, कुछ लिविंग एंटीबॉडीज होती हैं, मतलब जीवंत आप चैतन्य बोल सकते हैं, वो आपको फॉर्मूला मिल्क से नहीं मिल सकता है। और ये क्या करता है, ये बच्चे के लिए नेचुरल प्रीबायोटिक है जो बच्चे की पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और स्पेशली जो कोलोस्ट्रम है ना रवि जी, वो और क्या करता है, जो मिकोनियम जमा होता है ना बच्चे के अंदर मल, उसको निष्कासित करने के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही बच्चा कोलोस्ट्रम शुरू करता है तो मिकोनियम बाहर होता है। कई बार ना मेरे से पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि मैडम बच्चा 7-8 बार पैखाना कर रहा है, तो उनको समझाते हैं घबराइए नहीं, जैसे ही दूध पिएगा थोड़ा सा फिर वो पैखाना करेगा, तो आप चिंता मत कीजिए। जब तक बच्चा दूध बहुत अच्छे से पी रहा है, सक कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा पेशाब सही कर रहा है, मतलब उसका डायपर भींग रहा है, तब तक ये घबराने की बात नहीं होती है। क्योंकि जब बच्चा अच्छे से माँ का दूध सक करने लगता है तो मिकोनियम भी एक्सपेल करता है। तो बहुत सारे ऐसे मिथ और भी बने हुए रहते हैं, जैसे कि एक तो मैं आपके इस जो भी आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, मैं एक मैसेज सबको देने चाहूंगी आउट ऑफ द वॉल ऑफ माई हॉस्पिटल, क्योंकि रोज जो आती हूँ उनको तो बताती हूँ लेकिन इस माध्यम से सबको पहुंचनी चाहिए। सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि जी मैडम जी पहला बच्चा को तो दूध नहीं पिलाया। अच्छा क्यों नहीं पिलाया, दूध हुआ नहीं
1: जी।
0: ऐसा नहीं होता है, ये हो ही नहीं सकता है, ये नियम के विरुद्ध है। अगर आपकी डिलीवरी हुई है दूध जरूर होता है, ये आप सभी समझ लीजिए कि ये फॉल्स है। बहुत रेयर एक्सेप्शन होते हैं इसमें, क्योंकि सारा सिस्टम ही डिजाइन ऐसा हुआ है कि आपको दूध होना ही होना है
1: जी।
0: आपने सही से स्तनपान नहीं कराया, ब्रेन को मैसेज मिला कि यहाँ आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे दूध कम होने लगा और वो बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि आपको जो मैंने गोल्डन आवर बताया कि पहले 1 घंटे में आपको बच्चे को सीने से लगाना है, आपने नहीं लगाया। आपने क्या किया, या तो कटोरी चम्मच दे दिया या दो बोतल दे दिया, या आपने शहद को शहद चुसा देते हैं, कुछ कुछ ऐसा पेसिफायर्स दे दिया जिसकी वजह से बच्चा को निपल कन्फ्यूजन होने लगा और बच्चा स्तनपान ठीक से नहीं किया, सक नहीं किया, बच्चा बहुत एजिटेटेड हो गया, रोने लगा, घर वाले पूरे परेशान हो गए, बोले कि ये तो तुम्हारा दूध पिएगा नहीं, इसको तो अब देना ही पड़ेगा। और उसी चक्कर में आपने फ्रीक्वेंटली उसको स्तनपान नहीं कराया, आपका दूध धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, बंद हो गया, जिसको आप आके हमें अगले प्रेगनेंसी में बताती हैं कि हमको दूध हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, दूध होता है, फ्रीक्वेंटली फीड कराइए। जितना आप फीड कराएंगे ना उतना ही दूध होगा। और माँ को क्या क्या फायदा होता है, ये तो हमने डिलीवरी के तुरंत बाद के लिए बताया कि PBH के रिस्क कम होते हैं, माँ को पेन कम होने लगता है, माँ को Type 2 diabetes का खतरा कम होता है, माँ को ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन कैंसर का खतरा कम होता है, माँ को मोटापा का खतरा कम होता है। तो इफ यू वांट टू कम बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट देन प्लीज ब्रेस्ट फीड योर बेबी, दूध पिलाइए अगर मेंटेन होना है फिर से तो, ठीक है। तो ये चारों चीजें तो आपको हमने बताई, बच्चे के लिए आप जो भी सुन रहे हैं लिखते जाएंगी, कॉपी पेन उठाइए, लिखिए आपके बच्चे को क्या क्या फायदा होता है। और अगर आप इस समय स्तनपान नहीं करा रही हैं तो हो सकता है कि आपके घर में कोई करा रहा हो, या हो सकता है आप टू बी मॉम होने वाली हो, या हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में आप प्लान कर रही हो। डायरी पेन उठाइए और लिखिए आपके बच्चे को क्या फायदा है। नंबर 1, बच्चे को एलर्जिक रिएक्शंस कम होते हैं अगर बच्चा माँ का दूध पीता है, क्योंकि जो HMO है आपके दूध से जो मिलता है वो नेचुरली बच्चे को प्रीबायोटिक्स वगैरह भी देता है IGA की वजह से। दूसरा,

0: बच्चे को इन्फेक्शन का कम चांसेस होता है क्योंकि स्पेशली IgA एंटीबॉडीज जो मिलती है। तीसरा, बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत भी आएगा तो मजबूत होगा क्योंकि आपके ब्रेस्ट मिल्क में कैल्शियम और फॉस्फोरस बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में होता है। चौथा, जब आपका बहुत ज्यादा गर्मी है, जो कहते हैं ना एक्सट्रीम वेदर है, तो उस समय यदि आप स्तनपान फ्रिक्वेंटली करा रही हैं तो बच्चे डिहाइड्रेट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप फॉर्मूला फीड करा रही हैं तो बच्चा डिहाइड्रेट, माना बोतल ऊपर का दूध दे रही हैं तो बच्चा डिहाइड्रेटेड हो सकता है। बच्चे को, जिसे आम भाषा में कहें, गर्मी का असर, लू का असर हो सकता है। लेकिन यदि आप सिर्फ अपना दूध पिलाती हैं तो एक चमत्कार है आपके दूध में, वो एडजस्ट करता है वेदर के हिसाब से कि बच्चे को कितना मुझे वाटर देना है, क्योंकि माँ के दूध में 86-88% वाटर ऑलरेडी है। तो पहले 6 महीने में आपको पानी की एक बूंद भी नहीं देनी है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। कई बार मुझसे पूछा जाता है कुछ विटामिन मैडम जी लिख दीजिए, अरे जितना विटामिन आपके दूध से मिल रहा है ना, अरे हम आदमी और इंसान क्या वो विटामिन बनाएंगे जो प्रकृति ने आपको विटामिन दिया है आपके बच्चे के लिए। और जैसा कि आपको बताया कि हर बच्चे के लिए टेलर्ड होता है, माना जिस बच्चे को जितना जो चीज़ आवश्यक थे उतना ही जाएगा। ये एक अद्भुत चमत्कारिक शक्ति है माँ के दूध में। आपके बच्चे को आगे जा करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होने का खतरा कम रहता है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर। आपका भी ब्लड प्रेशर कम होगा, मेक इट अ नोट, आप भी अगर दूध पिलाएंगी तो आपको भी आगे जाके बीपी होने की संभावना कम रहेगी और बच्चे को भी। बच्चे का IQ जो है वो स्ट्रांग होता है और बच्चा इमोशनली भी इंटेलिजेंट होता है। ये सारी चीजें आपके बच्चे को मिल रही हैं, यानी शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी और मानसिक क्षमता भी, मानसिक स्वास्थ्य भी बच्चे का अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें आपके माँ के दूध में जो उपलब्ध रहती है। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि माँ जिस मानसिक अवस्था में स्तनपान कराती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी घर के लोग जो भी हैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कई बार मैंने देखा है माँ उधर दूध पिला रही है और घर में हल्ला, हंगामा, झगड़ा, लड़ाई। जो माँ स्तनपान करा रही है उसको ही लोग बहुत अपशब्द, उसके प्रति कुछ बहुत ऐसी बातें बोलने लगते हैं और वो इसी स्टेट में दूध पिलाती है। तो प्रकृति ने जितना कुछ भी दिया ना, ये तो जा रहा है, लेकिन साथ में एक पॉइजन आप दे रहे हैं। तो दूध कितना भी हो उसमें एक बूंद पॉइजन का पॉइजन हो जाता है। तो आप सोचिए कि जब माँ उस रोते हुए स्थिति में बच्चे को दूध पिलाएगी तो आप थोड़ा रुक के सोचिए कि वो भी तो दूध के साथ बच्चे में जा रहा है। तो वो पिता जो अपनी पत्नी को उस समय कुछ भी ऐसी बात कह रहा है जो उसके दिल को हर्ट कर रही है और वो फीड करा रही है, तो क्या मैं उस पिता से पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वो दुख अपने में अब्सॉर्ब करे, वो भी दुखी हो आपके माँ के साथ? तो जिस समय कोई भी माँ, और घर में पूजा होता है तो कैसा होता है, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो लेकिन घर का माहौल बहुत अच्छा रखते हैं कि भाई जाए दो आज पूजा है, सब मिलजुल के करते हैं। स्तनपान को भी आप वैसे ही लीजिए। स्तनपान भी जब एक माँ करा रही होती है तो चनामृत बच्चे को दे रही होती है, तो उस चनामृत को देने के समय घर का माहौल कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कल को आप मुझसे कह सकती हैं, मैडम आपका हमने ना रेडियो पे ये सुना था, हमने तो ब्रेस्टफीड कराया लेकिन हमारा बच्चा अभी भी थोड़ा सा इमोशनली रिजिलियंट नहीं है। तो प्लीज चेक कीजिए कि घर का माहौल कैसा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था कि आप नोट डाउन करिए कि क्या क्या होता है। एक चीज और, आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए और बच्चे का जो आंख है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में EPA और DHA होता है जिसे हेल्दी फैट्स कहते हैं। और दूसरी एक और बात जो आपको बाहर नहीं मिलेगी वो है लैक्टोज। लैक्टोज जो मदर मिल्क का जो लैक्टोज होता है ना, वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है, बच्चे को एनर्जी देता है। और माँ के दूध में पर्याप्त फैट होता है जिससे बच्चे का वजन भी बहुत जितना चाहिए उसके हिसाब से वो डेवलप करता है।
1: डॉक्टर कीर्ति, कार्यक्रम के अंत में वैसी माताएं जो बच्चे को स्तनपान करा रही हैं उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: को हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, देयर आर सो मेनी मिथ, यू नो, हमेशा फैक्ट जानने की कोशिश कीजिए। फैक्ट आपको इंटरनेट और जो में जो इतने सारे हो गए हैं इन्फ्लुएंसर्स उनसे नहीं लेना है, आपको अपने डॉक्टर या तो गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से समझना है। यदि आपको किसी भी बात का कुछ भी ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए जिन्होंने प्रसव कराया था, या आपके निकट में कोई भी हो, आपके पास आपके PHCs में भी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स भी ट्रेंड हैं इसके लिए, आप उनसे भी मिल सकते हैं। आप पीडियाट्रिशियंस के पास जब बच्चे को टीका के लिए जाते हैं आप उनसे अपनी बात कह सकते हैं। तो आपको स्तनपान कराने में किसी भी बात की समस्या यदि सामने आ रही है, जैसे कि यदि बच्चा लैच ठीक से नहीं कर रहा है, बच्चा जल्दी जल्दी रोने लगता है, तो इस सूरत में

0: मिले। हाँ, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि कई बार घर के लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तुम्हारे दूध से पेट नहीं भर रहा है।
1: जी
0: बच्चे ने आपसे कहा क्या कि मेरा पेट नहीं भर रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ?
1: जी
0: नहीं कहा ना। रोने के कारण और भी होती है, डायपर भींगा हुआ है, बच्चा असहज महसूस कर रहा है, बच्चे को गोद चाहिए है, बच्चा किसी भी रूप से अगर अनकंफर्टेबल है तो बच्चा रो सकता है। और कई बार फिर कहते हैं तुम्हारे दूध से पेट नहीं भरता है,
1: जी
0: ऐसा नहीं होता है। माँ को कभी कभी फ्रीक्वेंट फीडिंग, बच्चा बार बार डिमांड करता है ना, वो हर थोड़ी देर पे दूध मांगेगा, इसको क्लस्टर फीडिंग कहते हैं
1: जी
0: और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, आप इससे घबराइए नहीं। वो जब मांगे आपको दूध पिलाना है। इसका एक और कारण क्या होता है कि माँ कभी कभी ना अधीर हो जाती है, मतलब पेशेंस रखना होता है। एक स्तन को जब आप पिला रही हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि बच्चा उस स्तन को पूरी तरीके से पहले खाली करे। बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है, उसको हल्का सा आप जगा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्तन पान करता है तो जो पहले जब खींचता है तो पहले ज्यादातर वाटर आता है, उसके बाद जब और वो स्तनपान करेगा, मतलब जब और वो निपल को सक करेगा,
1: जी
0: तो बीच में ही लिविंग एंटीबॉडीज, एंजाइम्स और ये जो मैंने आपको कहा ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स, ये सब आते हैं। और जब बच्चा और कुछ देर तक स्तनपान करता है तो लास्ट में सारा फैट कॉन्टेंट्स आता है। फैट जब लास्ट में आता है तो इससे बच्चे का सेटाइटी सेंटर जो ब्रेन में होता है वो सेटिस्फाई होता है, माना बच्चा तृप्त हो जाता है और फिर वो थोड़ी देर के लिए वो सोएगा,
1: जी
0: है ना, क्योंकि उसको सिग्नल भी मिलेगा कि चलो अब सो जाओ। तो स्तनपान कराने का सही तरीका भी होता है। माँ क्या करती है, थोड़ी देर स्तनपान कराएंगी, मतलब सक कराएंगी, उसके बाद बच्चा सो जाएगा, फिर वो छोड़ देंगी। फिर उसके बाद जब बच्चा उठेगा तो दूसरे ब्रेस्ट को वो पकड़ा देती है, फिर वो थोड़ी देर सक करेगा, फिर छोड़ देंगी। तो इसमें क्या होता है, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है क्योंकि उसको जितना चाहिए वो सारा मिल नहीं पाता है। तो कोशिश आपको ये करना है कि भले बच्चा सो जाए लेकिन पहले एक स्तन को पूरी तरीके से बच्चे को आपको फीड कराना ही कराना है, और तभी बच्चे को सब कुछ मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं कि
1: जी
0: बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग लीगल राइट है।
1: जी
0: इसलिए ये बात भी आप याद रखिए कि लीगल राइट है, कानूनी तरह से उसका अधिकार है ब्रेस्ट फीड कराने का। इसलिए आप ये नहीं कह सकती हैं कि दूध नहीं हुआ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि दूध क्यों नहीं हुआ, आपकी जिम्मेदारी है। आप मिलिए डॉक्टर से, जब तक कि कोई ऐसी बात नहीं हो जाती है तब तक से आपको फीड कराने का। कितने दिन फीड कराना है? पहले 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव का मतलब नॉट इवन वाटर, पानी की एक बूंद भी जरूरत नहीं है, मैंने
1: जी
0: आपको बताया क्यों। उसके बाद 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा पोषकाहार वो
1: जी
0: उसके साथ भी माँ का दूध, 2 साल तक आपको ये करना है। और आप एक मैसेज और आपको देना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीड कराते समय प्लीज एक गोली कैल्शियम और वाइटामिन डी की आप जरूर लीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ बोन टर्न ओवर स्टेट, माना आपकी हड्डियां के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप
1: जी
0: कैल्शियम और वाइटामिन डी जरूर लीजिए, ताकि आप फिर 5 साल बाद मेरे पास कमर दर्द लेके ना आए।
1: जी
0: पोस्चर सही रखिए दूध पिलाते समय, पोस्चर सही नहीं रखिएगा कमर दर्द होगा, आप थकिएगा, फिर कहेंगे कि ये कब तक मुझे करना पड़ेगा। पोस्चर हमेशा सही रखें और बहुत प्यार से अपने बच्चे को दूध पिलाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल चीज़ नहीं है। जब माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है तो माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्ड होता है, कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चे में हमेशा रहती है।
1: जी
0: सिर्फ ये उतने ही दिन का सफ़र नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे बहुत खुशी खुशी निभाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ।
1: डॉक्टर कृति, आपने कीमती वक्त निकालकर इस विषय पर हमसे बातचीत की और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपने काफी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके लिए रेडियो परिवार की ओर से और सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू रवि जी।
1: तो श्रोताओं, स्तनपान विषय पर अभी हम बातचीत कर रहे थे जिले की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति पराशर से। तो इसी के साथ हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम का आज का यह एपिसोड अब यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ हम फिर आप सबों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी रवि भूषण को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, स्वर एवं संकलन रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। पूर्वाहन के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शारदा सिन्हा की आवाज़ से। एल्बम का नाम है परदेशिया बलमुआ।

शारदा सिन्हा की आवाज़ में अभी आपने परदेशिया बलमुआ एल्बम का ये गीत सुना, और अब लीजिए सुनिए मदन राय की आवाज़ में, एल्बम का नाम है बलम गईले झरिया।

मदन राय के गाए इसी गीत के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है भोजपुरी एल्बम गीतों पर आधारित कार्यक्रम रसधार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरविंद अकेला और शिल्पी राज की आवाज़ों में। एल्बम का नाम है पगली दीवानी महाकाल के। विजय चौहान के बोल हैं और प्रियांशु सिंह का संगीत है।

और अब लीजिए सुनिए गुंजन सिंह की आवाज में बदरा रे एल्बम का ये गीत, रविंद्र ओझा के बोल हैं और शिशिर पांडे का संगीत है।

0: आलोक कुमार और ज्योति तिवारी के गाए इसी गीत के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: कथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी, संपादन नेहा शर्मा और मनीषा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उजाले उनकी यादों के।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
2: रंग तरंग
3: रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले शिव शंभू इस एल्बम का गीत सुरेश वाटकर की आवाज़ में, नवाब आरजू के बोल, नटराज दस्तीदार का संगीत है।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग।
1: इश्क की ये शम्मा अपने दिलों में।
0: मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाजें, शब्दकार सुदर्शन फाकिर और संगीत है भूपिंदर सिंह का। एल्बम ये प्यार

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: तलत अजीज की आवाज है, शब्दकार तस्लीम फाजिल, संगीत मोहम्मद अशरफ का, एल्बम ये मिलन ख्वाब सा।

रूप कुमार राठौड़ और साधना सरगम की आवाज़ों में गुलजार का लिखा हुआ गाना, उस्ताद अमजद अली खां का संगीत, एल्बम वादा।

आ रहे हैं महबूबा विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।

0: ये आवाज़ें थी साबरी ब्रदर्स की, शब्दकार निदा फाजली, संगीत आदेश श्रीवास्तव का, एल्बम तरकीब।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अगला गाना आपको सुनवाते हैं तन्हा दिल, इस एल्बम का गाना, आवाज, गीत और संगीत शान का।

0: कहानी सुनानी।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अगला गाना आपको सुनवाते हैं तन्हा दिल, इस एल्बम का गाना, आवाज, गीत और संगीत शान का।

उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाज़ों में पिया बसंती इस एल्बम का गाना, संगीत है संदेश शांडिल्य का।

रंग तिरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सपना अवस्थी की आवाज में परदेसिया एल्बम का ये गाना। गीत और संगीत है पी के मिश्रा का।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाजें, मदन पाल के बोल, जय विजय का संगीत। एल्बम का नाम है मोहब्बत हो गई।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्य पथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री

0: मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काट

0: 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको परवरिश फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ें हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ों में आपको सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत एसडी बर्मन का।
1: बाजू।

0: चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ों में आपको सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत एसडी बर्मन का।
1: बाजू।

अंतराल का समय पूरा हो चुका, अब आपके लिए लेकर आए हैं पड़ोसन फिल्म का गाना, किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: गारे गारे
1: ये जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सुर बदल
0: गया गारे गारे
1: ये हम को भटका दिया
0: गारे गारे
1: ये सुर की तरह जी ये सुर ये इन्ना आया है तो
2: ये कचतुर नारा

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा, घोड़ा चतुरा एक पे रहना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

पड़ोसन फिल्म का ये गाना आपने सुना। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में जो गाने आप सुन रहे हैं, अगर उन पर आपने गौर किया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के कार्यक्रम में या तो पुरुष आवाज़ों में जो युगल गीत हैं वो, या तीन पुरुष आवाज़ों में जो गाने हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। बैजू बावरा फिल्म का गाना उस्ताद अमीर खान और पंडित डी वी पलुस्कर की आवाज़ों में। लीजिए, आप सुनिए शकील।

0: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
5: ये है मासूम फिल्म का गाना, भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर की आवाजों में गुलजार के बोल, संगीत आरडी बर्मन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये समझौता फिल्म का गाना मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा
0: विविध भारती पर बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम शोले।

सागर फिल्म का गाना आइए सुनते हैं, किशोर कुमार और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। जावेद अख्तर के बोल संगीत है आर डी बर्मन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हम

दर पे सब कुछ है कुर्बान। जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी, जरा सी है गरीबी यही है कम...

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आदमी और इंसान, ये फिल्म का नाम, महेंद्र कपूर, बलबीर जोगिंदर और साथियों की आवाजें, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत है रवि का।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजू द्विवेदी। आज की इबारत आपको पढ़ के सुना दें। विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने पोस्ट की, बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है, और जिन श्रोताओं ने फेसबुक पर जाकर इस इबारत को नहीं पढ़ा है तो उनके लिए हम पढ़ के सुना देते हैं। सजना संवरना स्त्रियों का अधिकार है, खास तौर पर जब मौसम सुहाने हो तो सजना और भी मन को भाता है। बिंदिया, काजल, कजरा, गजरा, पायल, मेहंदी, चुनर, ये सब श्रृंगार के साधन है। हरे कांच की चूड़ियाँ बड़ी सुहावनी लगती है, पर इन्हें किसी का दिल समझकर आहिस्ता आहिस्ता हाथों में डालिए। चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सजाइए, जब बिंदिया चमकेगी आँखों में कयामत ढाने वाला काजल होगा। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचाकर धानी चुनरी पहन जब जाओगी तो साजन कहेंगे ही ना, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। क्या पता ये भी कह दें, तेरी बिंदिया रे के आए हाय तेरी बिंदिया रे। तो सज धज कर आइएगा ज़रूर विविध भारती का कार्यक्रम।

सुरीला सफर में। ये आज की इबारत है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ी और बहुत सारी बातें उन्होंने श्रृंगार के बारे में लिख करके भेजी है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि वाह क्या खूबसूरत इबारत है, आज सावन की दूसरी सोमवारी स्त्रियां सोलह श्रृंगार, हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, मेहंदी, आलता से सजे हाथ पांव, हाथ में फूलों की डलिया, जल भरा कलश लेकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों में जा रही हैं। भगवान भोलेनाथ का और माँ गौरी का खूब श्रृंगार किया गया है, आज उसी श्रृंगार की बात सुरीला सफर में। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी का श्रृंगार केवल बाहरी रूप को सजाना नहीं है, ये संस्कार सौभाग्य, पारिवारिक परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। सोलह श्रृंगार स्त्री के जीवन के अलग अलग चरणों और उसकी पहचान को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव भाग्य का प्रतीक, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पति की लंबी उम्र की कामना और वैवाहिक बंधन को दिखाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा चूड़ियां, बिछियां और पायल शरीर के एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर असर डालते हैं, ये शरीर में ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति या लक्ष्मी का रूप माना जाता है, श्रृंगार उसी दिव्य सम्मान को प्रकट करता है। सजना संवरना स्त्री के मन में खुशी और सकारात्मकता लाता है, परिवार और समाज के उत्सवों में उल्लास और जुड़ाव का माध्यम बनता है। जी, आपने स्त्री के श्रृंगार की बातें की और जब श्रृंगार की बात आती है तो अक्सर श्रृंगार को स्त्रियों से ही जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, पुरुष भी तो अपना श्रृंगार कर सकते हैं, वो भी अपने आप को सजा संवार सकते हैं, बालों को अच्छी तरह से उन्हें कटवा करके और जिस तरीके से भी आपको पसंद हो वो स्टाइल, और चेहरे पर भी आजकल तो पुरुष भी जाते हैं पार्लर में और वो भी अपना श्रृंगार करवाते हैं, तो श्रृंगार सभी का अधिकार है, लेकिन हाँ स्त्रियों से इसे खास तौर पर जोड़ करके देखा जाता है। तो और भी हम इस विषय पर बातें करेंगे और कुछ सवाल भी हैं आज हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले सजने संवरने का, सजना के लिए जो गीत है वो आपको सुनवा देते हैं। सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

सजने संवरने की प्रक्रिया या सजने संवरने का जो जज्बा है उसको कितनी खूबसूरती के साथ इस गाने में बयान किया गया। गीत और संगीत ये रविंद्र जैन का है तो उनकी तारीफ तो हमें ज़रूर करनी होगी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि पुरुष भी श्रृंगार करने से पीछे नहीं है, बालों में स्टाइलिश जेल, चेहरे पर हर तरह के मेकअप, मसाज, फेशियल, अच्छे कपड़े, और क्यों ना रहें, जब नायिका सजेगी तो नायक को भी सजा रहना चाहिए। असल में तो नायक ही नायिका को सजाता संवारता है, इसकी नायिका सुंदर दिखे और नायिका भी इसलिए सुंदर होना चाहती कि नायक उसकी खूब खूबसूरती का व्याख्यान करे। ये प्यार और समर्पण का एक रूप है। जी हाँ, सजना संवरना ये सभी का अधिकार है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि आज आपकी जो इबारत है, मेरी धर्म पत्नी पर कल ही सार्थक हुई, जब हम बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के बाद श्रीनगर कश्मीर में डल लेक में शिकारे में हम बैठे थे, जहाँ धर्म पत्नी ने कश्मीरी सलवार कुर्ता पहना था, बिंदिया, काजल, पायल, कश्मीरी चुनरी आदि साधनों का श्रृंगार किया हुआ था। श्रीनगर का शाम का मौसम तो सुहाना था ही, मैं शिकारे में ये गीत भी गा रहा था, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। वाह क्या बात है, कितना सुनहरा वो वातावरण रहा होगा। और आपने इसको पूरी एकदम डिटेल जानकारी आपने दी है, धन्यवाद आपका। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि आज हमारे बीच परिपूर्णता के लिए श्रृंगार रस में सजे गीतों की माला होगी। जिस प्रकार सावन के आने से प्रकृति धीरे धीरे अपने को संवारने लगती है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पूरे शबाब पर है, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे सभी बड़े खुश नजर आते हैं, नारी मन भी इन्हीं सावन के पूरे सोलह श्रृंगार में रची बसी होती है। और कुछ गीतों का इन्होंने जिक्र किया है। एक साथी हमारी लिख रही है कि सजना संवरना हमें हमेशा से अच्छा लगता है, शायद इसलिए नहीं कि कोई हमें देखे, बल्कि इसलिए कि आईने में खुद को देखकर मन थोड़ा मुस्कुरा दे। सावन आए, हरी चूड़ियाँ खनके, माथे पर बिंदिया सजे और बालों में गजरा महके, तो लगता है जैसे छोटी छोटी खुशियों ने आकर हमें फिर से थोड़ा सा संवार दिया हो। जी हाँ, ये बड़ी मुद्दे की बात है कि सजना संवरना ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम आईने में देखते हैं, अपने आप को खूबसूरत देखते हैं, तो मन वाकई में प्रफुल्लित हो जाता है और आत्मविश्वास भी मन के अंदर आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। मौसम सुहाना हो तो सजना भी अच्छा लगता है, जुदाई फिल्म का ये गाना है। और हाँ, ये जो सौदागर फिल्म का ये गाना है, पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया। आपके जवाब हम तक पहुँच गए, उसके लिए धन्यवाद। और अब जुदाई फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ है।

साथ ही लिख रहे हैं कि आजकल तो पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं, सोलह श्रृंगार में से कुछ श्रृंगार तो वो भी सजना सवरना करते ही हैं, पीछे नहीं है वो। और एक एक साथी ये लिख रहे हैं कि सावन में तो हर कुंवारी लड़कियां भी सजती है, पर शादी के बाद हमारे ज़माने में बहू को इतना ज़्यादा सजना संवरना पड़ता था, भारी साड़ी, उसके पल्लू, सिंदूर और उतनी ही भर भर के हाथ में चूड़ियाँ, हर समय सज धज के रहना, और उसके बाद जब रोटी बनाते समय या काम करते समय उन से इतनी दिक्कत होती थी कि बाद में धीरे धीरे आदत हो जाती है। सजती संवरती है आजकल की लड़कियां भी, बहुएं भी, पर उनका स्टाइल हमारे जमाने से अब बहुत भिन्न हो गया है। साड़ियों की जगह सलवार सूट, रंगीन चुनरियां हो गई है, चूड़ियों की जगह एक एक कड़े हो गए हैं, झटपट वाली मेहंदी हो गई है, और एक दिन मिलकर सावन मिलन पूरा हो गया, पूरा सावन संपन्न हो गया। एक साथी लिख रही है कि मेरी बात करूं तो पहले मैं भी इतनी फैशन में नहीं रहता था, लेकिन वाइफ के कहने पर अब मैं सुधर गया हूं। चलिए, अच्छी बात है कि आप भी थोड़ा सज धज कर रहते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि नारी की खूबसूरती उसके श्रृंगार और व्यवहार दोनों पर निर्भर रहती है। अगर वह कितना भी श्रृंगार कर ले, लेकिन उसका व्यवहार परिवार और समाज में उचित नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए दोनों का सामंजस्य बना रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने बात कही है, ये लाख टके की बात कही है। जी हाँ, श्रृंगार अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन व्यवहार की सुंदरता भी उतनी ही आवश्यक होती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपकी सुंदरता भी देखी जाएगी और उसे पसंद किया जाएगा। लेकिन आपने बहुत श्रृंगार किया, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है तो आपकी वो सुंदरता किसी काम की नहीं रह जाएगी। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ज्योतिष शास्त्र में हरा रंग बुद्धि और संतुलन के कारक हैं, बुध ग्रह से जुड़ा है। हरा श्रृंगार करने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जी, हमारा जो अगला गीत है ये हरे रंग से संबंधित है और इसीलिए हमने आपकी ये बात अभी इस वक्त पढ़ी है। पढ़ना तो हम आपकी सारी बातें चाहते हैं। आप हमें बताइए कि सावन के महीने में हरे रंग का इतना महत्व क्यों है, क्या महत्व है इसका? हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की चुनर और बाकी भी जो श्रृंगार के साधन हैं उसमें ज़्यादातर जो है हरे रंग का चुनाव किया जाता है, तो इस बारे में आप हमें बताइए। और जिन लड़कियों की अभी नई नई शादी हुई है और वो अपने ससुराल से मायके आई है, तो वहाँ से ससुराल से भी कुछ उनके लिए तोहफे भेजे जाते हैं, उसमें भी हरी रंग की चूड़ियों का चुनाव ख़ास तौर पर किया जाता है, तो इस बारे में भी आप हमें बताइए। चलिए, अब हरे कांच की चूड़ियाँ इस फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़, गीतकार और संगीतकार कौन है ये आप हमें बताइए। बिस्वजीत और नैना साहू पर फिल्माया गया ये गाना।

हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गाना सुना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आप श्रृंगार की बातें कर रही हैं, कभी हमारी पत्नी साथ थी तो हमें इस सावन में मेघों बिजलियों बरसात को देखते थकते नहीं थे, उसके साथ भीग भी जाते थे। आज ये हरियाला सावन हमें घर में बंद रहने को मजबूर कर रहा है क्योंकि वो चूड़ी बिंदी वाली नहीं रही। क्या कहें इस बारे में, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथी की ये बात है कि जब पति शाम को थका हुआ घर पर आता है तो घर पर पत्नी इंतज़ार करती है, अगर पत्नी सजी संवरी मिलती है तो अच्छा लगता है, सारी थकावट और परेशानी समाप्त हो जाती है और फिर शुरू होती है श्रीमती जी की फरमाइश, जो कि उनका हक है। एक साथी लिख रहे हैं कि सावन के महीने में हरा रंग, प्रकृति के सौंदर्य, सुख समृद्धि और भगवान शिव के प्रति अटूट शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सावन में हरे रंग का बहुत महत्व है। और एक साथी ये लिख रही हैं कि सावन के महीने में हरा रंग प्रकृति में प्रेम, सौभाग्य और भगवान शिव की उपासना से जुड़ा है, बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है और हरा रंग जीवन में नई शुरुआत, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं से भगवान शिव को प्राकृतिक वातावरण और बेलपत्र प्रिय है, हरा रंग प्रकृति का रूप है, इसलिए इसे पहनकर भक्त शिव के प्रति अपना प्रेम और भक्ति प्रकट करते हैं, इसलिए नारियाँ हरे रंग से श्रृंगार करके भोलेनाथ की पूजा करती है। धन्यवाद आपका। और हाँ, एक साथी ने ये बात लिखी कि क्षेत्रवार सजने संवरने की प्रथा अलग अलग है, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के कुछ अलग रिवाज होते हैं। सजी संवरी जो स्त्रियाँ हैं वो अलग अलग उनका जो रूप होता है वो दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि माथे की बिंदिया में सपनों की चमक, आँखों के काजल में अनकहे जज्बात हैं, चूड़ियों की खनक में बसी है यादें, पायल के रुंझुन में दिल की सौगात है, नारी जब स्नेह और मुस्कान से श्रृंगार करती है तो केवल उसका रूप नहीं संवरता, उसके साथ घर, आंगन, रिश्ते और कई बिखरे हुए एहसास भी खिल उठते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि सावन हरेक के लिए मनभावन होता है, धरती साथ श्रृंगार करके हरी भरी बन जाती है, उसी तरह महिलाएं हरी भरी साड़ी और हरे कांच की चूड़िया पहनकर सजधज कर उनके मुख पर निखार आता है, उसी तरह विविध भारती भी प्रसारण तरंगों पर निखार आ जाता है और गीत बज उठता है, चांद जैसे आकाशवाणी के मुखड़े पर विविध भारती जैसा सितारा नहीं भूलेगा, मेरी जान नहीं भूलेगा। जी, आप मत भूलिए, याद रखिए विविध भारती का ये कार्यक्रम सुनते रहिए, विविध भारती के और अन्य कार्यक्रम भी है, उन्हें भी आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल यहाँ करते चलते हैं कि जो नई नई बेटियों की शादियाँ हुई हैं और वो अपने ससुराल से मायके आई हैं, तो ससुराल से कुछ भेंट उनके लिए भेजी जाती, उसे क्या कहा जाता है और उसमें ख़ास तौर पर क्या होता है जो उन बेटियों के लिए, नई शादी जिनकी हुई है, जिनका पहला साल है, ये पहला सावन है, तो उनके लिए भेजा जाता है, तो इस बारे में आप

आपके यहाँ क्या रिवाज है और क्या भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इस बारे में आप हमें बताइए। चलिए, गैम्बलर फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, नीरज के बोल है, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

गैम्बलर फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत एसडी परमन का। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी प्यारी सी इबारत लेकर आप आई हैं और आपने हमें सज धज के विविध भारती के इस प्रोग्राम में बुलाया है, वो भी इतने प्यार से, और अगर हम सज धज के ना आए तो क्या करेंगे आप, शामिल नहीं करेंगे हमें? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ज़्यादा सजना तो हमें पसंद नहीं है, पर चूड़ी बिंदी बहुत प्रिय है। बिंदी तो हमने लगाना आप छोड़ दी है क्योंकि

अब हम बिंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ सजना संवरना ये हर स्त्री का अधिकार है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। धन्यवाद आपका। और हमने आपसे सवाल किया था कि जिन बेटियों की अभी शादी हुई है उनके लिए क्या भेजा जाता है ससुराल की तरफ से, तो हमारे एक साथी ने लिखी है कि हम लोगों के यहाँ उसे सावनी कहते हैं, जिसमें राखी, रुमाल, कपड़े, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयाँ भेजी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि श्रावण में समूची धरती की वर्षा ऋतु के परिणाम से अपने प्रसव धर्मी गुण से हरी भरी चादर ही ओढ़ लिया करती है, फिर ऐसे में हरे रंग का प्रयोग कोई क्यों ना करे। और एक साथी ने लिखा है कि साल होने पर जो तोहफा भेजा जाता है उसे शगुन कहा जाता है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि हरा रंग सृजन का प्रतीक है, सावन में धरती और पर्जन्य का मिलने से नव चैतन्य, हरी फसल, पेड़ पौधे, फूलों फलों का सृजन हो जाता है, इसलिए व्रत वैकल्य में भी हरा रंग शुभ माना जाता है और हरे रंग का श्रृंगार किया जाता है। जी धन्यवाद आपका। चलिए एक सवाल तो हमने आपसे किया था और कि क्या भेजा जाता है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके अंदर एक लहरिया भी भेजा जाता है। लहरिया किसे कहते हैं, लहरिया कौन कौन से प्रदेशों में इसका ज़्यादा उपयोग होता है और लहरिये में कौन से जो रंग है वो प्रधानता लिए होते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो हमें बताइएगा। और अब सावन को आने दो इस फिल्म का गाना, येसुदास की आवाज़, राजकमल का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया आप बताइए हमें।

अरुण गोविल और जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है हमारे साथी की बातें कि जिस कपड़े पर तिरछी लाइंस बनी हो उसे लहरिया कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि राजस्थान में नवविवाहिता बहू के लिए लहरिया भेजा जाता है, वह मुख्यतः पचरंगी या रानी कलर में होता है और उसके साथ श्रृंगार का सामान लहरिए का चूड़ा और घेवर मुख्य रूप से भेजे जाते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि पति पत्नी का जो आपस का प्यार होता है वही सच्चा श्रृंगार होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ इसे सावनी कहते हैं और इसमें न्यूली मैरिड जो लड़कियों के लिए नई साड़ी चूड़ियाँ और पूरा सुहाग का सामान खिलौने मिठाइयाँ और छोटे भाई बहनों के लिए भी कपड़े लाते हैं और मेरी बेटी के लिए भी सावनी अभी आएगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि ससुराल से आने वाला उपहार जो हमारे यहाँ आता है उसे हरियाली कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि पहले सावन पर दुल्हन को चाहे वो

नई साड़ी, चूड़ियाँ और पूरा सुहाग का सामान, खिलौने, मिठाइयाँ और छोटे भाई बहनों के लिए भी कपड़े लाते हैं और मेरी बेटी के लिए भी सावनी अभी आएगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि ससुराल से आने वाला उपहार जो हमारे यहाँ आता है उसे हरियाली कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि पहले सावन पर दुल्हन को, चाहे वो मायके में हो या ससुराल में, भेजे जाने वाले सामान को हमारे यहाँ संधारा कहते हैं। इसमें एक खास मिठाई, फिरनी और घेवर, तीन रंगों से बना झूले के लिए रस्सा, कपड़े, बर्तन और एक दो आभूषण भेजे जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि शादी के बाद पहले सावन या हरियाली तीज पर सिंजारा, नवविवाहिता स्त्री के मायके से जो उपहार भेजा जाता है उसे कहा जाता है, उसे सिंधारा हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। जी हाँ, लहरिया के बारे में हमने बात की। ख़ासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसे पहना जाता है और विभिन्न रंगों में ये होता है और बहुत सारे रंगों की लाइनें, आड़ी, एक तिरछी लाइनें होती है और इस तरह से वो लहरिया सावन के महीने में मुख्य रूप से पहना जाता है और बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। चलिए अब हम अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं, दो रास्ते फिल्म का गाना, लता जी की आवाज़ से, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

दो रास्ते फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी हमारी लिख रही है कि मौसम कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, इस सवाल सदियों से सभी के मन में रहता है कि स्त्रियां इतना क्यों सस्ती है। घर में कितना भी काम धाम हो, वे सजने के लिए वक्त निकाल ही लेती है। स्त्रियों के अधिकार के अलावा एक मुख्य तथ्य यह है कि सजने से स्त्रियों में आत्मविश्वास की एक अलग अनुभूति प्रकट होती है। सलीके से लगाया गया काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी में स्त्रियों का सौंदर्य निखर कर सामने आता है। सादगी के सौंदर्य में नहाई हुई किसी स्त्री को देखिए, वे नेह में नत और विनीत लगती है। किसी भी मौसम में नेह की तरह बरसती हुई स्नेह और संवेदना के रस में सिंचित नारी का असल सौंदर्य यही है। जी हाँ, सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। ये सवाल हम आपसे करने ही जा रहे थे। सजना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं ये हमें बताइएगा। चलिए अगला गाना परिणीता फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़ और अरुण कुमार मुखर्जी का इसमें संगीत है। गीत किसका है ये आप हमें बताइएगा। कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये भी बता सकते हैं।

भरत व्यास का लिखा हुआ ये गाना है और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज तो गानों की हरियाली ही हरियाली है जी, एक के बाद एक अपने लिस्ट तो सुपर हिट है, बहुत आभार विविध भारती का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हर एक स्त्रियों को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, बिंदिया काजल कजरा गजरा पायल मेहंदी चुनर हरी हरी चूड़ियाँ ये सब पहनकर अपने आप खुश होती है और सोचती है साजन भी जरूर कहेंगे कि तेरी बिंदिया रे।

और कजरा लगा के गजरा सजा के ये वो कहेंगी। जी धन्यवाद आपका। चलिए अब मधु फिल्म का गाना हम आपको, देखिए हमने सोचा था कि कौन सी फिल्म का गाना है ये आपसे पूछेंगे, लेकिन हमने ही बता दिया। मधु फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़, नक्श लायलपुरी के बोल हैं, संगीत किसका है आप बताइए।

एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि लता मंगेशकर द्वारा गाया गया धानी चुनर मोरी हाय रे मधु फिल्म का ये गाना एक कालजयी गीत है। नक्श लायलपुरी द्वारा रचित इस फिल्म में चुनरी के माध्यम से यौवन और प्रेम की चंचलता को दर्शाया गया है। रोशन का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़ इस क्लासिक को और भी मनमोहक बना देती है। एक साथी लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में श्रावण महीने से त्यौहार शुरू हो जाते हैं। पहले के ज़माने में स्त्रियाँ 9 गज की साड़ियाँ पहनती थी, बाद में वो 5 गज पर आ गई है। सज धज कर त्यौहार में हर्षोल्लास के साथ वो शामिल होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक फूल चार कांटे इस फिल्म का गाना है, मुकेश की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

सुनील दत्त और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना एक साथी की ये बात कि हमारे शहर में बरखा रानी बड़े प्यार से धरती का साथ सिंगार कर रही है और सुरीला सफ़र में हम नारी के आंतरिक और बाह्य साथ सिंगार की बातें कर रहे हैं, उस पर सुंदर से गीत सुन रहे हैं। ऐसी प्यारी अनुभूति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि सजने संवरने के लिए तो शहरों में आज पार्लरों की बाढ़ सी आ गई है, घर पर सस्ती महिलाओं का अब मन कहाँ भरता है, काम से फुर्सत मिलते ही बैग टांग कर पर्स लिए एक हाथ में मोबाइल और जा पहुंचती शहर के व्यस्ततम पार्लर में और नख से शिखर तक पूरा मेकअप करा कर ही लौटती हैं। वे ये जो पतिदेव हैं बड़े नाराज हमें लग रहे हैं, तो श्रृंगार जरूरी है लेकिन सीमाएं तय करना भी बहुत जरूरी है। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अभिमान फिल्म से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत किसका है आप बताइए।

अभिमान फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसमें बहुत खूबसूरत सा जो ये संगीत है ये SD बर्मन का संगीत है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख करके भेज दिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे बिल्कुल साथ साथ रहे, हर बात का आपने जवाब दिया और खूबसूरत आपके कमेंट्स थे और आपने ये भी लिखा कि गीत आपको पसंद आए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारी मुलाकात होगी। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए मंजू द्विवेदी को। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई यह यात्रा गांधी मैदान स्थित जेपी कोलंबर से शुरू हुई और करगिल चौक के पास समाप्त हुई। 1.5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और इसका सम्मान करना हर भारतीय का दायित्व है। उन्होंने लोगों से जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 1100 रूपये मासिक पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इसके तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और बिहार निःशक्तता पेंशन योजना समेत 6 योजनाओं के लाभार्थियों के बीच राशि का हस्तांतरण किया गया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद थीं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिसीमन पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। श्री प्रकाश ने कहा कि फिलहाल पंचायत चुनाव की समय सीमा तय करना संभव नहीं है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 12,000 से अधिक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी सामूहिक अवकाश पर हैं। ये सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने प्रस्तावित अधिनियम से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरियरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहली बार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पूर्णिया के श्रीनगर में सबसे अधिक 58.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जिला प्रशासन और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरुआत की। 20 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई। वजीर आला सम्राट चौधरी की क्यादत में निकाली गई यह यात्रा गांधी मैदान वाक़ जेपी गोलंबर से शुरू हुई और कारगिल चौक के करीब इख्तिताम को पहुंची। 1.5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में महसूलात व इस्लाहात राजी के वजीर दिलीप जायसवाल, वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी, इमदाद बाहमी के वजीर रामकृपाल यादव, खुराक व सारफीन तहफ़ के वजीर अशोक चौधरी समेत रियासती काबीना के कई मेम्बरान, अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदे शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों और आम लोगों ने भी शिरकत की। तिरंगा यात्रा शुरू होने से कबल मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि तिरंगा हमारे इज्जत नफ्स की अलामत है और इसका एहतराम हर हिंदुस्तानी का फर्ज आयन है। उन्होंने लोगों से जिला, शहरी बल्दियात और पंचायत सतह पर मुनक्किद होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने की भी दरख्वास्त की। वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज समाजी तहफ़ पेंशन मंसूबे के तहत मुस्तफिदीन के खाते में 1100 रुपये माहाना पेंशन की रकम DBT के तवसुस से ट्रांसफ़र किया। इसके तहत वजीर आला ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन मंसूबा और बिहार माजूरी पेंशन मंसूबे समेत 6 मंसूबों के मुस्तफिदीन के दरमियान रकम की मुंतकली की गई। वजीर आला रहायशगाह में मुनक्किद प्रोग्राम में नायब वजीर आला विजेंद्र प्रसाद यादव और समाजी फलाह की वजीर श्वेता गुप्ता मौजूद थीं। पंचायती राज के वजीर दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायत इंतखाब के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के रहनुमा उसूल में हदबंदी का अमल शुरू हो गया है। आज कटिहार में नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद ही पंचायत इंतखाब कराए जाएंगे। जनाब प्रकाश ने कहा कि फिलहाल पंचायत इंतखाब के वक्त का तयन मुमकिन नहीं है। मुजफ्फिजा यूनिवर्सिटी बिल 2026 के एहतजाज में रियासत के सभी सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के 12,000 से जायद असातजा और गैर तदरीसी मुलाजमीन इज्तमाई छुट्टी पर हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर पर अपने मुतालबात की हिमायत में धरना दे रहे हैं। असातजा तंजीमों ने मुजफ्फिजा बिल से यूनिवर्सिटियों की खुदमुख्तारी मुतासिर होने का इल्ज़ाम लगाते हुए हुकूमत से नज़रसानी करने का मुतालबा किया है। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस मौके पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए अकीदतमंदों की कतार लगी हुई है। पूरा माहौल अकीदत और एहतराम के जज्बे से सरशार है। हमारे सहाफियों ने बताया।

0: कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वानावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में बड़ी तादाद में अकीदतमंद भगवान शिव की पूजा अर्चना करके जलाभिषेक कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहली बार कांवरियों पर गुलों की बारिश की गई। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी तादाद में कांवरिया उत्तरवाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवरिया 105 किलोमीटर से जायद की दूरी तय करके झारखंड के देवघर वाके बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। रियासत में मानसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाली हिस्सों में कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हुई है। पूर्णिया के श्रीनगर में सबसे ज्यादा 58.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आज रियासत के जनूबी हिस्सों में कई मकामात पर तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बर्फबारी की भी वार्निंग जारी की गई है। अररिया के जिला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन ने जिला इंतजामिया और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य यूनिवर्सिटी के मुश्तरका ज़ेरे एहतमाम नशा से पाक अजाइम मुहिम की शुरुआत की। 20 अगस्त तक चलने वाली इस मुहिम के तहत लोगों को नशा से पाक करने का हलफ दिलाया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर के कुल 545 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन

आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.pnb.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने

0: केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आज
1: विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
2: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि CBI जांच करा दो और JSSC के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ED जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
1: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
3: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
1: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों JPSC सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।

0: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साह पूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दो पहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
4: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई

0: निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का जो पहला गाना है तूफान और दिया। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़, संगीत है वसंत देसाई का।

तुझको ये भी पता।

0: जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है।
1: कभी तो नजर
0: एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आप।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुन जरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अब जो गीत आपके लिए लेकर आए हैं ये लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शतरंज फिल्म का गाना है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है सी रामचंद्र का।

रंगीन रातें ये फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में। केदार शर्मा के बोल, संगीत है रोशन का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: राजहट फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

लीजिए अब सुनिए CID फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार OP नैयर।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं, पॉकेट मार फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और साथियों के आवाज़ों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अब आपको सुनवाते हैं। पटरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
2: और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हाल चाल है?
1: देखिए, हम किसी से जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल। और ये हालचाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
2: बहुत जरूरी बात है। और आजकल ऐसे हो रहा है मंजू जी, हाँ? कि ये बात जो है ना, ये युवा के ना पीछे भी छूटता जा रहा है।
1: अच्छा,
2: कि लोग मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए, इतने झुके रहते हैं कि वे हालचाल पूछना भी भूल रहे हैं।
1: बहुत गलत बात है ना।
2: तो हालचाल पूछते रहना चाहिए, फिर आपस में हो या फिर बुजुर्गों का हो।
1: हाँ बिल्कुल, सभी का हालचाल पूछ लेने से क्या होता है कि सामने वाले के मन में भी एक बात आ जाती कि हाँ, मेरी परवाह करने वाला कोई है। और जब ये बात बुजुर्गों के संदर्भ में आती है तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप उनके बारे में जानते रहिए, उनके हालचाल के बारे में जानते रहिए, और अगर उन्हें कोई समस्या है तो बड़े प्यार से उसे सुलझाइए, क्योंकि आखिर वे हमारे घर के बुजुर्ग हैं, यानी हमारे घर की नींव हैं। और अगर हम उनकी चिंता नहीं करेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, उनकी कद्र नहीं करेंगे या उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो ये बहुत गलत बात होगी।
2: और ऐसा है ना, हर किसी को इस अवस्था से गुजरना है।
1: बिल्कुल,
2: अगर हम बुजुर्गों की परवाह करेंगे, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो देख के वो भी बुजुर्गों की परवाह करना सीखेंगे।
1: हाँ।
2: अगर हम उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो यही हमारे साथ भी हो सकता है।
1: आज सीढ़ी के जिस पायदान पर बुजुर्ग खड़े हैं, कल हम भी उसी पायदान पर खड़े होंगे। तो इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए आज हमने विषय चुना है कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों का हठीलापन। तो ये हट वाली जो बात है, तो ऐसा नहीं कि सभी में होती है, लेकिन कई कारण होते हैं इसके पीछे,
2: जिसके पीछे वो हटेले हो जाते हैं।
1: शारीरिक अवस्था भी होती है और बाहर के भी बहुत सारे कारण होते हैं। आसपास का वातावरण हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती, कोई भी कारण हो सकता है। तो उन कारणों का आज हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा
2: कथासुधा, जिसका सारे श्रोतागण, सारी सखियां इंतजार कर रहे हैं, 73 भाग 1, इसे हम सुनेंगे। और व्यंजन,
1: हाँ, ये तो एक बहुत ही

0: एक मुख्य हमारा जो कहते हैं सेक्शन हो सकता है या होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि खाना पीना सभी को पसंद होता है, तो आज कौन से व्यंजन हम खिलाएंगे?
1: पश्चिम बंगाल के व्यंजन में बसंती पुलाव और संदेश, ये इसे सौंदेश भी कहते हैं।
0: जी हाँ जी हाँ, तो हमारा सौंदेश ये है कि आप सुनते रहिए विविध भारती सखी सहेली कार्यक्रम, सुनिए और ये जो व्यंजन हम थोड़ी देर में बनाने वाले हैं या इसकी रेसिपी जो बनाने वाले हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल सजग रहिएगा कि किस, देखिए एक व्यंजन होता है लेकिन रेसिपी जो है बहुत अलग तरह से अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से बनाई जाती है, उसका स्वाद भी जैसे जैसे हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा अलग होता
1: बदलता जाता है।
0: हाँ।
1: और तो, उसकी जो उसकी मिट्टी की खुशबू है ना, हाँ, वो उस व्यंजन में नजर आती है ना।
0: लेकिन विविध भारती एक ऐसा मंच है कि जहाँ पर हर क्षेत्र के श्रोता इसे सुनते हैं और अपने अपने क्षेत्र के बारे में वो बताते हैं कि वहाँ इसे किस तरह से बनाया जाता है, कब खाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, इसकी सुगंध कैसी होती है।
1: तो हम श्रोताओं से कहेंगे आप भी लिखकर भेजिए, हाँ, कि आपने ये बसंती पुलाव या सौंदेश बनाया है या नहीं बनाया है,
0: हाँ,
1: और अगर नहीं बनाया तो बनाने वाले हैं क्या, या फिर जिनके घर में बनता है तो वो लिखकर भेजिए। साथ ही बुजुर्गों वाली जो बात कही हमने, तो आपके घर में बुजुर्ग है क्या और किस तरह से उनका हट होता है, कभी बाल हट की तरह भी होता है उनका हट, तो आप उनका हट पूरा करते हैं या नहीं, इस तरह से कमेंट्स हमें जरूर लिखकर भेजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है।
0: बिल्कुल, फिलहाल हम एक गीत का इंतजार कर रहे हैं।
1: सुनते हैं।
2: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
3: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
2: लेकिन कब, कैसे
3: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

0: सोनाली, गाना हमने सुन लिया और अब कथा सुधा का वक्त हो गया है। तो आज की जो कहानी है तेतर, इसका पहला भाग हम सुनेंगे। इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने कुछ बातें लिखी है कि इस ये जो शब्द है तेतर, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में लिखा है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि तेतर महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध मार्मिक कहानी है, जो तीन पुत्रों के पश्चात पैदा होने वाली कन्या और उससे जुड़े समाज के अंधविश्वासों पर आधारित है। और कहानी का परिचय और मुख्य बिंदु कथानक तीनों बेटों के बाद घर में बेटी यानी कि तेतर का जन्म होता है, तो उसके बारे में जो बातें हैं, बहुत मान्यताएं हैं उसके बारे में ये कहानी है। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी हमें लिख करके भेजी, सुन लें अपन।
1: सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। कहना न होगा कि प्रेमचंद ने अपने समय के समाज में जो कुछ भी देखा उसका हूबहू सजीव चित्रण भी किया, जो आज के समय में हमें रास्ता दिखाने का भी काम करता है। लड़कियों के जन्म को लेकर बनी हुई मानसिकता और घोर निराशा व चिंता को देखते हुए एक लेखक ने इस कहानी के माध्यम से सभी को आगाह करने का प्रयास किया है। तेतर नाम की कहानी में लेखक ने तीन लड़कों के बाद जन्म लेने वाली लड़की का उल्लेख किया है, जिसे पहले से ही हमारे पुरुष प्रधान समाज में एक आफत और चिंता के रूप में देखा जाता है। कहानी में मुख्य रूप से समाज में एक तेतर लड़की को लेकर फैले हुए अंधविश्वास पर चोट की गई है, जो कहीं न कहीं हमारे बीच के कुछ लोगों द्वारा प्रसारित किया जाता है और इस अंधविश्वास को पुख्ता करने के लिए तरह तरह का स्वांग किया जाता है। जो व्यक्ति इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता उसे भी इन अंधविश्वास से भरे समाज में डर लगने लगता है। जैसे कि कहानी में लड़की का पिता, जिसका नाम दामोदर है, वो इन अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता, पर कहीं न कहीं वो भी अपनी माँ की बातों से थोड़ा घबराया हुआ था। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपको सुनवा रहे हैं इस कहानी का पहला भाग।
4: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। तीन पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ महाअनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने।
5: अरे कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहां। अरे किसी ऐसे के घर जाती जिसके औलाद नहीं है तो उसके तो दिन फिर जाते।
4: दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे।
6: अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो अम्मा, नहीं तो लोग कहेंगे तीन बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया।
5: अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण तो उसी में समाया हुआ है।

0: तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कहाँ उठता है।
1: अम्मा, इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा।
0: उपाय बताने वाले तो बहुतेरे हैं, और पंडित जी से पूछो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुट्ठियां गर्म हुई, यहां जो सिर पर पड़ना था वो पड़ ही गया, अब टके के रह गए पंडित जी। जजमान मरे या जिए उनकी बला से, उन्हें दक्षिणा मिलनी चाहिए बस। लड़की तो जरा देखो दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक, कलमुई नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। हाँ,
2: दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी ना थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले,
1: अम्मा, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा ही।
0: क्या बताएं, जी तो हुलसता ही नहीं, लेकिन करूं क्या।
1: अम्मा, गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा? अगर इतने सस्ते में जान छूटे तो न कराऊंगा ना।
0: अब बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया।
2: इतने में सौर में से पुकार कर लक्ष्मी ने कहा,
3: अम्मा जी, ओ अम्मा जी, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का कोई काम नहीं है।
0: भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन हैं, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूंगी वो ना करूंगी, देवी क्या है देवता क्या है। मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी, तो अब चुप से बैठी क्यों नहीं रहती हैं। मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों में जब मेमों की बराबर करती हैं तो इस बात में भी करें, कहो चुप बैठी रहें। और सुनो लक्ष्मी, जाओ जरा गाने वालियों को बुला लाओ, और हाँ, सब जगह न्योता दे दो, और पड़ोस में भी कहती जाना। हाँ,

0: सवेरा होते ही लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा,
1: बड़ी अम्मा बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ बताइए ना।
2: अरे लड़की तो हुई है बेटा।
1: क्या? ओहो हो, पैजनिया पहनकर छुन छुन चलेगी? जरा मुझे दिखा दो दादी जी, थोड़ा दिखा दो ना।
2: अरे तो क्या सौर में जाएगा है, पागल हो गया क्या? चल बाहर चल, लड़के नहीं जाते अंदर।
0: लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला,
1: अम्मा अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो, एक बार दिखा दो अम्मा।
3: कहाँ जाते हो, बच्ची भी सोई है, चलो बाद में आना।
1: बच्ची को मुझे दिखा दो, जरा दिखा दो, गोद में लेकर देखूंगा।
0: लक्ष्मी ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दौड़ता हुआ वो अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाने लगा।
1: अरे छोटू सुनो, अरे छोटू सुनो, उठो उठो। अरे मैं अभी गुड़िया देखकर आ रहा हूँ।
4: कोई लगाओ भैया, नन्ही सी होगी?
1: अरे बिल्कुल नन्ही सी, एकदम गुड़िया जैसी है, गोरी तो ऐसी कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। ये लड़की तो मैं लूंगा।
4: हम भी देखेंगे, कोई लगाओ।
1: देखा कैसी सुंदर है,
4: कैसा मन करके सोए, देखो ना भैया हमको।

0: हम भी देखेंगे।
1: खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े आतिशबाजी, क्या मजा आएगा।
2: मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वो मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे।
0: फूल भी होंगे,
3: ढेर सारे फूल होंगे,
0: हम भी फूल लेंगे, बड़ा मजा आएगा,
4: बड़ा मजा आएगा,
5: बड़ा मजा आएगा,
6: बहुत मजा आएगा,
7: बहुत मजा आएगा,
8: कितने सुंदर है।
2: छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूं भी उसे देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहां तक कि दूध उतर ही आता था, पर अब की ये आयोजनाएं न की गईं। फूल से बच्ची कुम्हलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, लक्ष्मी कभी चुटकियां बजाकर चमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता था। बड़ा बेटा सिद्धू बच्चे को बाहर ले जाकर खिलाने के लिए बार बार जिद करता तो माँ उसे झिड़क देती।

0: तीन चार महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वो माता की ओर मुंह भी ना फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई।
1: अरे बच्चे, कितनी प्यारी है गुड़िया। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
0: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: क्यों ले आए? पड़ी रहने दो ना वहीं पर। ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है? अब आगन कहीं की, रात दिन तो प्राण खाती रहती है। अब मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए।
1: अरे बस भी करो, मैं इसे बाहर ले जाता हूं।
2: दामोदर दत्त उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उसके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वो चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू, जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ, तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो, तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
2: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: सोनाली, हमने बरखा फिल्म का ये गाना सुन लिया, और उससे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी तेतर, उसका पहला भाग भी सुन लिया। अगला भाग हम जरूर सुनेंगे अगले सोमवार के दिन, लेकिन अभी
1: अब ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ,

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हम फिर से हाजिर हैं सखियों से बातचीत करने के लिए। और अब अपने विषय पर आते हैं, उससे पहले तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है,
0: हाँ
1: मंजू जी, कि इस समय मेरी धर्म पत्नी और मैं स्वयं डल लेक के सामने श्रीनगर के होटल के रूम में आनंद ले रहे हैं। अपने शहर अजमेर से लगभग 1500 किलोमीटर दूर ये हमारी दीवानगी विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। जो सुबह सुरीला सफर जो प्रोग्राम चल रहा था ना, तब भी हमारे इन्हीं श्रोता का फोन आया, मैसेज आया था, और उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात लिखी थी कि वो घूमने गए हैं और वहाँ पर जो नज़ारे हैं उसके बारे में लिखा था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के अपडेट्स जो है वो हमें देते रहते हैं। और आज हमारा जो विषय है, बुजुर्गों में बढ़ता हठीलापन, इसके बारे में हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी है। पहले कुछ बात हम अपनी, यानी जो हम कहना चाहते हैं वो करते हैं कि कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा जीवन के दो ऐसे पड़ाव होते हैं जहाँ व्यक्ति को सबसे अधिक स्नेह, धैर्य और अपनापन चाहिए होता है। फर्क केवल इतना ही होता है कि बचपन की जो जिद होती है वो मासूमियत भरी होती है, लेकिन बुढ़ापे की जो जिद होती है वो कई बार हट का रूप ले लेती है। यानी बच्चों की जिद तो हमें समझ में आती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे हैं, जिद तो करेंगे, लेकिन वही जब बुजुर्ग व्यक्ति करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें ये कैसे हट कर सकते हैं,
1: ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। वैसे मंजू जी, आज के समय में ये शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारे पिताजी या माताजी बहुत जिद्दी हो गए हैं। लेकिन यदि इस व्यवहार के पीछे के कारणों को अगर समझा जाए तो पता चलता है कि उनका हट केवल स्वभाव नहीं बल्कि परिस्थितियाँ, अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा का ये परिणाम हो सकता है।
0: तो हमें इन कारणों को जानने के बारे में सोचना चाहिए या जानना चाहिए। तो हठीलापन वो स्थिति होती है जब व्यक्ति अपनी बात, अपनी आदत या अपने निर्णय पर अड़ जाता है और दूसरे के विचारों को स्वीकार करने में उसे कठिनाई महसूस होती है। बुजुर्गों में ये जो व्यवहार, ये अक्सर उम्र, अनुभव, स्वास्थ्य और बदलते सामाजिक परिवेश के कारण दिखाई देते हैं। यानी कारण कोई भी हो सकता है,
1: हमें कारण होते हैं,
0: हमें समझना पड़ेगा।
1: अब जैसे बदलते समय में ये जो स्वीकारना है, इस बदलते समय में खुद को यानी उसके हिसाब से ढालने, इसमें उन्हें कठिनाई आ सकती है। और जिस समाज में उन्होंने जीवन बिताया, आज वही समाज पूरी तरह बदल चुका होता है। नई तकनीक है, नई सोच है, नई जीवन शैली है और नई पारिवारिक मूल्य उनके लिए सहज नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल। और जैसे कि इसके बारे में अगर हम एक उदाहरण दें तो हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ससुर, कोई भी हो सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि पूरा परिवार जो है वो रोज एक साथ बैठ करके भोजन करे। लेकिन होता क्या है कि आजकल जिस तरह से नौकरी लोग कर रहे हैं और उनका समय बहुत ज्यादा होता है, नौकरी का, पढ़ाई है या अलग अलग समय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार टूट रहा है, जबकि अगर वास्तविकता की तरफ अगर हम नजर डालें तो यही कहा जा सकता है कि दिनचर्या सबकी अलग अलग है, तो परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं।

0: लेकिन कुछ लोगों को इन परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके हठीलेपन का।
1: पर हम एक उसमें बीच का एक रास्ता चुन सकते हैं कि भाई ठीक है, दादाजी का मन है, उनकी इच्छा है, तो हम हफ्ते में एक बार या दो बार तो हम कर ही सकते हैं,
0: हाँ, जब
1: कोशिश
0: संभव
1: तो कर
0: हो।
1: ही सकते हैं।
0: जी
1: तो
0: हाँ,
1: होता यूँ है कि लोग खाना खाने बैठे हैं, उस वक्त भी उनका ध्यान नहीं होता है कि खाने में नमक ज़्यादा है या कुछ कम है या कुछ है, वो तो बस मोबाइल देखते हुए खाते हैं।
0: हाँ, और या तो टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए, जबकि
1: जी
0: पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पूरा परिवार साथ में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करते हुए भोजन करते थे, तो उसमें सुख दुख का बंटवारा भी हो जाता था। सब अपने मन की बात कहते थे, दिन दिन भर क्या हुआ उसके बारे में एक विश्लेषण होता था। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक तरीका था जो अभी भी होना चाहिए, लेकिन जब नहीं होता है तो कई बार बुजुर्ग लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती है।
1: तकलीफदायक हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और एक बात है मंजू जी, कि आजकल ना सम्मान थोड़ा सा कम देने लगे हैं लोग, कि पुराने जमाने में हमारे जो दादाजी हुआ करते थे, वे अपने पिताजी को या उनके दादाजी को बहुत सम्मान देते थे, उन्हें महत्व देते थे, हर काम में कोई भी बड़ा या छोटा काम करने से पहले उनकी सलाह ली जाती थी। पर आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि जैसे ना कि खुद की जैसी इच्छा हो उसी तरह से व्यवहार करें, पर बुजुर्गों को थोड़ा सा अगर मान सम्मान दिया, उनसे पूछ परख लिया, अगर उनसे सलाह ले ली, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। फिर ऐसी बात अगर उन्हें इस तरह से उन्हें शामिल नहीं किया गया तो वे नाराज़ हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे ज़माने में कैसे बुजुर्ग बैठ कर आपस में पूछते थे, परखते थे, फिर कोई घर का निर्णय लेते थे। आजकल तो हमें सब काम होने के बाद में पता चलता है कि भाई नया घर खरीदा जा रहा है, या फिर कोई शादी विवाह का मामला है, या फिर कोई अन्य मामला है, बच्चों के एडमिशन की भी बात हो तो भी, अरे हमें तो पूछा भी नहीं कि एडमिशन भी हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें ना बुजुर्गों को थोड़ी
0: चुभ जाती
1: तकलीफदायक हो
0: है।
1: सकती है।
0: बिल्कुल। और पहले के ज़माने की तुम बात कर रही हो, तो जो बड़े लोग होते थे ना, एक बार अगर उन्होंने कह दिया कि ये होना है, यही होगा, तो हमारे जो पिताजी थे वो उनकी बात को बिना सोचे समझे मान लिया करते थे। लेकिन अब शायद थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं और लोग ये सोचते हैं कि नहीं, नए ज़माने या नई तकनीक या नए जो चाल चलन या जो तरीका जो है, चलन में जो तरीका है, उसके बारे में शायद बुज़ुर्गों को इतना पता ना हो। तकनीक बहुत कुछ बदल गई है, तो हमें क्या करना है ये हमें ही ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम है। शायद इस सोच की वजह से भी हम पूछते नहीं हैं उनसे, और ये भी एक कारण है कि ये उनके मन में कुछ इस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं बुज़ुर्गों के मन में कि अरे अब हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं बची, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। और फिर वो अपने महत्व को शायद ये चाहते हैं कि हमारा भी कुछ महत्व बताने के लिए भी हो सकता है, ये एक कारण कि उनमें हठीलापन आ जाए।
1: और कभी कभी रूठ भी जाते हैं वो
0: बिल्कुल। तो उन्हें मनाना ये भी हमारी
1: जिम्मेदारी
0: जिम्मेदारी
1: है।
0: होती है। गीत सुन लें यहाँ पर।
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजू जी,
1: हम्म,
0: हमारे एक सखी ने लिखा है, मैं इस समय बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हूँ। इस समय यहाँ 12:05 हुए हैं, इंडियन टाइम से 3.5 घंटे पीछे हैं।
1: क्या
0: कितना
1: बात
0: अच्छा लगता
1: है।
0: है ना।
1: हाँ, समय कोई भी हो, लेकिन अगर आप विविध भारती सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी आनंद की बात
0: बात
1: है।
0: है।
1: चलिए, हमारा जो विषय है उस पर हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के मोबाइल और डिजिटल युग में सबसे बड़ा बुरा हाल जो है वो उम्र दराज और बुजुर्गों का है। जो कभी समाज के ऊपरी पायदान पर होते थे, उसे आज समाज कोई पूछता भी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जीवन का अनुभव उनके पास होता है और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले समाज और परिवार के सभी बड़े काम जिन वडिलों को पूछे, वडिल यानी बड़े लोगों से पूछे बिना
0: बुजुर्ग
1: नहीं होता था, आज उनको पूछा नहीं जाता है। तो ये गलत है। अगर आप किसी भी घर में ऐसा होता है
0: तो वो
1: तो ये
0: गलत
1: नहीं
0: है
1: होना चाहिए।
0: जी। एक साथ ही लिखते हैं मंजू जी कि मैं भी 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मुझ में कोई हठीलापन नहीं है। घर के सभी सदस्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उन सभी की खबर ख्याल रखता हूँ। सुबह विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने चला जाता हूँ। इन सभी के अलावा विविध भारती फेसबुक पेज से कई श्रोता मित्र, उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और उनके लिए विविध भारती के लिए यही कहता हूँ कि तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए नहीं, जिंदगी की हर घड़ी के लिए गम जाने किधर चला जाता है पता ही नहीं
1: क्या
0: चलता।
1: बात है। जिंदगी के प्रति हमारा जो नजरिया होता है ना,
0: जी,
1: वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: बिल्कुल, शारीरिक अवस्था चाहे कुछ भी हो, चाहे हम जवान हो या ढलती उम्र हो या बुढ़ापा हो, लेकिन जब हमारा नजरिया सही होता है तो जो शारीरिक परिस्थितियां हैं उनमें भी कुछ तो बदलाव आ ही
0: आ
1: जाता
0: ही
1: है।
0: जाता है यानी, और है ना, छोड़ देने की आदत कि ठीक है उनके हिसाब से चलो, या फिर है ना कि हर चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है।
1: हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी उम्र इतनी बड़ी है तो परिस्थितियों में बदलाव आना स्वाभाविक बात है। उन परिस्थितियों से अगर थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए, अपने नज़रिए को थोड़ा बदल दिया जाए कि हाँ, ये बदलाव तो होगा ही, हमारे ज़माने में ऐसा होता था लेकिन इस ज़माने में ऐसा हो रहा है, तो हमें भी इस समय के अनुसार चलना है। ये अगर सोच थोड़ी सी कर ली जाए तो भी बहुत सारी परेशानियों से हम बचे रह सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि बढ़ती उम्र और बुज़ुर्गों का हटीलापन। भाई, बढ़ती हुई उम्र एक तो वैसे ही खतरे की घंटी है, ऊपर से उनका हठीलापन, यह तो ऐसे ही हुआ जैसे सोने पे सुहागा नहीं। ये हमारा सोचना ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, सोने पे सुहागा वाली बात नहीं है ये। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि हठीले लोगों से लगता है कि आप सभी का पाला पड़ा नहीं है, और इस तरह की बात लिखी है। हमारा इनसे ये कहना है कि बुजुर्गों के बारे में आप इस तरह से ये लिखना थोड़ा ठीक नहीं है। उन्हें थोड़ा आदर भाव से
0: वे सिर्फ
1: कहें, उनकी
0: सम्मान
1: समस्या,
0: चाहते।
1: बिल्कुल उनकी जो समस्या है उसकी तरफ हमारी नज़र होनी चाहिए, और उसे कैसे दूर किया जा सकता है और उनकी समस्या को समझने का प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए। कि जैसे कई बार होता है कि उम्र के हिसाब से हमारे जो सिर के बहुत सारे अंग होते हैं वो थोड़े से मंद पड़ने लग जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग
0: भूलने
1: जाती है,
0: लगते हैं।
1: भूलने लगते हैं। तो इस तरह के जो बदलाव आते हैं उससे भी ये समस्या होती है। हमें ऐसा लगता है कि हठीलापन है, जबकि ऐसा वो करते नहीं हैं, बल्कि ऐसा हो जाता है कि वो अपनी एक बात से चिपक जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो हठीलापन कर रहे हैं, तो हमें इन बातों को समझना होगा।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की जिद से निपटने के उपाय, धैर्य से सुने, उनकी बातों को काटे नहीं, उन्हें महसूस कराए कि उनकी राय क्या में महत्वपूर्ण क्या है, सम्मान दे, उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, आदेश देने के बजाय प्यार से सुझाव दे, सक्रिय रखे, उन्हें सैर, योग या पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करे।
1: बिल्कुल, एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बुजुर्गों का हठीलापन कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनके जीवन के इस पड़ाव की एक पुकार है जो अपनों का साथ और

0: सम्मान चाहती है, उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके इस व्यवहार को धैर्य और प्रेम से संभालना ही एक परिपक्व समाज और परिवार की पहचान होता है। तो ये बहुत सारे श्रोताओं ने बातें लिखी है, और भी कोई बात अगर तुम्हारे पास है तो तुम पढ़ के बता सकती हो हमें।
1: जी, एक साथी लिखते हैं कि बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में हठीलापन आना एक बहुत ही मुख्य समस्या है, आम समस्या है। मुख्य कारणों में बढ़ती उम्र तो है, इसके चलते मुख्य कारणों में स्वतंत्रता खो देने का डर होता है, शारीरिक या संज्ञात्मक कमी, डिमेंशिया के कारण पराधीन होने का मनोवैज्ञानिक डर बना हुआ रहता है, जिसके कारण हमें उनमें बच्चों की तरह हठीलापन का एहसास होने लगता है। खासकर जब बढ़ती उम्र में उनकी उपेक्षा होने लगती है, तब उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, प्यार से समझाकर उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
0: बिल्कुल। अब हम संगीत का भी सम्मान करते हैं, एक गीत सुन लेते हैं यहाँ
1: सुनते
0: पर।
1: हैं गीत।

0: ये फिल्म अगर देखी हो ना, तो इसमें जो ये गाना है ना, दादी अम्मा मान जाओ, तो दादी के जो पोते होते हैं वो किस तरह से बड़े प्यार से दादी अम्मा को मनाते हैं, तो वो वाकई में देखने लायक है।
1: और ऐसे ही अगर दादी को मन या दादा को मनाया जाए तो दादी या दादा रूठेंगे ही नहीं, बिल्कुल से मान जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सम्मान उनके प्रति होना बहुत आवश्यक है। अब कुछ खाने पीने की बातें हो जाए।
1: हाँ,
0: देखिए,
1: आज हम पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले हैं।
0: हाँ, जो बसंती चावल और सौंदेश की हम बात कर रहे हैं, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बसंती चावल पंजाब के बहुत सारे प्रांत में बसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है, जिसमें बासमती चावल को घी में पकाते हैं और उसमें केसर, ड्राई फ्रूट और चीनी का सिरप मिलाकर बनाते हैं। और मैंने अपने पड़ोसी के घर ये खाया है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सौंदेश तो खाने के लिए मिठाई की दुकानों से मिल जाता है, बंगाली सहेली के घर पर बहुत सारे हमने बंगाली

0: व्यंजन खाए हैं।
1: एक ने सौंदेश की रेसिपी लिखकर भेजी है हमारे एक साथी ने। इसकी सामग्री और तैयारी, तो दूध 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेना है, चीनी 3 से 4 बड़े चम्मच लेना है, इलायची पाउडर छोटा आधा चम्मच और नींबू का रस या सिरका 2 बड़े चम्मच दूध को फाड़ने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: बनाने के लिए छेना बनाए, दूध को उबाले, फिर गैस बंद कर दे और नींबू के रस या सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर धीरे धीरे दूध में डाले ताकि वे आराम से फट जाए। अब पानी निकाल ले। अब फटे हुए दूध को सूती कपड़े में छान ले और साफ पानी से धोकर अतिरिक्त पानी निकालकर उसे निचोड़ ले। अब उसको अच्छे से मैश करना है, उसको मसलना है। छेने को प्लेट में निकालकर हथेलियों से 7 से 8 मिनट तक चिकना होने तक मस ले। अब इसको पकाना है। इसमें अब पकाने के लिए इसमें पीसी चीनी डालना है मसलने के बाद में, और इलायची पाउडर मिलाए और मिश्रण को पैन में धीमी आंच तक 3 से 4 मिनट तक नरम होने तक पकाए और ठंडा करें। और इसे आकार देना है। हाथों में घी लगाकर मिश्रण की छोटी छोटी लोइयां बनाएं और मनचाहा आकार देकर पिस्ता से या फिर काजू या फिर बादाम से सजा दे।
0: बिल्कुल सही बात तुमने कही है कि किस तरह से सजाया जाए। लेकिन सोनाली, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहले के ज़माने में चाहे कोई त्यौहार आए या कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, तो घर में ही सारी मिठाइयाँ बनती
1: बनाई
0: थी।
1: जाती थी,
0: हाँ, और वो बड़ी स्वादिष्ट भी लगती थी और कई कई दिनों तक हम उसे खाते थे।
1: खाते थे।
0: स्वाद मुँह से जाता ही नहीं था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि बनाने का समय ही नहीं है तो बस बाजार से ले आओ और खा लो।
1: और फ्रिज
0: तो
1: में रख दो।
0: हाँ, फ्रिज में रख दो। तो इसकी बजाय हम कभी कभी ये बनाने की अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि घर की बनी हुई जो मिठाइयाँ होती है उसका स्वाद एकदम
1: कुछ
0: अलग
1: अलग
0: होता
1: ही
0: है।
1: होता है।
0: और शुद्धता की भी तो बात है ना, हमें पता है कि हमने कौन कौन सी सामग्री इसके अंदर मिलाई है, किस तरह से बनाया है। और अगर घर में बनता रहेगा तो ये जो रेसिपी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये
1: ट्रांसफर होती है।
0: ट्रांसफर होती रहेगी। अन्यथा अगर आगे हम नहीं बनाएंगे तो आगे वाली
1: पता
0: पीढ़ी को
1: ही
0: तो
1: नहीं
0: पता
1: चले।
0: ही नहीं चलेगा कि इन पर्वों पर, इन उत्सवों पर क्या बनता था हमारे घर में और कैसे बनाया जाता है। तो ये भी एक बात है ना।
1: और जब हम घर में बनाते तो अच्छे हाइजीन का ध्यान रखते हैं,
0: हाँ।
1: साफ हाथ धोकर फिर हम ढक कर रखते हैं कि उस पर कुछ कीड़ा ना लग जाए, इसलिए हम कितना ध्यान रखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये
0: और
1: ध्यान रख के बनाना बहुत ज़रूरी
0: हाँ,
1: है।
0: और पहले के ज़माने में तो मैंने ये भी देखा है कि जब ये ऐसे पर्व उत्सव आते थे तो अपने घर में क्या बना है, एक प्लेट भर के हम अपने पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के घर भी देने के लिए जाते थे और वहाँ से भी प्लेट
1: उनके
0: भर के
1: आते
0: आता
1: थे।
0: था। तो हमें ये पता चलता था कि वहाँ क्या बनता है और उनकी उसी जो मिठाई है उसका स्वाद वहाँ का कैसा है। अगर हमें ऐसा लगता था कि नहीं, ये हमारे स्वाद से ज़्यादा अच्छा है, तो हम कोशिश करते थे कि
1: वैसा
0: वैसा
1: बनाया,
0: बनाया जाए।
1: यानी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान पहले हुआ
0: बिल्कुल
1: करता था।
0: होता था। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि घर में इस तरह की रेसिपी बनाना
1: बहुत
0: चाहिए हमें।
1: जरूर।
0: चलिए, बसंती पुलाव किस तरह से बनाया जाए, हमारे श्रोता ने ये बात लिख करके भेजी है। तो बसंती पुलाव एक पीले सुनहरे रंग का सुगंधित मीठा सा चावल का व्यंजन है। बसंती नाम इसके सुंदर पीले रंग से जुड़ा है। इसे विशेष अवसरों, पूजा और पारिवारिक समारोहों में बनाया जाता है। मुख्य विशेषताएं उन्होंने लिखी कि आमतौर पर सुगंधित चावल का इस्तेमाल किया जाता है। घी, हल्दी या केसर से इसका आकर्षक रंग और खुशबू आती है। इसमें किशमिश और काजू जैसे मेवे डाले जा सकते हैं। इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता आदि मसाले इसकी सुगंध बढ़ाते हैं। और बंगाली भोजन में इसे अक्सर आलू की या दम या अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है। और बसंती पुलाव की खासियत यह है कि इसमें मीठे और मसालेदार स्वाद का एक सुंदर संतुलन मिलता है। ये बात इन्होंने लिख करके भेजी है। और अगर इसकी रेसिपी भी हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है तो वो भी हमें बताना चाहिए।
1: कि कितना उसमें, यानी 2 कटोरी चावल है तो उसमें कितना तेल लेना है, फिर कौन से खड़े मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, कि पानी कितना डालना है, इस तरह से भी अगर लिख के भेजे ना तो अन्य श्रोता जो घर में सुन रहे हैं उन्हें भी और भी सहूलियत होगी बनाने में।
0: बिल्कुल। और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे इन व्यंजनों की इन्होंने बात की कि इसमें गरम मसाले भी मिलाए जाते हैं और मीठा भी स्वाद आता है, तो जो गरम मसाले एक संतुलित मात्रा में मिलाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़े हितकर होते हैं। तो पहले के ज़माने के जो भी मीठे व्यंजन, चाहे कोई भी और व्यंजन हो, तो उनमें स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा
1: बहुत
0: खजाना
1: ध्यान
0: छिपा
1: रखा
0: हुआ
1: जाए।
0: था। तो ये इसलिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में बनाएंगे तो हम इन बातों का भी ख्याल रखेंगे
1: और है ना,
0: जो
1: घर
0: हमारे
1: में मंजू जी जो बनाए जाते हैं ना मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं, कि जैसे सर्दियों में गोंद के लड्डू सबके घर में बनते ही बनते थे उस जमाने में, फिर अभी बारिश का मौसम आएगा तो अभी मकई आ रही तो मकई के व्यंजन बनते ही थे, क्योंकि हम साल भर उस वक्त सब चीजें नहीं मिलती थी।
0: बिल्कुल। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलो, गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं।

0: चंचल।
1: सुना ली, इस गाने में जो एक शब्द है ना, धीरे से तेरा ये मुस्काना, बड़ा प्यारा लगता है। घर में भी जब कोई अच्छी सी कोई मिठाई मम्मी दादी नानी के हाथ से बनती है और वो हमें पसंद हो, तो धीरे से एक मुस्कुराहट हमारे भी चेहरे पर आती है ना।
2: और वो खुशबू है ना,
1: हाँ?
2: वो खुशबू से ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, खाने के पहले, चखने के पहले ही उस खुशबू से जो घर में इतनी खूबसूरत महक आ जाती है ना, कि हमें ऐसा लगता अरे वाह, आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा हमें।
1: बिल्कुल।
2: और एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि हम जो संदेश है वो हम गुड़ का हमारी सहेली बनाती है।
1: अच्छा,
2: तो आजकल जो हेल्दी ऑप्शन लोग चुन रहे हैं कि शक्कर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और कहते हैं कि रसोई घर तो एक प्रयोगशाला होती है, जितने प्रयोग करेंगे उतनी नई नई बातें हमें पता चलेगी। चलिए, अब एक बात हमें ये पता चल गई कि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, तो अब हमें सखियों सखाओं से आज्ञा लेनी होगी। तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
2: और सोनाली पाठक का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर संजय भदादा से, जो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, यानी ऐसे विशेषज्ञ जो हार्मोन्स, ग्रंथियों और एंडोक्राइन सिस्टम के विशेषज्ञ होते हैं। तो चलिए करते हैं बातें डॉक्टर संजय भदादा से। इनसे बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने ही की है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय भदादा, जो चंडीगढ़ के पीजीआई में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं और इस दिशा में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च का काम भी किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद बुलाने के लिए विविध भारती से।
0: जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जिसका नाम लेना ही बड़ा मुश्किल है, इसका काम क्या है?
1: सो अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँगा तो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट या एंडोक्राइन जो ब्रांच है, हार्मोन से डील करती है।
0: जी।
1: और हार्मोन्स एक तरह से एक पदार्थ है जो आपके शरीर में है, जो बहुत सारी ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती है, और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही सीरियस होता है। चाहे वो कम हो जाए तो भी उसका असर बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी उसका असर काफ़ी गंभीर होता है। तो एक तरह से एक बैलेंस होना चाहिए हार्मोन के लेवल में। अगर हार्मोन्स के लेवल का बैलेंस ख़राब हो गया तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होंगे, और ये बहुत सारे हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर, और नए नए और निकलते जा रहे हैं जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, साइंस प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे।
0: महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर ज़्यादा देखी जाती है।
1: बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूँगा तो 70% महिलाएँ और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। तो जो हमारे वार्ड में एडमिशन्स होते हैं उसमें भी फीमेल पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल पेशेंट्स के।
0: जी डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने से पहले जब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था तो आपने कुछ दिलचस्प बिंदु उठाए थे अपने अनुभव के, और उसमें हार्मोन्स के जरिए हड्डियों पर होने वाले असर की आपने बातें की, तो हम सब इसे सुनकर चौंक गए। तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना इस कार्यक्रम में वो बातें आप बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हार्मोन्स आपकी हड्डियों पर सीधे असर करते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मज़ा आएगा।
0: जी,
1: क्योंकि ये जो एरिया आपने चूज़ किया या अपन ने जो चूज़ किया कि कैसे बोन्स हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, तो इसके बारे में जो जानकारी, तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे और हमारे विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे महिलाओं में महीना बंद हो जाता है जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं या महावारी का बंद होना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल एकदम कम आने लग जाता है, और उसकी वजह से जो कॉमन सिम्टम्स तो महिलाओं में होता ही है कि जैसे चेहरे पे पसीना आना है, घबराहट होना है, मन उदास होना है, ये सारे सिम्टम्स उस टाइम पे होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट बोन्स पे भी बहुत होता है। तो अगर वो हार्मोन का जो एक

0: लेवल चल रहा, अचानक हार्मोन्स लेवल गिर जाता तो उससे बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है, और उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ऑलमोस्ट 30 to 40%, 50% महिलाओं को होता है, और वो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि उस टाइम में उसको इंटरवीन करके उनकी बोन हेल्थ को अपन अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं।
1: क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के मरीज पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ क्या है और चीजें दूसरी दिशा में चली जाएं?
0: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और उसका एक रीज़न है कि आम पब्लिक को एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और ज़्यादा पता है तो उनको यही जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब है कि वो डायबिटीज़ को देखता है, थायराइड डिसऑर्डर्स को देखता है, या मोटापे को देखता है। तो ये एक तीन डिसऑर्डर्स के लिए उनको पता है कि ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बोन्स की देख रेख करते हैं, उसमें जैसे एक हार्मोन का नाम होता है पैरा थायराइड हार्मोन, एक होता है विटामिन डी, एक होता है और भी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो तो मैं यहाँ पे बताने का फ़ायदा नहीं, पर ये दो इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं, और इन दोनों इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में जो इनका कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो, उसके अंडरस्टैंडिंग जो पढ़ाई जाती है, समझी जाती है, वो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट वालों के थ्रू होती है। तो अगर इससे कोई बीमारी होती है तो अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्ट करेंगे तो वो बीमारी जल्दी से पता चल सकती है और जल्दी से उसका इलाज हो सकता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। पर आम पब्लिक को ये पता है कि ये हड्डी का बीमारी, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको हड्डी का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप एक बार ज़रूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सुना है या देखा है हमने कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 4 साल के, या जन्म के तुरंत बाद उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इस तरह के फ्रैक्चर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हॉर्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो उसका अगर टाइम पे पता चले तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ऐसे ही एक दूसरा डिसऑर्डर्स होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से, जब हार्मोन ज़्यादा बन जाता है तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज़्यादा बनता है, आपको रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, आपको बार बार पथरी बनती है, और आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पथरी का ऑपरेशन करके निकलवाते हैं, पर आप उसकी जड़ में नहीं पहुंच रहे, और उसकी जड़ में नहीं पहुंचने की वजह से कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उसका सही इलाज नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉब्लम चलता ही रहता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से किडनी ख़राब हो जाती है, आपको किडनी डिजीज होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको, जैसे मैंने एक और चीज़ बता दी एक तरह से, कि आपको बार बार पथरी बन रही तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये
1: यहां
0: दूसरा
1: मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि हड्डियों की समस्याएं हैं, तो अब अमूमन क्या होता है कि हड्डियों के डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, तो कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये पथरी की समस्या है तो मुझे किडनी स्टोन के डॉक्टर के पास नहीं जानी है, ये हड्डियों की समस्या है तो मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, ये डिसाइड कैसे होगा?
0: तो मैं सबसे पहले आपको बोलता हूँ, अपन एक ही क्वेश्चन में तीन चार आंसर पूछे हैं तो वन बाय वन लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में।
1: जी,
0: तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी फ्रैक्चर जो कि ट्रॉमा की वजह से हुआ है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जैसे और किसी वजह से चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बेस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो
1: जो
0: उसके
1: टूट फूट हुई है।
0: टूट फूट हुई उसके लिए जाना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट का नाम ही हड्डी जोड़ तोड़ विभाग है ना,
1: अच्छा
0: तो उनके पास जाना है। लेकिन सपोज आप बाथरूम में स्लिप कर गए,
1: जी
0: फ्रैक्चर हो गया, या हल्का धक्का लग गया, फ्रैक्चर हो गया, दो सीढ़ी स्किप हो गए, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, या अपने आप फ्रैक्चर हो गया, इन सब के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो अगर फ्रैक्चर एक्सटेंसिव ट्रॉमा की वजह से हुआ तो आपको जाना है ऑर्थोपेडिक्स के पास, पर जो माइनर ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, अपने आप हो रहा है, फैमिली में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसके लिए आपको जाना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास।
1: बिल्कुल साफ कर दिया आपने
0: बिल्कुल।
1: इस मामले को।
0: अब उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपने पूछा पथरी के बारे में,
1: जी
0: तो पथरी क्या होता है कि आमतौर पे पथरी 2-4% लोगों को पानी कम पीने की वजह से बन जाती है, पर अगर पथरी बार बार बन रही है, अगर जिंदगी में किसी को पथरी एक बार बन गई ठीक है वो बन सकती है, लेकिन आपको बार बार पथरी बन रही, बार बार दर्द हो रहा है, इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, या आपके यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको ऑपरेशन करके पथरी निकाल रहे हैं, 3 साल बाद फिर पथरी बन गया, इस तरह का तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसका इलाज लेना हो सकता है, लेकिन उसको क्यों बन रहा है उसका कारण जानने के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
1: जी

0: मेनोपॉज की बात चल रही थी और आपने कहा कि कुछ खास लक्षण होते हैं जिनसे हर महिला को उस समय गुजरना पड़ता है। अचानक वजन बढ़ जाना, वाटर रिटेंशन, है ना, ये तमाम चीजें हैं। तो क्या ऐसे समय में ये दौर अपने आप निकल जाता है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेनी जरूरी होती है?
1: इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि बहुत बार जो ये सिम्टम्स होते हैं सभी महिलाओं को एक जैसे नहीं होते हैं।
0: जी
1: कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनका मेनोपॉज हुआ और निकल गया, तो उनको लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बट उनके लिए करना है कि अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर अमूमन ये होता है कि हमारे घर परिवार में माताएं बहनें अपने आप को इग्नोर करती है अपनी हेल्थ को, और घर के सब लोगों के हेल्थ का ध्यान रखती कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पोते ने दूध पिया कि नहीं पिया, लेकिन वो अपने दूध पीने का ध्यान नहीं रखती है, अपना दही खाने का ध्यान नहीं रखती है, अपनी एक्सरसाइज नहीं करती। वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बिना किसी सिम्टम के लिए निकल जाए तो कुछ नहीं करना, अपना एक्सरसाइज चालू रखो, अपना कैल्शियम विटामिन डी का डाइट अच्छा रहो और वज़न नहीं बढ़ने दो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग होता है, अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होता है
0: जी
1: और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो इस तरह के लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसे हम हमारे मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब बात चलती तो किसी महिलाओं की हिस्ट्री लेनी होती है, तो मैं उनको पहला एक सवाल पूछता हूँ कि उनको उनके महीने के बारे में आप ज़रूर पूछें कि माहवारी कैसी चल रही है। माहवारी ठीक चल रही है तो उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है। इसलिए हम बोलते हैं कि वुमेन्स के अंदर माहवारी रेगुलर होना एक बैरोमीटर ऑफ हेल्थ है। अगर आपकी माहवारी ठीक चल रही है तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और हमने ऐसा देखा भी हमारे घर परिवार में, बचपन में मम्मी कहती थी कि अरे महीना एक महीना भी चूक गया तो आगे लग गया, तो घर वालों को टेंशन रहता है ये क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी, वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिस्ट्री से बहुत सारी डिजीज आपको पता चल सकती है। अगर किसी का महीना गड़बड़ हो रहा है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर से बहुत कॉमन होता है,
0: तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: जाना चाहिए, बताना चाहिए ये। और बहुत सारी चीज़ें शक्ल देख के डायग्नोज कर सकते हैं हम।
0: तो इस बारे में बात करेंगे कि शक्ल देख के आप कैसे डायग्नोज
1: बिल्कुल
0: करते हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप कहीं नहीं जाइएगा।
1: बिल्कुल
0: पहले डॉक्टर साहब से एक गाने की फरमाइश करते हैं, उसके बाद शक्ल देख के कैसे आप मरीज पहचानते हैं ये बात होगी।
1: हाँ, तो हम इसमें माताओं बहनों की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा फेमस गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी एक बहना है,
0: क्या
1: तो
0: बात
1: उसके
0: है,
1: बारे
0: हरे
1: में बात
0: रामा
1: करें।
0: हरे कृष्णा
1: हरे
0: फिल्म का
1: रामा,
0: ये गीत आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन की तर्ज। सुनते
1: बिल्कुल
0: हैं ये गाना।

0: कहना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहन को समर्पित गाना, और आप इस गाने से पहले कह रहे थे कि आप चेहरा देखकर मर्ज भांप लेते हैं, ये तो बड़ी चमत्कारी बात है।
2: और बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं जब उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट था तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सूरवीर सिंह।
1: जी,
2: तो उनके बारे में ये फेमस था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर, कि जब मरीज उनके कमरे में घुसता तभी बीमारी बता देते हैं।
1: अरे गजब।
2: तो अब वो
1: ऑब्जर्वेशन
2: ऑब्जर्वेशन उस टाइम हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये कैसे बता देते बीमारी। लेकिन जब मैं एंडोक्रेनोलॉजी के अंदर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हमारी है जो हम बता सकते हैं कि ये मरीज़ अंदर घुस रहा है, इसको ये बीमारी होने की संभावना है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम 100% बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 80% 90% बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होने की ज़्यादा संभावना है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
1: जी,
2: जैसे अभी आपने एक दो बीमारियाँ होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस का एग्जाम्पल देता हूँ, बोन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन जिसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रॉमा की, और वो ऐसे झुक के चलने लग जाए, आगे झुक करके चलने लग जाए,
1: जी,
2: तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्पाइन का हाइट कम हो गया।
1: अच्छा,
2: उसका स्पाइन का हाइट कम होने की वजह से वो आगे झुक गया, तो ये बीमारी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। और आपने बहुत बार देखा होगा अपने आस पड़ोस में महिलाएं बहुत झुक जाती है। हम जनरली ये समझते हैं तो उम्र के हिसाब से हो गया, एक कोई बीमारी नहीं है, बट वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो गया। अगर उनका टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए तो वो ऐसे नहीं झुकेंगे।
1: जी, कई बुजुर्गों को दिखाई है उनकी कमर दोहरी हो जाती है,
2: बिल्कुल,
1: और ये पुराने जमाने में
2: ज्यादा होता था,
1: देखा जाता था।
2: और दूसरा बीमारी होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल।
1: जी,
2: तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता तो शरीर भारी हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गोल हो जाता है, और कहीं भी छोट हल्का चोट लगे तो निशान बनने लग जाते हैं, नील पड़ जाती है। ये सारी बीमारियां आप बहुत बार शक्ल देख के बता सकते हैं इस पर्सन को ये बीमारी है।
1: कॉर्टिसोल तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है ना?
2: ये बिल्कुल, कॉर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है कि
1: जी,
2: अगर
1: जी।
2: आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो ये बढ़ जाएगा।
1: हाँ, तो वो कम हो तब हैप्पी है आदमी।
2: हाँ, वो उसका ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए।
1: जी,
2: जैसे कि मैं स्कूल लाइन को शायद मैं बार बार जब भी अपना डिस्कशनों को बोलूंगा कि हमारे सारे हार्मोन के लेवल ऑप्टिमम होने चाहिए, अगर आप बढ़ गया तो भी खतरनाक है। कोर्टिसोल कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा।
1: ओके,
2: हाँ, तो इसलिए हर चीज बैलेंस में चलती है, इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन।
1: क्या बात,
2: सब चीज वैसे रहना चाहिए,
1: अनुशासित
2: अनुशासित। जैसे डायबिटीज भी एक ऐसा बीमारी जिसमें अनुशासन रहना चाहिए।
1: हाँ,
2: अगर आप अपना खाना ठीक से नहीं करेंगे, आप अपना एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, दवाई ठीक से नहीं लेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये तीन चीज़ों को प्रॉपर करेंगे तो आप जितना जी सकते हैं उतना जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और चेहरा देख के कौन कौन सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं?
2: और चेहरा देखने से जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, जिन हार्मोन्स को मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स बोलते हैं।
1: जी,
2: तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के अंदर फेशियल हेयर नहीं होंगे।
1: जी,
2: पर अगर महिलाओं में फेशियल हेयर आना शुरू हो गए तो इसका मतलब उनको ये पर्टिकुलर जो मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है। तो वो मेल हार्मोन्स लेवल बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। वो कितना सीवियरिटी है, जैसे बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ये हार्मोन ज़्यादा बना रहा है।
1: ओके,
2: तो वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कोई पुरुष है उसके चेहरे पे बाल नहीं है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर मेल हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे हैं। तो वो हम बीमारी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी। फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो बंदा
1: सवा छः फुट की
2: सवा छः नहीं 7 फीट का हो सकता है और चेहरा बड़ा हो जाएगा।

0: बड़े हो जाएंगे। जैसे
1: अच्छा
0: आपने WWF में कुछ लोगों को देखा होगा, मैं नाम नहीं
1: जी
0: लेना चाहता हूँ, बट वो जैसे बहुत बड़े हो
1: हाँ
0: जाते हैं, हेल्थ लंबा चौड़ा, तो वो उनको बेसिकली एक तरह से वो ग्रोथ हार्मोन का एक बीमारी वो ज़्यादा है, उसकी वजह से वो ज़्यादा बढ़ गए।
1: क्या बात। मध्य प्रदेश में एक पुलिस के व्यक्ति हुआ करते थे जो
0: हाँ,
1: एशिया के सबसे
0: वो
1: लंबे।
0: पंजाब में भी कुछ है, वो
1: जी
0: भी है। और दूसरा उसका उल्टा है, अगर आप वो हार्मोन नहीं बना आपको तो आपका हाइट कम रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ हार्मोन ऑप्टिमम इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ए नॉर्मल। अगर कम है ग्रोथ हार्मोन तो आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर ज़्यादा हो गया तो आपका बहुत लंबाई बढ़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं। तो ये हर हार्मोन जैसे ज़्यादा है तो अलग प्रॉब्लम करता है, कम है तो अलग प्रॉब्लम करता है, और नॉर्मल है तो ठीक रहता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें इसलिए देख के पहचान सकते हैं कि इसको क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की।
1: बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है। और यहाँ एक चीज़ जो हड्डियों से जुड़ी बातें हो रही हैं, हड्डियों और हार्मोन्स के रिलेशन की बातें, तो कुछ केसेस जो आपने देखे हैं जिनके जरिए हमारे सुनने वालों को मदद मिलेगी कि ये क्या सिम्टम्स थे और इनका क्या उपाय हुआ।
0: तो ऐसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और
1: जी
0: उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी अपनी पढ़ाई करी। तो जब मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे गया तो मेरे टीचर थे डॉक्टर DC शर्मा साहब, तो उन्होंने कोई पेशेंट उनके पास गया तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो संजय तुम अगर ठीक समझते हो तो इसको वहाँ भेज देता हूँ। वो वहाँ पे आ गए पेशेंट। जब उन पेशेंट का हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो पता कि मैं पूरे सब जगह में गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे सब जगह, पर कोई बीमारी का ठीक से पता नहीं चला। तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो जब आया था स्ट्रेचर पे आया था, हमने उसको एडमिट करा और उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम 1-1.5 महीने में उसका बीमारी का हम पता लगाए कि ये बीमारी है, और दुनिया में उस बीमारी केवल उस टाइम में 25 केसेस थे केवल पूरी दुनिया के अंदर,
1: इतनी दुर्लभ।
0: इतनी दुर्लभ। अब दुर्लभ बीमारी है तो उसका बारे में ज़्यादा पता नहीं है, दुर्लभ बीमारी उसका इलाज भी नहीं है, तो अब
1: जी
0: इलाज कैसे किया जाए।
1: जी
0: तो हमने उसको स्टडी करके एक प्लान किया कि भाई ये दवाई कोशिश करना चाहिए, और भगवान की दया से गॉड्स ग्रेस वो बीमारी के अंदर वो दवाई लग गई और चल गई, और वो पेशेंट हमारे पास से लेट के आया था और चल के गया। फिर उसका छोटा भाई भी आया, उसको भी यही बीमारी थी, वो भी ऐसे ही चल के गया। और उसके जब हिस्ट्री पूछा तो उसकी मदर और उसकी मामी मामा जी उनको भी ये बीमारी थी। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ जेनेटिक हो सकता है या एक एनवायरनमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पेशेंट को हमने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक होके गए।
1: महिलाओं में इस तरह के कुछ केसेस जिनका जिक्र आप करना चाहें।
0: महिलाओं में इस तरह की बीमारियों में अगेन मैं अगर बोन्स की बात करूँगा तो क्या होता है कि मीनोपोज के टाइम पे बोन्स खराब होना शुरू होता है,
1: जी
0: और अगर उनको पहले से कोई बीमारी अंडरलाइंग चल रही बोन की तो वो एकदम एग्जजर्बेट हो जाती है।
1: ओ
0: जैसे आपको ऑलरेडी मीनोपोज में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन चला गया, और आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है, जैसे हमारे एक पेशेंट थी सीलिएक डिजीज जिसको हम बोलते हैं वीट एलर्जी, मे बी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है जहाँ पे वीट मेन डाइट है, साउथ इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा। तो उसमें उस लेडी को क्या हुआ कि 45 साल की उम्र में जब महीना बंद होना शुरू हुआ तो उसको अचानक बोन्स वीक होना शुरू हो गई, और बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो बेड पे आ गई और उसकी मालिश करने से उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ का।
1: ये
0: मालिश
1: मालिश
0: करने
1: करना
0: से,
1: कितना गलत हो गया।
0: हाँ मतलब मालिश करने से ही फ्रैक्चर हो गया, मतलब हल्का ही किया होगा ये तो पता नहीं, बट उससे फ्रैक्चर हो गया। तो उसका बोन्स इतना वीक हो गया, और
1: ओहो
0: जब उसको हम भर्ती करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पता चला कि उसको वीट एलर्जी है, और वीट एलर्जी पहले भी होगी लेकिन जब महीना बंद होना तब वीट एलर्जी और महीना बंद होना दोनों साथ जुड़ गए, तो 1 और 1 2 की जगह 1 और 1 11 हो गया, और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर एडमिट करा और उसका इन्वेस्टिगेट किया, उसका कुछ नहीं किया हमने, उसका केवल वीट बंद कर दिया,
1: जी
0: और वो 3 महीने बाद में हमारे पास चलती हुई आई। तो पहले हम उसका वजन कम हो रहा उसके लिए इलाज कर रहे हैं, उसके मोटापे का इलाज करना पड़
1: तो
0: रहा
1: ऐसे दिलचस्प मामले भी आते हैं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मोन्स का असर
0: है।
1: हड्डियों पर भी पड़ता है, जो आज के इस कार्यक्रम का फोकस है।
0: बिल्कुल,
1: और डॉक्टर साहब, अब एक गाने पर फोकस किया जाए, आपकी पसंद का अगला गाना बताइएगा।
0: तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था,
1: क्या बात है, ये गाना सुनते हैं, चांद सी महबूबा हो।
0: तुम
1: आनंद
0: बिल्कुल
1: बख्शी साहब के ये बोल हैं, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं हार्मोन्स और हड्डियों के कनेक्शन की, और आपने बताया कि किस तरह से बीमारी कुछ और है और उसको समझा कुछ और जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये आम आदमी के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर्स के लिए?
1: या एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं पर कुछ हद तक, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती हैं जिसके बारे में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है
0: जी
1: या उसका प्रॉपर रेफरल समझ में नहीं आता है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है, अगर बीमारी पता नहीं तो कैसे रेफ़र करें, किसको रेफ़र करें। तो ऐसा डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आम आदमी में तो होता ही है पर डॉक्टर्स में भी हो सकता है। और दूसरा, बोन्स की प्रॉब्लम का एक दूसरा दिक्कत उसमें है कि एक कहावत आपने सुना होगा, राजस्थानी में बोलता हूँ मैं, बहुत मामे के भांजे भूखे रह जाते हैं, समझ गए।
0: जी
1: मतलब उसमें ऐसा होता है कि भाई वो भांजा उस मामा जी के यहाँ खाना खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, और अल्टीमेटली भूखा रह जाता है कोई। तो उसी तरह से हड्डी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं इसको। अब
0: जी
1: जैसे आपने बताया मीनोपॉज का जिक्र कर रहे, तो अभी ऑब्वियसली मीनोपॉज पे महिला गायनी वाले के पास जाएंगी।
0: जी
1: फ्रैक्चर की बात करें तो पर्सन ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास चला जाएगा, और हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आ जाए, या कभी कभी वो रूमेटोलॉजी की बीमारी से कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ में दर्द हो रहा है,
0: संधिवात
1: शायद
0: जैसी कुछ
1: संधि है।
0: चीज है।
1: तो उस तरह से बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद तो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तो वो फिर चक्कर लगाता रहता है। तो
0: जी
1: उसमें वो अगर सही डॉक्टर के पास पहली बार ही पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहुंचा, घूमते घूमते लास्ट में उस डॉक्टर के पास आया जिसका ये बीमारी है, तो उसमें उसको काफ़ी टाइम लग जाता है और बीमारी काफ़ी बढ़ भी जाती है, तो उसको फिर नियंत्रण करने के लिए भी थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता है।
0: एक सही मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे को लगता है आपका ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हॉर्मोन्स एंड डायबिटीज़, इससे हमारे श्रोताओं को काफ़ी समझ में आएगा और वो सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हड्डियों की बातें तो हमने की, अब दो चीज़ों की बातें मुझे लगता है कि करना चाहिए। एक तो डायबिटीज़ की बात और दूसरी थायराइड की बात।
1: बिल्कुल,
0: ये बताइए कि किन हार्मोन्स से ये तब्दीली आती है और किसी को थायराइड उभर के आता है, दोनों तरह के थायराइड, और इसको पहचाना कैसे जाए अर्ली स्टेज पर?
1: थायराइड हार्मोन का भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम रहना चाहिए।
0: जी
1: अगर कम हो गया लेवल तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म,
0: जी
1: और अगर लेवल ज़्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म।
0: दो तरह के हो
1: दो
0: गई
1: तरह
0: है।
1: के हो गए। अब इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म काफ़ी कॉमन होता है, ज़्यादा कॉमन होता है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया महिलाओं में काफ़ी कॉमन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पहले आज के कुछ सालों पहले ज़्यादा उसके बारे में ध्यान नहीं होता था। और उसकी वजह से क्या होता था कि माँ को तो प्रॉब्लम है पर बच्चे को भी प्रॉब्लम होता, होने वाले बच्चे को। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का टेस्टिंग और उसका इलाज बहुत ही ज़रूरी होता
0: ये
1: है,
0: बहुत याद रखने वाली बात
1: बहुत
0: है
1: ही
0: सभी
1: ज़रूरी होता
0: श्रोताओं
1: है।
0: के लिए।
1: बिल्कुल। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है, उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, कि जैसे थकान हो रहा है, सुस्ती हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन इसमें बात ये कि अगर वो सिम्टम लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, कि आपको कब्ज रह रहा है अभी 3 महीने 6 महीने से चलता जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बीमारी हो सकती है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी हो सकती है।
0: जी जी
1: जैसे कि आपका चेहरे का एक

0: भगवान ने बहुत ही फीचर्स हमारे शार्प बनाए। अगर इन पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन किसी की शक्ल एक दूसरे से बहुत कम मिलती है, तो ये जो कंप्यूटर भगवान ने जो बनाया, चेहरे का कंप्यूटर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दूसरी शक्ल नहीं मिलती है।
1: जी
0: लेकिन जब थायराइड डिसऑर्डर्स होता है, अगर वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, मतलब बहुत ही हाइपोथायरायडिज्म एक्सटेंसिव ग्रेड में पहुंच जाए, तो उसमें एक शक्ल एक धुंधली हो जाती है। जैसे आपने फोटो कोई खींचा है, फोटो हिल गया है, तो जो
1: जी
0: धुंधला हो जाता है, तो वो एक चेहरे की जो शार्पनेस है वो चली जाती है
1: नूर चला जाता है।
0: या नूर चला जाता है, तो वो एक हाइपोथायरायडिज्म में होता है। तो हाइपोथायरायडिज्म में सिम्टम्स कॉमन होते हैं, लेकिन अगर लंबे हो तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है।
1: महिलाओं
0: फिर
1: में भी इस समस्या को
0: महिलाओं
1: लेकर,
0: में दूसरी समस्या, उनका अगर महीने में कुछ गड़बड़ हो रही है,
1: जी
0: तो ये थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकती है। तो इसलिए उसको ज़रूर से टेस्ट करना चाहिए, अगर गड़बड़ है तो, और इलाज होने से बिल्कुल ठीक हो जाता है।
1: क्या थायराइड की दवा जीवन भर खानी पड़ती है?
0: बहुत ही कॉमन सवाल है, सब लोग पूछते हैं। मैं ये बोलूँगा कि यस, 99.9% हाइपोथायरायडिज्म है, तो 99.9% लोगों को, हमने एक ओपीडी में एक सील बनवा के रखी है
1: जी
0: कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप,
1: अच्छा, वो सील ही बना
0: सील लगा दी। क्योंकि अब मरीज
1: लिए
0: को कभी कभी बताना भूल जाते, तो सील लगा दी कि भैया उस पर रेड कलर में उनको पढ़ने को मिल जाता है कि इसमें लिखा हुआ
1: जी
0: लाइफ लॉन्ग फॉलोअप, मतलब बराबर लेना है।
1: बहुत ध्यान
0: कुछ
1: रखना है।
0: हाँ, कुछ एक पेशेंट्स को रिवर्स हो जाता है, बट जनरली नहीं होता है,
1: ये
0: क्यों,
1: कौन सा वाला है? हाइपो,
0: हाइपोथायरायडिज्म बात
1: जी
0: करें।
1: जी जी
0: अब दूसरा इसका कारण क्या होता है, भगवान ने जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाई, उसकी कैपेसिटी बहुत बनाई है।
1: जी
0: जब तक उस ग्लैंड का 90% हिस्सा खराब नहीं होता है, काम करना बंद नहीं करता, तब तक वो बीमारी नहीं होती है।
1: ओके
0: तो अगर आपका जब बीमारी हो रहा था, इसका मतलब 90% पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर ग्लैंड की सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो केवल 10% बची है। अब वो 10% में कितना रिवाइव हो सकता है कुछ भी करने से, उसका कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो
1: जी
0: इसीलिए 90% डैमेज होने में टाइम भी लगता है, और अगर एक बार 90% डैमेज हो गया, आपको सिम्टम्स आ गए, तो फिर आपको ट्रीटमेंट लगभग लाइफ लॉन्ग ही लेना
1: और
0: पड़ेगा।
1: इस 90% डैमेज होने के सिम्टम्स नहीं होते?
0: वो धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ
1: जी
0: होना शुरू हो जाते हैं, बट पूरा 100% नहीं होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, आजकल जो एक इम्पोर्टेंस बढ़ गया रेगुलर चेकअप का, ईयरली
1: जी
0: ईयरली चेकअप में आपको उस बीमारी का पता चल जाता है कि आपका ये बीमारी एबनॉर्मल आना शुरू हो गया। और एबनॉर्मल आना शुरू होने के बाद में आप उसके पीछे लग करके इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो पता चल जाएगा ये, तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका दवाई का मात्रा भी उतना नहीं लेना पड़ेगा।
1: जी
0: नहीं तो जब 90% डैमेज हो गया, तो दवाई का मात्रा भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये हाइपोथायरायडिज्म के बारे में। अब रहा हाइपरथायरायडिज्म, जब ग्लैंड ज़्यादा है, तो इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें पसीना कम आता है, उसमें पसीना ज़्यादा आता है, उसमें वज़न थोड़ा बढ़ सकता है, उसमें काफ़ी कम हो जाता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें डायरिया होता है,
1: जी
0: इसमें कलर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है हाइपोथायरायडिज्म में, उसमें कलर गहरा हो जाता है, डार्कनिंग हो जाती है। और इसके अलावा हाइपरथायरायडिज्म में आंखें बाहर आना शुरू हो जाता है, मोटी हो जाती है, उसमें आंखों पे काफ़ी असर होता है, तो वो भी एक उसका सिम्टम है। तो बहुत सारे लोगों का आंखें प्रोमिनेंट होता है, तो ये हाइपरथायरायडिज्म की वजह से हो सकता है, थायरॉयड हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो सकता है।
1: तो ये सब जो सिम्टम्स हैं उन पर एक तो नजर रखनी चाहिए, और दूसरा आपने
0: बिल्कुल
1: जोर दिया कि सालाना चेकअप करा लेना सबसे
0: हाँ,
1: अच्छा उपाय
0: मतलब
1: है।
0: जैसे 35 साल की उम्र के बाद में अभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आपको कुछ कुछ टेस्ट कराने चाहिए, तो
1: जी
0: ऐसे ही खास तौर से उनकी पारिवारिक हिस्ट्री है थायराइड की बीमारी की, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान है, या कुछ जो सिम्टम्स हमने आपको बताए वो लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, तो उन लोगों को अपने थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड की बात हमने की, डायबिटीज की बात अब कीजिए।
0: बिल्कुल, उसके बिना तो ये टॉक पूरा नहीं होना चाहिए।
1: तो बताइए कि ये जो मामला है।
0: डायबिटीज़ एक तरह से, कभी किसी ज़माने में इसको राज रोग बोलते थे। क्या
1: जी,
0: बोलते थे, राज रोग, मतलब ये
1: मतलब
0: राजा
1: बहुत
0: महाराजाओं
1: शाही
0: में
1: लोगों
0: होता है,
1: को होता
0: शाही लोग। अभी ये
1: था।
0: क्या हो गया, आम रोग,
1: जी
0: अब हर
1: हाँ,
0: किसी को डायबिटीज़ हो रहा है।
1: इंडिया एक तरह से डायबिटीज कैपिटल
0: आप
1: बनता
0: ये
1: जा
0: कह
1: रहा है।
0: सकते हैं कैपिटल बनता जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे श्रोताओं के इसके कारण सबको पता है, बट
1: जी
0: मैं जस्ट इसको कोरम को कंप्लीट करने के लिए बोल देता हूँ कि किस वजह से डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है।
1: जी
0: तो एक कंसेप्ट होता है कि कुछ बीमारियां होती है जेनेटिक्स की वजह से होती है, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से होती है, ये
1: बिल्कुल,
0: नेचर एंड नर्चर।
1: नर्चर।
0: तो आपके एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो तो आपके एक्सपोजर से हो रही है, लेकिन आपको जीन्स की वजह से जो प्रॉब्लम, वो तो पिताजी माताजी से आपको जो मिले उसकी वजह से होगा। तो इन जनरल हिंदुस्तान में ये जेनेटिकली वी आर डायबिटीज़ के लिए प्रीडिस्पोज्ड।

0: जेनेटिकली, और उसका बेस्ट आइडिया, जैसे आप दुबला पतला पर्सन है, उसको भी थोड़ा सा तो पेट निकला होगा, वैसे दुबला पतला लेकिन पेट थोड़ा निकला होगा। तो जो पेट निकला हुआ होता है, ये एक तरह से आपका खराब हेल्थ का निशानी है। मे बी आज के 40 साल पहले लोग बोलते यार बहुत ही हेल्दी बंदा है, मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो, तो उसको हम हेल्दी बोलते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो गया वो हेल्दी नहीं, वो अनहेल्दी है।
1: जी
0: तो जब इस तरह का ये जो पेट आगे निकल गया, ये जो प्रॉब्लम है, ये एक तरह से प्रीडिस्पोज करता है डायबिटीज़ को। तो हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपका पेट नहीं निकलना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो वज़न बढ़ता है सबसे पहले यहीं बढ़ता है
1: जी जी
0: और सबसे बाद में यहाँ से जाता है। जो
1: जी
0: ट्रेन वाला सिस्टम है, जो ट्रेन लेट हो गई उसको लेट होती रहती है, तो ये भी इस तरह से है।
1: जी
0: तो वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। अब वज़न बढ़ना कॉमन हो गया आजकल, क्यों?
1: जी
0: कि हम खान पीने उधर, जैसे सिस्टर स्विगी और मदर जोमेटो 24 आवर्स खाना सप्लाई करता
1: अरे
0: है ना?
1: गजब जी,
0: तो रात को 11 बजे भी खाना खा रहे हैं, 12 बजे भी खाना खा रहे हैं हम लोग,
1: ऐप के
0: तो
1: जरिए खाना मंगा रहे
0: ऐप
1: हैं।
0: के जरिए खाना मंगा रहे। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो गया, वो खाने का टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से आपका वज़न बढ़ जाता है।
1: जी
0: इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो अपने माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि सूरज के टाइम पे खाना खाना चाहिए, जब सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना। जैसे खास तौर से जैन समाज वगैरह में ऐसा होता है कि वो लोग सूर्यास्त हो गया तो खाना नहीं खाते, और सुबह में टाइम पे। तो उसका मतलब ये होता है कि आप खाना खाने के बाद आपको घूमने फिरने का टाइम रहता है थोड़ा, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और आपने एक नया शब्द सुना होगा आज, इंटरमिटेंट फास्टिंग।
1: जी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत
0: वो
1: ज्यादा चल
0: इस
1: रहा
0: पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, हम लोगों ने अंग्रेजों से बहुत सीखते हैं, अपने आप से नहीं सीखते हैं,
1: है
0: ठीक है?
1: जी
0: अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हिंदुस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है।
1: जी
0: जैसे रमज़ान रखते तो हम लोग 12 घंटा खाना खाते, 12 घंटा भूखे रहते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है? अब कुछ नवरात्र व्रत रखते हैं तो उसके
1: जी
0: अंदर अब दिन में खाना नहीं खाते हैं, आप फलाहार लेते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: ठीक है? तो ये पहले से कंसेप्ट है। या हमारी दादी नानी जो व्रत उपवास रखती हैं, वो कॉमन है, उनको भी अमावस्या करेंगी, पूर्णिमा करेंगी, या और अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से होता है, मुझे वो दूसरों का उतना शायद पता नहीं। तो ऐसे फास्ट रखते थे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती थी। पर अब क्या, जब अंग्रेजों ने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो हमने उसको लपक लिया भी, अरे इंटरमिटेंट फास्टिंग होना चाहिए,
1: जी जी जी
0: जबकि हमारे कंसेप्ट में पहले से ही
1: ऑलरेडी
0: इंटरमिटेंट
1: है
0: फास्टिंग है। तो ये एक अच्छा चीज़ हो सकता है कि हम ये एक हैबिट डेवलप करें कि खाने का हम टाइम फिक्स करें कि हम 7 बजे बाद नहीं खाएंगे। जैसे कुछ कंट्री के अंदर डिनर टाइम होता है, अगर आप उसके बाद डिनर के लिए ऑर्डर करोगे तो डिनर नहीं मिलेगा आपको।
1: जी जी
0: तो उसका रीज़न ये है कि आपको अच्छा हेल्थ रखने के लिए खाना टाइम पे खाना चाहिए। तो ये एक चीज़ अच्छा आपके डे टू डे हैबिट में हम कर सकते हैं। और मैं अपने श्रोताओं को एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ कि वो अगर अपना खाना शाम का खाना 7 बजे के पहले खा सकें और सुबह का खाना 8 बजे खाएं ब्रेकफास्ट से, तो आपका पूरा लगभग 12 से 14 घंटे आप भूखे रह गए, तो आप हर रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो,
1: क्या बात
0: और उसका
1: है
0: बहुत अच्छा असर होने वाला आपके हेल्थ के ऊपर में। कोई अगर इस चीज़ को 15 दिन भी करके देखेगा तो उसका मुरीद हो जाएगा कि मुझे यही सिस्टम करना चाहिए।
1: आपने जो बताया उसमें लंच नहीं है ना, उसमें सुबह
0: उसमें
1: 8 बजे
0: लंच
1: एक
0: आप,
1: ब्रंच जैसा कुछ
0: हाँ
1: है
0: नहीं, उसमें आप लाइट लंच ले सकते हैं, कि जैसे
1: जी
0: आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में एक फ्रूट ले सकते हैं, एक सिंपल एक चपाती ले सकते हैं, या आधा एक सैंडविच ले सकते हैं, ऐसा लाइट रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर ऑफिस आवर्स में आप
1: कुछ ले लिया
0: कुछ
1: हल्का
0: लाइट ले
1: सा,
0: लिया, तो आपको 7 बजे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर आप खाना टाइम पे खा पाओगे।
1: यही हो गई इंटरमिटेंट
0: ये
1: फास्टिंग,
0: इंटरमिटेंट
1: बारह
0: फास्टिंग
1: बारह
0: होगी,
1: तेरह घंटे
0: बारह
1: की।
0: तेरह घंटे होगी, आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी।
1: बिल्कुल, तो अब यहां एक गाना सुनते हैं
0: हाँ,
1: और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
0: इसका गाना आप सुन, चांद सा रोशन चेहरा,
1: क्या बात है, कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना है,
0: बिल्कुल
1: ओपी नय्यर का संगीत,
0: या
1: सुनते हैं
0: ये चांद।

0: डॉक्टर साहब, आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैंने ठीक
1: बिल्कुल
0: बोला ना?
1: बिल्कुल ठीक
0: आप
1: बोला है।
0: मुझे ये बताइए कि आपकी जो शाखा है वो और क्या-क्या चीजें देखती है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है और मेरे को

0: डॉक्टर साहब, आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैंने ठीक
1: बिल्कुल
0: बोला ना?
1: बिल्कुल ठीक
0: आप
1: बोला है।
0: मुझे ये बताइए कि आपकी जो शाखा है वो और क्या क्या चीजें देखती है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है और मेरे को जवाब देने में बहुत मजा आएगा।
0: अच्छा,
1: एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है
0: जी
1: और ये ग्लैंड्स टॉप से लेके बॉटम तक आपकी बॉडी में रहती है।
0: हाँ, ये बात हमें नहीं पता
1: तो
0: थी।
1: सबसे पहले मैं बोलूंगा तो ब्रेन में दो ग्लैंड्स होती है, तीन ग्लैंड्स होती है।
0: अच्छा।
1: एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, और तीसरी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है
0: अच्छा,
1: कि आप कितने बजे उठ रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, कितने बजे सो रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, ये सब कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी होता है, ये दोनों
0: जी
1: पेयरिंग
0: चलेंगे।
1: में काम करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और ये करीब 6 हार्मोन सिक्रीट करती है ब्रेन से,
0: जी
1: और ये 6 हार्मोन्स बाकी की बॉडी की रिमेनिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड आता है, जिसमें आपका एड्रिनल ग्लैंड आता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, जिसमें आपका ओवरीज होती है जो महिलाओं के अंदर अंडा
0: प्रजनन
1: बनाती
0: का
1: है,
0: काम है।
1: या और मेल में टेस्टिस होती है जो कि जहाँ से स्पर्म बनते हैं। तो इन सबको ये इसके ऊपर के थ्रू कंट्रोल करती है। तो एक तरह से आपका एक सिस्टम हो गया, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी, और फिर उसके बाद में सारी ग्लैंड्स,
0: तो पूरा शरीर कवर हो गया।
1: पूरा शरीर करोगे। उसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट ग्लैंड जो रह गई है, एक है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो
0: जी
1: थायराइड के पास में होती है और उसका बोन पे बहुत इफेक्ट होता है,
0: जी
1: और एक पेनक्रियाज आपका जिससे डायबिटीज़ का रिलेशन है। इनका अभी ऊपर से कंट्रोल पता नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना कुछ कंट्रोल होगा, हम रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ रिलेशन होना चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि बाकी सब चीज़ें कंट्रोल हो रही तो ये कैसे कंट्रोल नहीं हो गया ऊपर से,
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: शायद होगा। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो सारी की सारी पूरी बॉडी में है। तो अब बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, जो MD स्टूडेंट्स, उनको एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर भेज देना, हो सकता है कि वो बीमारी वहाँ से पता चल जाए कि इनकी क्या बीमारी है।
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपने पैंक्रियास का जिक्र किया, इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैं आजकल यहां वहां काफी पढ़ रहा हूं, क्या ये बढ़ रहा है?
1: तो पेनक्रियाज का बीमारी सीधा सीधा डायबिटीज़ ही है एक तरह से, आप देखेंगे तो पेनक्रियाज से रिलेटेड डायबिटीज़ है। पेनक्रियाज का टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे कॉमन है, तो डायरेक्टली उसमें नहीं होता, पर उसमें एक तरह से वज़न बढ़ने से आपका जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से वो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इसी तरह का कि आपके पास ताला लगा हुआ है, चाबियां बहुत सारी है पर कोई चाबी उसमें फिट नहीं हो रही है,
0: जी,
1: तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो आपका इंसुलिन तो बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन वो आपकी सेल में नहीं जा पा रहा है। क्यों? कि वो सही सिग्नल नहीं दे रहा वहाँ पे। ठीक है, ऐसे कमरे में जाना, आपको ताला की चाबी खोल के जाना, लेकिन आपके पास सही चाबी नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। इसी
0: क्या
1: तरह
0: वजह
1: से
0: होती होगी इसकी?
1: इसकी वजह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह है कि वज़न ज़्यादा होना,
0: अच्छा,
1: डायरेक्ट रिलेशन है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का वज़न ज़्यादा होना से। और या फिर आप पेनक्रियाज को ख़राब कर लेते किसी कारण से, जो कि कॉमन है हमारी सोसाइटी में, अल्कोहल, उसकी वजह से आपका पेनक्रियाज ख़राब हो जाता है, तो उससे फिर वो आपका पेनक्रियाज का बीटा सेल्स डैमेज हो जाएगा, तो फिर इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा।
0: जी
1: टाइप 2 में इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हो रही है।
0: दोनों हो रही हैं, मतलब बैलेंस की जो आपने बात की थी
1: हाँ, फिर
0: वो
1: से एक
0: फिर से यहाँ
1: बैलेंस
0: आ
1: का
0: गया।
1: ज़रूरत है। बिल्कुल
0: डॉक्टर साहब, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है? एक अधेड़ उम्र में पहुंचने के बाद जिस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उससे महिलाएं कैसे निपटें, खासतौर पर
1: तो
0: ये
1: या
0: बातें बताइए।
1: अधेड़ उम्र में मैं ये बोलता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स जो रोल प्ले करता है वो मीनोपॉज में जो चेंजेज होते हैं वही महत्वपूर्ण है। और उसमें ऐसा देखा गया कि जैसे मन उदास रहना है, या काम में कंसंट्रेशन नहीं करना है, या आपको अचानक पसीना आना है, घबराहट होना है, धड़कन बढ़ जाना है, ये सारा कुछ होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन सब चीज़ों का एक तो जानना ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, चिंता करने का ज़रूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे, तो 50% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कि यार पहले वो सोचें कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है हमारे को, तो अगर उनको आप एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई आपका बीमारी नहीं है, ये आपका जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं मोस्ट लाइकली आपका महीना बंद होने की वजह से हो रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, तो काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है क्योंकि उनको थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होता है, तो सीवियरिटी

0: तो ऐसे लोगों को फिर आपको दवाई देना पड़ता है।
1: ये दवाएं हार्मोन्स की होती हैं।
0: हाँ, एक तरह से हॉर्मोन्स होते हैं, तो अगर बहुत पसीना आ रहा, घबराहट, उसके लिए हॉर्मोन्स दे सकते हैं, बट वो भी एक प्रॉपर तरीके से सुपरविज़न में होता है। तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी काफ़ी रोल रहता है और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का भी रोल रहता है। तो ये दोनों मिलकर के इस तरह की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लिखते हैं।
1: क्या बालों का झड़ना जो है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है?
0: या फिर मैं आपको बोलूँगा कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ हॉर्मोन्स बहुत ज़रूरी है बालों के हेल्थ के लिए, क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि जो बाहर की सुंदरता है। बॉडी को बाहर की सुंदरता से लेना देना नहीं है ज़्यादा। तो
1: जी
0: आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले हॉर्मोन्स या बॉडी अपने इंटरनल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करेगी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उसके बाद में बाहर की चीज़ों पे आएगी।
1: हाँ, तो एक पूरा बैलेंस होना और
0: बिल्कुल, अगर
1: प्रक्रियाएं
0: बैलेंस
1: सही
0: नहीं है तो
1: चलना
0: आप,
1: ज़्यादा ज़रूरी
0: जैसे
1: है।
0: थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है तो बाल गिर सकते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन एक्सिस में तो बाल गिर सकते हैं। तो ये इस तरह के अगर उनका हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप न केवल मरीजों को देखते हैं बल्कि आप एक प्रोफेसर भी हैं एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़े हॉस्पिटल में। तो ये दोनों चीज़ों का जो अनुभव है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इससे जुड़े कुछ दिलचस्प अनुभव हमारे साथ बांटिए।
0: या तो इसमें ऐसा है कि बड़े हॉस्पिटल में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं, जो आम डॉक्टर्स उतने पेशेंट नहीं देखते हैं।
1: अमूमन आप दिन भर में कितने पेशेंट्स देखते हैं?
0: अमूमन पीजीआई चंडीगढ़ का जो मेरा डिपार्टमेंट है, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, उसमें एक दिन के 1200 पेशेंट्स आते हैं लगभग,
1: अरे
0: ट्वेल्व
1: बाप रे,
0: हंड्रेड
1: 1200!
0: पेशेंट हाँ, तो ये 3 दिन हमारा ओपीडी होता है, उसमें लगभग 1200 पेशेंट आते हैं।
1: जी,
0: तो ऑब्वियसली आप जितने पेशेंट देखोगे उतना आप सीखोगे,
1: अनुभव बढ़ेगा।
0: उसका आपका एक्सपीरियंस उतना होगा। आप कॉमन डिजीज़ तो देखोगे देखोगे, बहुत रेयर से रेयर डिजीज़ भी देखोगे, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में अपने एक कोई पेशेंट देख लिया जिसका ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोज कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम में जैसे ही वो पेशेंट है आप पहचान जाओगे, अरे ये पेशेंट तो इस तरह का हमने देखा। तो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत कई गुना ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं जिनको उतना पेशेंट एक्सपोजर नहीं है।
1: जी,
0: तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रेयर डिजीज़ आप डायग्नोज करते हो, आप ट्रीट करते हो, कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि यार हमने ये काम अच्छा किया है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आपको इसके साथ साथ फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूट में रहने से, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च जुड़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो रिसर्च करते हैं, तो हम नया कोई दवाई उसका ट्रायल करते हैं, कोई नया दवाई बनाते हैं। या बहुत बार अभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमारी बहुत सारी इंडियन मेडिसिन्स हैं उनके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके हम बताते हैं कि ये दवाई काम करता है, इसको इस तरह से यूज़ करने से बेटर काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंगल है
1: जी
0: और मेरे को लगता है कि इस फील्ड में और ज़्यादा काम करने का ज़रूरत भी है, ताकि हम स्वदेशी चीज़ों का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दवाइयाँ आई कहाँ से, नेचर से आई है। कोई भी दवाई आई पहले तो नेचर से आई, फिर उसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि हर बीमारी का इलाज नेचर
1: संभव है
0: में कहीं
1: नेचर के जरिए।
0: कहीं कहीं है। तो हमें जो हमारे हिस्ट्री में, या जैसे हमारा यजुर्वेद है वो एक तरह से मेडिसिन का वेद है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए उसमें क्या चीज़ें हैं। तो हम उस तरह से कुछ कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी बताया, उसके लिए हमने हड्ड जोड़ करके एक प्लांट होता है, वो प्लांट का इफेक्ट हमने देखा है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस।
1: क्या बात है,
0: हाँ,
1: तो
0: तो
1: रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण चीज
0: हाँ,
1: है
0: उसमें
1: मेडिकल की
0: एक
1: दुनिया में।
0: एक्साइटिंग है, जैसे वो इस तरह से एक्साइटिंग है, जैसे आप सुबह सुबह उठ करके फटाफट ईमेल चेक करते हो, यार रात को क्या ईमेल आया देखते हैं क्या है ना,
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: लगता है ना कि आप उठ करके व्हाट्सअप देखते हैं, अरे कुछ मैसेज तो नहीं आया। तो इसी तरह से रिसर्च में आपको अगर इंक्विजिटिवनेस है, कुछ सीखना नया करना है, कोई बीमारी आपको पता है यार इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको बहुत उसमें यू एन्जॉय दैट। और पेशेंट एक्सपीरियंस तो हाई है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इस तरह के बड़े हॉस्पिटल जो इंडिया में तो रिनाउंड है, पर बाहर भी कभी जाते तो दे वे हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट वर्किंग इन सच इंस्टीट्यूशंस।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जोधा अकबर का एक फेमस गाना है, वो
1: जी
0: सूफी संगीत जो डांस कर रहे होते हैं उस तरह
1: हाँ
0: का,
1: हाँ
0: या दैट्स
1: हाँ
0: कहने
1: वो
0: का
1: ख्वाजा मेरे ख्वाजा,
0: ख्वाजा मेरे ख्वाजा। हाँ
1: क्या बात है, सुनते
0: या
1: राजस्थान कनेक्शन सामने आ रहा
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: राजस्थान
1: सुनते
0: मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि सब रहा है, तो

0: डॉक्टर साहब, बॉटम लाइन ये है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें नियमित रूप से कराने चाहिए, खासतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने का अगर अंदेशा हो तो महिलाओं को।
1: या तो मैं ये बोलता हूँ कि दो कॉमन बीमारी जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज और थायराइड।
0: जी
1: बाकी डिसऑर्डर्स है वो काफ़ी अनकॉमन है, मतलब उनको रूटीन टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, वो आपको अगर डॉक्टर कहे तो कराना, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो दो जो बीमारियां कॉमन है, डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इनके टेस्ट रेगुलर होते रहना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में ऐसा है कि 50% लोगों को डायबिटीज़ होती है पर उनको पता नहीं चलता है,
0: जी, तो इसलिए टेस्ट बहुत
1: तो
0: मायने
1: टेस्ट
0: रखता
1: से ही
0: है।
1: पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, जब डायबिटीज़ पता चलता था, बात है कि वो आँख का ऑपरेशन कराने के, तो आँख के डॉक्टर ने बोला अभी शुगर टेस्ट कराओ और शुगर आ गया, है ना। या कोई
0: जी
1: हर्निया का ऑपरेशन कराने गया और हर्निया के ऑपरेशन की चेकलिस्ट दी, भी ये टेस्ट कराओ, तो डायबिटीज़ का टेस्ट कराया तो आ गया। तो इसका मतलब है उनको डायबिटीज़ चल रहा था, उनको पता नहीं था। तो इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराएंगे तो बीमारी का टाइम पे पता चल जाएगा। तो
0: जी
1: डायबिटीज़ के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, उसमें एक तो शुगर टेस्ट होता है, और एक होता है कि आपका एवरेज शुगर होता है 3 महीने में एक बार, जो 3 महीने का

0: देता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C।
1: जी,
0: तो ये दो टेस्ट आप डायबिटीज़ के लिए कर सकते हैं।
1: और सबसे आखिर में ये बात बताइए कि हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इसका मैं जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि जब मैं MD मेडिसिन कर रहा था तो मेरा पोस्टिंग CCU में लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मरीज़ को बचाने की बहुत कोशिश करते पर हार्ट की वजह से हम फिर बचा नहीं पाते, तो रात भर जग रहे पर पेशेंट तो चला गया। तो एंडोक्राइन इसका उल्टा है, अगर आपने बीमारी सही पकड़ ली तो इलाज होगा, बिल्कुल परफेक्ट इलाज होगा और बराबर चलेगा। तो
1: जी,
0: ये मतलब कोई ब्रांच खराब और अच्छा नहीं होता है, सबका ज़रूरत है, सबका वैल्यू उतना ही है। पर मुझे ख़ास तौर से ये पसंद आता है कि इसमें ऑलमोस्ट हर बीमारी का हमारे पास इलाज है, और इसलिए हम बहुत बार मरीज को ये बोलते हैं कि तुम एक बार हमारे चक्कर में पड़ गए तो ज़िंदगी भर हमारे चक्कर में रहोगे, अब निकलोगे नहीं। तो उसका वही है कि जिसको एक बार एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो ऑलमोस्ट रहता ही है, तो रेगुलर दिखाना है और रेगुलर चेकअप कराना है। और थायराइड डिसऑर्डर्स को भी आपको रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, उसमें T3 T4 TSH एक टेस्ट होता है
1: जी,
0: थायराइड का, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अगर एक हर साल नहीं तो 2 साल में 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी इनिशियल सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने आज के इस कार्यक्रम में की हैं, और पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी और वो ज्यादा अवेयर हुए होंगे। तो
0: बिल्कुल
1: इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय बरादा, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और हमें इतना वक्त दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
0: धन्यवाद, और मैंने बहुत एंजॉय किया आपका डिस्कशन, एंड उम्मीद है हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा, और उनको कुछ को एटलीस्ट जो बोन रिलेटेड इश्यू है जो कि आपने क्वेश्चन की जरा हाईलाइट किए, उनको फायदा होगा उसे। धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया। ये थी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भरारा से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: जो पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
3: युववाणी कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने बैंक कार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली

0: की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंक कार बही से संबंधित साक्ष्यों के लिए एक कानून बनाने और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंक कार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे सुधारों के अंतर्गत लाया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि नागरिकों को तथ्यों को जानने का अधिकार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष से सदन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण ये अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

रोज़ की तरह आज भी आप सुनेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन 5:10 पर और 5:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी बुलेटिन समाचार। इसे हम रिले करेंगे। हमारी बहनें अपना प्रसारण सुनेंगी घर आंगन। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आप बारिश में भींगने की समस्या एवं स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान विषय पर चर्चा सुनेंगे।

श्रोताओं, हमारे केंद्र से भोजपुरी लोकगीत आप सुनते हैं 6:05 पर और रात्रि 9 बजे लोकधारा के अंतर्गत। 6:10 पर प्रसारित आज के गांव घर कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है डॉक्टर अमल सिंह की वार्ता, भारतीय संस्कृति दशा और दिशा। अलावा इसके चर्चा की जाएगी दलदल जमीन और खुदीराम बोस बलिदान दिवस की।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुनते हैं। सांझ गीत कार्यक्रम में 6:40 पर, अलावा इसके 7:50 पर सुनिएगा ई मन पसंद, और रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने का आनंद लीजिएगा। प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद आप सुनेंगे 7:00, 7:15 पर सुनिएगा संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आप 7:30 और 7:45 पर सुनते हैं। साथ ही रात्रि 8:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा, हम इसे रिले करते हैं। ₹8:45 पर दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या आप सुनेंगे, और 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम बंदगी। 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे, और 10:20 से रस रंग के अंतर्गत हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का लुत्फ उठाइएगा। 200 यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन।

भगवान राम, जानकी जी और लक्ष्मण। वनवास समाप्त करके वापस आए और भरत को वनवास कथा सुना रहे हैं कि देखो भरत, हमारे साथ क्या क्या हुआ। रावण वध भी हुआ और ये कौन कौन से लोग जिन्होंने हमारी सहायता करी, उसमें सबसे परिचय कराया। और जब प्रभु ने परिचय कराया हनुमान जी का, तो नेत्र भराए प्रभु के और बोले, भरत, ये जो कपि हैं, ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं, उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, उनसे कभी उऋण नहीं हो सकते। भरत भाई, कपि से उऋण हम नहीं।

0: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आपने ललित तिमुन साहब को सुना। कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं हंसराज रघुवंशी इस रचना से।

हंसराज रघुवंशी की गाई इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रणाम। ई आकाशवाणी पटना हा। अबरुआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय ले भोजपुरी में समाचार सुनी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकालल गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में निकालल गई यात्रा गांधी मैदान स्थित जेपी गोलम्बर से शुरू भइल आ कारगिल चौक के पास जाके खत्म भइल। 1.5 किलोमीटर लंबा यात्रा में राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कईगो सदस्य, विधायक आ प्रतिनिधि शामिल भेले। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में स्कूली लड़का आ आम लोगन भी हिस्सा लेले। तिरंगा यात्रा शुरू होखे से पहले आयोजित समारोह के संबोधित करत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले कि तिरंगा हमनी के स्वाभिमान के प्रतीक है आ एकर सम्मान कैल हर भारतीय के फर्ज बा। ओ लोगन से जिला, नगर निकाय आ पंचायत स्तर पर आयोजित होखे वाला तिरंगा यात्रा में शामिल होके के भी अपील कैले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभुकन के खाता में 1100 रुपया महीना पेंशन के राशि डेबिट के माध्यम से भेजले। एमे मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना आ बिहार निःशक्तता पेंशन योजना समेत 6 गो योजना के लाभुकन के बीच पैसा ट्रांसफर कल गई। कार्यक्रम के संबोधित कर मुख्यमंत्री कहले कि सरकार जरूरतमंद लोगन के सामाजिक सुरक्षा देवे खातिर प्रतिबद्ध बा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव आ समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद रहली। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कहले बाड़े कि पंचायत चुनाव के लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में परिसीमन के प्रक्रिया शुरू हो गई बा। आज कटिहार में पत्रकारन से बातचीत करत वो कहले कि परिसीमन पूरा भइला के बाद ही पंचायत चुनाव करावल जाए। श्री प्रकाश कहले कि फिलहाल पंचायत चुनाव के समय सीमा तय कैल संभव नहीं खे। प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में राज्य के सब सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय के 12,000 से ज्यादा शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी आज सामूहिक छुट्टी पर रहले। इस सब लोग विश्वविद्यालय मुख्यालयन पर अपन मांग के समर्थन में धरना देले। शिक्षक संगठन के आरोप बाकी प्रस्तावित कानून से विश्वविद्यालयन के स्वायत्तता प्रभावित हुई और सरकार से यह पर फिर से विचार करे के मांग कैले बड़े। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहले बाड़े कि सरकार लेकिन के विरोध प्रदर्शन आ एकरा से जुड़ल मुद्दन पर संसद में विस्तार से चर्चा करे खातिर तैयार बा। श्री रिजिजू कार्य मंत्रणा समिति के बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारन से बातचीत करत भरोसा दिलौले कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दा पर जवाब देवे खातिर तैयार बाड़े। वो विपक्ष से सदन में अनुशासन बनाए रखे और कार्यवाही में बाधा न पहुंचावे के अपील कैले। आज सावन की दूसरा सोमवारी है। ये मौका पर मंदिराना शिवालयन में बिहानियन से भगवान शिव के जलाभिषेक करे खातिर भक्तन के भीड़ लागल बा। पूरा माहौल ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चारण से गूंज रहल बा। हमार संवाददाता लोग बतौले बाड़े कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ताधाम, जहानाबाद के बानावर, पटना के वैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर स्थान समेत अलग अलग मंदिरों में बहुत संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के पूजन अर्चना करके जल चढ़ा रहल बाड़े। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहला बेर कांवरियन पर फूल के बरखा भइल। ओहने भागलपुर के सुल्तानगंज में भारी संख्या में कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा के जल उठाए खातिर पहुंच रहल बाड़े। ये कांवरिया 105 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ के जलाभिषेक करी हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश के सिलसिला जारी बा। मानसून विभाग के मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान राज्य के उत्तर हिस्सा में कई जगह हल्का से मध्यम बारिश भइल बा। पूर्णिया के श्रीनगर में सबसे ज्यादा 58.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज कर गई। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान में कहले बा कि आज राज्य के दक्षिण हिस्सा में कई एक जगहन पर तेज हवा के साथ बारिश होखे की संभावना बा। ये दौरान ठनका गिरने की चेतावनी भी जारी कैले बा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के अंक यही जा समाप्त भइल।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:35 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का प्रसारण घर आंगन,

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी प्यारी सखियों को विनीता सिंह का प्यार भरा नमस्कार। सभी सुनने वाली सखियों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सखियों, हम सब भारतीय 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाएंगे। 4 दिन बाद 15 अगस्त है, तो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हर वर्ष 15 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाते हैं। लेकिन सखियों, पता है ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए हमारे लाखों अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, भारत माँ के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। ऐसे अमर बलिदानियों को हम सब हमेशा याद करते हैं। इनके राष्ट्र प्रेम और सर्वोच्च बलिदान को हम सब भारतीय कैसे भूल सकते हैं। यही तो अवसर होता है हम सबको इन्हें याद करने का, नमन करने का। सखियों, देश की आज़ादी की लड़ाई में हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए भारत माता की आज़ादी के लिए। स्वतंत्रता संग्राम के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अगर हम जिक्र करें, उनके गौरव गाथा को अगर हम सुनाएं कहें, तो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर हम जिक्र करने लगें तो शायद हमारा आज का ये कार्यक्रम कम पड़ जाएगा। अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की बारे में बात करें, हमारे महान नायकों के साथ साथ अगर हम बात करें, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था। महिलाओं के बिना भारतीय स्वतंत्रता की कहानी, बातें, इतिहास अधूरा है। सखियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका देश की आज़ादी की लड़ाई को आकार देने में बहुत अहम थी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी भागीदारी न सिर्फ आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में निभाई, मदद की, बल्कि पक्के इरादे और हिम्मत के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। लोगों को इकट्ठा करने, जुलूस निकालने, विरोध प्रदर्शन करने और भूमिगत आंदोलनों का समर्थन करने तक अलग अलग भूमिकाएं निभाईं। पता है सखियों, गांधी जी के एक आह्वान पर महिलाएँ, गांधी जी ने नारा दिया विदेशी सामानों के बहिष्कार का, महिलाओं ने अपने हाथों की चूड़ियां तक उतार दी, अपनी सुहाग की निशानी। और उस समय हमारा देश परतंत्र था, यहाँ कुछ बनता नहीं था, एक सुई भी नहीं बनती थी, सब इंग्लैंड से आता था। तो महिलाओं ने कपड़े, विदेशी कपड़े जला दिए, उसके होली जला दिए और खुद चरखे पर साड़ियाँ बुन के पहनती थी। एक कपड़े में जीवन निकालती थी, लेकिन विदेशी सामानों का बहिष्कार करने लगी कि ताकि हमारा देश जल्दी से आज़ाद हो। लोगों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महिलाओं ने प्रेरित किया और देश के अलग अलग क्षेत्रों से हिस्सों की महिलाएं आज़ादी के लिए एक झंडे तले एकजुट हुईं। ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में न सिर्फ राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत किया, बल्कि सक्रिय भागीदारी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन को तेज किया। जैसे जैसे इतिहास को हम खंगालेंगे या उसकी परतों को हम खोलते हैं सखियां, भारत की इन असाधारण महिला स्वतंत्रता सेनानियों के जुनून, त्याग, शौर्य, बलिदान की गाथा हम सुनते जाते हैं, महसूस करते जाते हैं, जो खत्म नहीं होता है। देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाली इन वीरांगनाओं को हम कैसे भूल सकते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जब 1857 में पहली बार स्वतंत्रता के लिए पूरे देश के लोग एकजुट होकर के बिगुल फूके, तो 1857 से लेकर 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, महिला स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम सबको पता है

देश की आज़ादी की लड़ाई का बिगुल फूकने वाली, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो या रानी चेन्नम्मा या बेगम हजरत महल, इन सभी महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी, उनके दांत खट्टे कर दिए। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, बीकाजी कामा, मातंगिनी हजारा, रामा देवी चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आसिफ अली, बीना दास, प्रीति लता वादेदार, कल्पना दत्त, लक्ष्मी सहगल, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी, ज्योतिर्मयी गांगुली, राजकुमारी अमृत कौर, कनक लता बरुआ और ना जानी ऐसी गुमनाम।

पंडित कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आसिफ अली, बीना दास, प्रीति लता वादेदार, कल्पना दत्त, लक्ष्मी सहगल, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी, ज्योतिर्मयी गांगुली, राजकुमारी अमृत कौर, कनक लता बरुआ, और ना जानी ऐसी गुमनाम हमारी महिला स्वतंत्रता सेनानियां हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं, उन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया भारत की आज़ादी के लिए। ये सभी महिला स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें से हर एक की अपनी एक अलग अलग कहानी और योगदान है, मिलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में ये सभी महिलाएं समर्पण की मिसाल हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए ये सारी महिलाएं, चाहे असहयोग आंदोलन 1920 हो, या नमक सत्याग्रह 1930 हो, या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो, महिलाओं ने इन सभी स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, नेतृत्व किया, संगठन बनाए, रैलियां की, विरोध प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां दी, जेल गईं, जेल झेली, बहुत सारे ताड़ना प्रताड़ना को झेला, ब्रिटिश राज को ख़त्म करने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए, और जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ ये लड़ती रहीं और अपने प्राणों को आहूत कर दी। तो सखियों, इस तरह हमारी महिलाएं, हमारे देश की नारी शक्ति 1857 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, चाहे वो प्रथम लड़ाई हो या अंतिम लड़ाई हो, देश के लिए लड़ती रहीं, अपना सर्वोच्च बलिदान करती रहीं, और अंततः हमारा भारत आज़ाद हुआ। इन महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बिना हमारे भारत की आज़ादी की कहानी अधूरी है। ये हमारी गौरव हैं, हमारे लिए समर्पण की मिसाल हैं। चलिए, इन्हीं की याद में अब सुनते हैं, इनको, इनके शहीद को, इनके शहादत को याद करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: सखियों, अब हम एक ऐसी वीरांगना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी शहादत, जिनका बलिदान सुन के हम आत्मगौरव से भर जाते हैं। अभी हमने कार्यक्रम में बात किया था कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अधूरा है महिलाओं के बिना, क्योंकि लाखों महिलाओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए स्वतंत्रता आंदोलन, भारत को आज़ाद करने के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। हर महिलाओं का तो जिक्र आज के इस कार्यक्रम में हो नहीं पाएगा, लेकिन उनमें से एक ऐसी महिला शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो मात्र 17 वर्ष की उम्र में हाथों में तिरंगा थामे हुए चलती रही। उन्हें बार बार चेतावनी दी गई कि आप तिरंगा, क्योंकि उस समय देश परतंत्र था और हमारे देश के हर राष्ट्रीय संस्थानों पर ब्रिटिश राज का झंडा लगता था, झंडा फहराया जाता था अंग्रेज़ों का, और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के महान महापुरुषों ने ये सब अपना झंडा बना लिए थे तिरंगा, और ये तिरंगा हर जगह फहरा करके ये कहते थे कि हम अब पूर्ण आज़ादी लेंगे, हम पूर्ण स्वराज लेंगे, हम देश को आज़ाद कराएंगे। और उस समय की ब्रिटिश शासन जो थी वो मंजूर नहीं करती थी। तो हमारे जो आज़ादी के मतवाले थे उनमें जो महिला वीरांगना थी वो जो है अपने झंडे को फहराती थी, तो उन्हीं में से एक थी, एक ऐसी शहीद, एक

ऐसी महिला वीरांगना जिन्होंने हाथ में झंडा थामे रखा, बार बार चेतावनी के बाद भी झंडा नहीं छोड़ा, तिरंगा नहीं छोड़ा और शहीद हो गई गोली लगने पर भी। और जब उन्हें गोली लगी और वो जब शहीद हुई तो उनके हाथ में तिरंगा ऐसे ही यूं ही खड़ा था। वो गिर चुकी थी, उनके प्राण निकल चुके थे, लेकिन तिरंगा नहीं उन्होंने झुकने दिया। ऐसी ही वीर वीरांगना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो असम की थी, कनकलता बरुआ जी। कनकलता बरुआ असम की एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर थाने पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों की गोली से शहादत दी। उन्हें बीरबाला और पूर्वोत्तर भारत की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। कनकलता बरुआ जी का जन्म 22 दिसंबर 1922 को असम के बारंगबारी गोहपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णकांत बरुआ और माता का नाम करणेश्वरी बरुआ था। कम उम्र में ही माता पिता का साया उठने और भाई बहनों की जिम्मेदारी आने के कारण वे केवल तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाईं। वह महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर मृत्यु वाहिनी नामक युवा स्वयंसेवक दल में शामिल हो गई और विवाह के योग्य हो चुकी थीं। और उनके जो अभिभावक थे, माता पिता तो गुजर चुके थे, लेकिन और जो अभिभावक थे उनकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो देश के लिए लड़ने मरने को तैयार थीं और वो यही रास्ता चुनी। 20 दिसंबर 1942 को उनके नेतृत्व में एक जुलूस असम से गोहपुर थाने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निकला। ब्रिटिश पुलिस की सख्त चेतावनी के बावजूद, बार बार चेतावनी के बावजूद कि तुम पीछे हट जाओ, तिरंगा छोड़ दो, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा। तिरंगा हाथ में थामे सबसे आगे बढ़ रही थी कनकलता बरुआ जी। अंग्रेजी पुलिस, ब्रिटिश शासन की पुलिस ने उन पर गोली चलाई, जिससे कनकलता बरुआ जी मौके पर ही शहीद हो गईं। गिरते वक्त भी उन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। कनकलता बरुआ भारत की ऐसी शहीद पुत्री थीं, ऐसी वीर वीरांगना बेटी थीं जो भारतीय वीरांगनाओं की लंबी कतार में जा मिली। मात्र 17 वर्ष की उम्र में कनकलता बरुआ अन्य बलिदानी वीरांगनाओं से उम्र में भले ही छोटी रही हों, लेकिन त्याग बलिदान में उनका कद किसी से कम नहीं। और कनकलता बरुआ जी का आज़ादी की लड़ाई में अतुलनीय योगदान है। सखियों, ऐसी हमारी वीर वीरांगनाओं को हम कैसे भूल सकते हैं। और इस आज़ादी के मौके पर, इस अगस्त के महीने में जिसमें आने वाला 15 अगस्त है, हम सब जश्न आज़ादी मनाएंगे, तो हम ऐसे अपने महान महान विभूतियों को कैसे भूल सकते हैं। तो आइए उन्हीं की याद में सुनते हैं एक गाना और।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सखियों, सावन और मानसून की रिमझिम फुहारें भले ही मौसम को सुहाना बना देती हैं, लेकिन हवा में मौजूद अत्यधिक नमी उन और उमस हमारी त्वचा के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ा कर देती हैं। इस मौसम में चेहरे पर एक्स्ट्रा सीबम यानी तेल बनने लगता है, जिससे धूल मिट्टी और बैक्टीरिया पसीने के साथ मिलकर बंद रोम छिद्रों यानी हमारे जो पोर्स होते हैं उसमें जमा हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? मुहांसे, एक्ने, ब्लैक हेड्स और चिपचिपी बेजान त्वचा। ये समस्या लगभग सभी को होती है बरसात में। बरसात एक ऐसा मौसम है कि इस समस्या से हम सब जूझते हैं, और बरसात के मौसम में हवा में नमी बढ़ने से त्वचा की ग्रंथियां ज़्यादा तेल बनाने लगती हैं। सखियों, ये अतिरिक्त तेल, पसीना और गंदगी मिलकर त्वचा के रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया पनपते हैं और चेहरे या शरीर पर एक्ने की, मुहासे की समस्या तेज़ी से बढ़ जाती है। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये समस्याएँ हम सभी को होती हैं। तो अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें, तो इन ये समस्या अगर हमें हो भी जाएगी तो ठीक हो जाएगी, और अगर हम ज़्यादा सतर्क रहेंगे तो होगी भी नहीं। और ज़्यादा सतर्कता में क्या है? खुद का ध्यान रखना। और क्या होता है कि जब हम खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, लापरवाही बरतते हैं, हम अपनी जीवन शैली अच्छा नहीं रखते हैं, अपना डाइट अच्छा नहीं रखते हैं, तब ये समस्या और भी ज़्यादा हो जाती है। बारिश का मौसम तो एक कारण है ही, साथ में ये भी बहुत गहरा कारण है, बहुत नज़दीक का संबंध है हमारा जीवन शैली, खान पान और ये समस्याएँ। तो हम बचाव और देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं सखियों? तो बचाव और देखभाल के लिए हम ये कर सकते हैं कि चेहरे को जितना साफ़ हम रखेंगे, या कभी कभी होता है कि पीठ में भी बहुत सारे फुंसी हो जाते हैं और हम उसको खुजलाते हैं, कभी कभी हल्का खून भी निकल जाता है। तो इनसे सबसे बचने के लिए यही है कि हम जितना स्वच्छ रहेंगे, जितना हाइजीन मेंटेन रखेंगे, और चेहरे को कम से कम दो बार दिन में शुद्ध साफ़ पानी से

वॉश करें, और भारी और ऑयली क्रीम की जगह अगर वाटर बेस्ड क्रीम अगर हम लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है चेहरे को। जैसे कोई होता है सखियों की किसी किसी को कील मुहासे हो गए तो बार बार चेहरे को छूते रहते हैं, होता क्या है कि हमारी उंगलियां हमेशा साफ़ नहीं रहती हैं, तो उंगलियों में नाखूनों में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं गंदे, हाथ हमारे गंदे हैं अगर हम उनको छुए तो वो बैक्टीरिया उनमें चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है संक्रमण और बढ़ता है, वो मुहासे वगैरह और बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा सतर्कता ये है कि हम गंदे हाथों से या बार बार उनको छुए नहीं, उससे ज़्यादा संक्रमण का वो रहता है। और बारिश में अगर हम भीग जाते हैं तो तुरंत हम साफ़ पानी से नहा लें और साफ़ कपड़े पहन लें, गीले कपड़े पहनने से भी दाने मुहासे स्किन में तरह तरह के प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, हाइड्रेट रहना भी ज़रूरी है, यानी पानी की कमी ना हो। होता क्या है कि जब मौसम थोड़ा नम हो जाता है तो हमें प्यास कम लगती है तो हम पानी कम पीते हैं, लेकिन हमको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, शुद्ध और साफ़ पानी पीना है। और अपनी जीवन शैली अगर हम अच्छा रखेंगे तो उसका असर हमारे चेहरे पर, हमारी त्वचा पर पड़ता है। तो सखियों, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमारा चेहरा अच्छा रहेगा। अब हम और एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यायाम हमको अंदर से बाहर से दोनों तरह से फिट रखता है। अगर हम व्यायाम करते हैं तो चुस्त दुरुस्त रहेंगे और उसका असर हमारे चेहरे पर भी दिखता है। तो सिर्फ अच्छी अच्छी महंगी महंगी क्रीम लगाने से ही नहीं होता है, ज़रूरी होता है हम सबके लिए कि हमारा दिनचर्या अच्छा हो, हम संयमित जीवन जिए, हमारी जीवन शैली अच्छी हो, हम एक्सरसाइज करें, हमारा खान पान अच्छा हो, और सफाई हाइजीन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, चाहे वो घर की बात हो या शरीर की बात हो या हमारे त्वचा की बात हो। और हाँ, कभी कभी त्वचा में इन्फेक्शन बालों की वजह से भी होता है, तो अपने बालों को हमेशा साफ रखें। कई बार ऐसा होता है कि बालों में डैंड्रफ हो जाता है, रूसी हो जाती है, तो उनके झड़ने से भी हमारी त्वचा में कहीं कहीं संक्रमण होता है। तो अगर हम बालों को भी साफ़ रखें, यानी बाल साफ़ रखें, नाखून काट के हमेशा साफ़ रखें, नाखूनों से भी हम आँख छू लेते हैं या मुँह छू लेते हैं या जो हमारे एक्ने हैं कील मुहासे उन्हें छू लेते हैं तो वहाँ भी संक्रमण होता है। तो शुद्धता, सफाई, स्वच्छता, चाहे हमारा शरीर हो, बाल हो, नाक हो, कान हो, आँख हो, सबको, और साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनना ज़रूरी है। जब इतनी सारी छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देंगे तब जाके हम पूरी तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे। तो सखियों, ये हुई कि हम किस तरह से बारिश के मौसम में एक्ने से बच सकते हैं। इन सारी बातों का संबंध एक्ने के से है, स्किन से है, त्वचा से है, क्योंकि जब इतने सारे बातों पे हम ध्यान दे के खुद पे करेंगे ये उपाय तो हम हर तरह से स्वस्थ रहेंगे। और सखियों, हमारा और आपका साथ यहीं तक, तो अब अपनी सखी विनीता सिंह को दीजिए अनुमति। सखियों नमस्कार।

यह था बहनों का प्रसारण घर आंगन। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप लोक गीत सुन रहे थे। गायक कलाकार थी गीता बरियार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम के सभी श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम। देखिए किसान भाई, इस सावन के महीना चल रहल बा आ एकरा में झमाझम पानी बरसेला, जगह जगह झूला झूलेला लोग, कहीं पेड़ में, कहीं घर में, कहीं बच्चा लोग मतलब घर में भी खेलेलन, बड़ा बड़ा लोग पेड़ में बाहर लगा के खेलेलन। आ देखी चारों तरफ जैसे रोपनी होला ता कजरी गीत गवात रहेला, हरियाली देख के एकदम मन गदगद हो जाला। तो देखी एकरा खातिर हमनी के पर्यावरण के सुरक्षित रखे खातिर हमनी के कुछ करे के भी चाहिए। काहे कि देखी हमनी के पेड़ पौधा लगावल एकदम कम कर देले बानी जा, एकरा से हमनी के का होता कि पर्यावरण मतलब सुरक्षित नहीं खे, दूषित हो रहल बा। समय पर जब बारिश होखे के तब बारिश नहीं खे होते, मतलब मौसम उल्टा पुल्टा हो रहल बा। तो देखी हमनी के पर्यावरण खातिर हमनी के हर आदमी के मिल के संकल्प लेवे के चाहिए कि हमनी के देखी कम से कम हर साल एगो पेड़ लगाई जा। आ पेड़ लगावे के मतलब ये नहीं है कि पेड़ के एगो पौधा लगा देनी आ ओकरा के छोड़ देनी, ओकर पूरा तरह से जिम्मेवारी लेवे के बा कि एकरा के हमारा मतलब निकाई गुड़ाई पटवन खाद जौन भी ओकरा में करे के बा तहन हमरा कह के देखभाल करके आ हमरा के एकरा के तैयार करे के बाटे। तो देखी कम से कम ऐसे ना तो हमनी के बार बार आग्रह कर ले जाए किसान भाई बहन लोग से कि जैसे रौरा बच्चा के जन्मदिन बाटे या रौरा शादी के सालगिरह बाटे वही याद में रौरा एगो पेड़ लगाई। अच्छा ओकरा में लगाई तो रौरा मतलब ओकर यादगार रही, ओकरा खातिर मोह हो जाई तो वह मोह से रौरा ओकर मतलब जैसे कि जैसे बच्चा के अपना पालन पोषण करते हैं वैसे लागी कि वो पेड़ के भी बच्चा के याद में लगौले बनी तो पेड़ के भी हम मतलब पटवन करत रहें, निकाई गुड़ाई करत रहें। तो देखी हमनी के हर आदमी के मिल के संकल्प लेवे के चाहिए कि कम से कम साल में एगो पेड़ जरूर लगाई और ओकरा के सुरक्षित रखी। एकरा अलावे देखी ताल तलैया जौन भर के हमनी के खेत बना देनी जा, ओकरा से भी पर्यावरण दूषित हो रहल बा। पानी हमनी के रहे के चाहिए, पानी के ऐसे का होता कि पानी कहीं नहीं खे रह तो पानी के सतह जौन बा तो नीचे चल जाता। आ देखी जौन घर घर समरसेबल हो गई तमना के चलते भी पानी बहुत नीचे चल जाता पहले ही समय से। काहे कि आदमी का करत रहन कि जहाँ एक बाल्टी के काम बा तहाँ 50 बाल्टी मोटर चला के छोड़ देते रहन, ओकरा से का होता कि पानी बहुत बर्बाद होता। तो हमनी के देखी इस चीज़ पर ध्यान देवे के चाहिए। बहुत आदमी के देखी आदत होला कि अब कहीं रोड पर जा तनी जाम लागल बा तो गाड़ी के चालुए छोड़ दे तनी, ओकर आवाज़ भी जौन बाटे ध्वनि प्रदूषण भी बहुत हानिकारक होला। कुछ आदमी के देखी आदत होला कि जैसे घर में दिन भर पंखा चलता लाइट जलता बानी तब तो जलते बा, कहीं जाए लगनी तब वैसे ही खुला छोड़ के चल गई नहीं। ऐसे का होला कि आपन भी क्षति बा, मान ली कोनो तरह से ओकरा में कोनो तरह के समस्या आ गई तर और घर में जितना चला तो उतना सब सामान बर्बाद हो जाए, जैसे फ्रिज चालू बा, पंखा चालू बा, कूलर चालू बा, ये सब के ध्यान रखे के चाही आ बिजली के बचत भी करे के चाही। तो हमनी के पेड़ लगा के बिजली बचा के ये सब करके पानी बर्बाद न करके ताल तलैया जानवा ओकरा के सुरक्षित रह के हमनी के अपना पर्यावरण के सुरक्षित रख सकीला। आ देखी श्रोता भाई, आज हमनी के चर्चा बा कि भारतीय संस्कृति आ हम कर कहे के मतलब बा कि माने हमनी के संस्कृति जौन बा उ का ह। तो हमनी के जौन संस्कृति बा ओकरा से हमनी के संबंध यह बात पर निर्भर करेला कि हमनी के अपना खान पान सोच आ संस्कारण के कवना रूप में देखिला जा। ई कौनो समाज के जिए के ढंग ओकर मूल्य आपसी व्यवहार के मिला जुला रूप ह। ई केवल बाहरी दिखावा ना ह बल्कि हमनी के भीतर के इंसानियत आ भलाई के जमबाई भावना ह। आ देखी संस्कृति के वास्तविक अर्थ जौन बाटे मानव कल्याण खातिर जैसे कि आग चाहे सुई धागा के आविष्कार केवल एगो हुनर आ सभ्यता के तरक्की ना ह बल्कि जब वो खोज इंसान के भलाई खातिर उपयोगी होखेला तब का होला कि संस्कृति बन जाला। सोचे के ढंग जौन बाटे हमनी के दूसरा के साथ कैसन व्यवहार करत नहीं जा, हमनी के भाषा कला विचार का बा ये हमनी के संस्कृति तय करेला। नकारात्मक पक्ष बाटे जैसे कि अगर कोई आविष्कार चाहे योग्यता इंसानियत के विनाश के कारण बने तो वो जौन असंस्कृति या विकृति कहाला। देखी संस्कृति जौन होला कि संस्कृति बन जाला। सोचे के ढंग जौन बाटे हमनी के दूसरा के साथ कैसन व्यवहार करत नहीं जा, हमनी के भाषा कला विचार का बा ये हमनी के संस्कृति तय करेला।

पक्ष बाटे, जैसे कि अगर कोई आविष्कार चाहे योग्यता इंसानियत के विनाश के कारण बने तो वो जौन असंस्कृति या विकृति कहला। देखी संस्कृति जन

जौन बाटे ई व्यक्ति के पहचान अपनेपन के भावना जौन बाटे ई प्रदान करला, ई लोगन के जड़ से जोड़ेला, जौना के उनका के विरासत आ अपना मूल के समझे में मदद मिलेला। सांस्कृतिक जौन बाटे भाषा करे के शक्तिशाली साधन बन जाला। आ देखी लोगन के जौन बाटे संस्कृति रचनात्मक अभिव्यक्ति के बढ़ावा देवेला। ई कला संगीत साहित्य मानव रचनात्मक के सब रूपन खातिर प्रेरणा के स्रोत है। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति जनबा कहानी सुने, अनुभव साझा करे, दूसरा के साथ गहरा स्तर पर जुड़े के माध्यम है। संस्कृति मान्यता जौन बाटे ई हमनी के साहित्य मानव रचनात्मक के सब रूप के प्रेरणा के स्रोत है। आ देखी सांस्कृतिक मान्यता उ मूलभूत सिद्धांत है जौन कि कौनो संस्कृति के लोगन के दुनिया के समझे आ नैतिक निर्णय लेवे में मार्गदर्शन करेला। यह मान्यता में धार्मिक दार्शनिक आ नैतिक दृष्टिकोण शामिल हो सकेला। ये अक्सर विभिन्न रीति रिवाज और परंपरा के माध्यम से व्यक्त कल जाला। एक अनुष्ठान समारोह दैनिक प्रथा शामिल रहेला जौन कि भाषा के संस्कृति जौन बाटे उ भी एकरा में रहेला। आ देखी एकरा में सांस्कृतिक समाज जौन बाटे मानदंड के भी निर्धारित करेला, जौन समाज में स्वीकार्य व्यवहार के निर्धारित करेला। आ एकरा के मानदंड में शिष्टाचार, लिंग भूमिका आ पारस्परिक संबंध से संबंधित नियम शामिल हो सकेला। भोजन संस्कृति का भिन्न अंग है आ विभिन्न संस्कृतियन में पाक परंपरा व्यापक रूप से भिन्न होखेला। पारंपरिक व्यंजन और खाना पकावे के तरीके अक्सर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व रखेला। कौनो भी संस्कृति के पहनावा आ फैशन के चुनाव जनबा जलवायु, इतिहास आ सामाजिक मानदंड से प्रभावित होखेला। तो देखी ई रहल हमनी के मतलब भारतीय संस्कृति आ हमनी के पहचान। आ देखी श्रोता भाई, अब हमनी के तनी चलल जाई, मन मनसाइन कल जाई गीत गौने के दुनिया में। आज हमनी के सुने के केसरी नंदन भगत उनका साथी से कुछ लोकगीत है।

0: देखी श्रोता भाई, अभी हमने के कृषि गीत सुनत रही जा, केसरी नंदन भगत वहाँ के साथी लोग से बड़ा बढ़िया गीत सुनौनी, सुन के मन एकदम झूम गई। आ इतना बढ़िया गीत सुनैले खातिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आ देखी श्रोता भाई, हमने के आगे भी सुनल जाई, वार्ता सुनल जाई, बातचीत कल जाई, लेकिन एकरा पहले कुछ संदेश सुन लेवे के।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देही ओके बुलंदियन के पांख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
0: अब हमनी के संदेश के बाद अपना कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ। आ देखी, आज हमनी के एगो वार्ता के माध्यम से जानल जाई कि भारतीय संस्कृति दशम आ दिशा एकरा बारे में, यह विषय पर जानकारी देव डॉक्टर अमर सिंह। तो हमनी के सुने के यहाँ से।
3: वस्तुतः सम्यक कृति ही संस्कृति है, जिसका घनिष्ठ संबंध संस्कार या संस्करण से है। यहाँ तक कि संस्कार की प्रक्रिया ही संस्कृति है, अर्थात संस्कार से ही संस्कृति बनती है। संस्कार के जितने भी शाब्दिक अर्थ हैं वे संस्कृति में समाहित हैं। संस्कृति का मूल अर्थ साफ या परिष्कृत करना है। इतना ही नहीं, शुद्धि, सुधार, संशोधन, परिष्कार, परिमार्जन, सजावट और आचरणगत परंपरा भी है। किसी भी देश अथवा जाति की सभ्यता का पता वहाँ के लोगों के संस्कार या संस्कृति द्वारा ही लगता है। संस्कार केवल व्यक्ति का ही नहीं अपितु लोक और समाज का भी हुआ करता है। लोक और समाज की व्यापक अनुभूतियों के संस्कारों के अनुरूप ही किसी देश की सांस्कृतिक अवधारणा का स्वरूप निर्धारित होता है, जिसमें उस देश के समाज और जाति के चिंतन मनन, आचार विचार, रहन सहन, बोली भाषा, वेशभूषा, कला कौशल आदि का समावेश रहता है। इस तरह हर देश अपने आदर्शों और जीवन मूल्यों का निर्धारण करते हैं, जिससे उनके समस्त संस्कारों और संस्कृति का बोध होता है। संस्कृति सार्वभौमिक है। संसार को चलाने के लिए जितने भी आचरण के सांचे की निर्मिति हुई है, उन सांचों के अनुरूप जो कुछ राहें बनी हैं और उस पर चलने के लिए जो कुछ रहन सहन के ढंग हैं, ये सभी संस्कृति से भिन्न नहीं हैं। उसकी अर्थ चिंतना में कलात्मक सृजना की क्रियाएं भी शामिल हैं। संस्कृति को परिभाषित करने वाले कतिपय विचार इस प्रकार हैं। संस्कृति मानव के सर्वोच्च चिंतन मनन का मूर्त रूप है। यह मानव चित्त की खेती है। यह मन, आचार तथा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। यह जीवन के नाना विध

रूपों का समुदाय है। यह जिंदगी का एक तरीका है जिसकी रचना और विकास में सदियों के अनेक अनुभवों का हाथ है। संसार भर में जो बातें जानी या कही गई हैं, उनसे अपने आप को परिचित करना संस्कृति है। संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इस अर्थ में यह समझ बनती है कि संस्कृति बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है, फिर भी उसके कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं, क्योंकि हर राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ खास ढंग के मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। इस तरह हर देश की अपनी शाश्वत गतिशील संस्कृति होती है। यह संस्कृति कई संस्कारों का समुच्चय होती है जो सदियों तक किसी देश की सभ्यता और उसके तौर तरीकों में रचते बसते हैं। इसी तरह कई संस्कार भारतीय संस्कृति की अमानत रहे हैं। भारतीय संस्कृति ने गुण और कर्म के आधार पर वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है, जिसमें ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत सात्विकता आध्यात्मिकता, क्षत्रिय वर्ण में सात्विकता राजसिकता, वैश्य वर्ण में राजसिकता तामसिकता तथा शूद्र वर्ण में केवल तामसिकता की प्रबलता स्वीकारी गई है। उसकी मान्यता में सभी जन्म से शूद्र हैं, संस्कारित गुणवान होने पर ही वे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। इस तरह ये चारों वर्ण किसी भी मनुष्य के सुसंस्कृत व्यक्तित्व की क्रमशः अवस्थाएं हैं। इनका जाति से कोई संबंध नहीं है। ये चारों वर्ण भारतीय समाज में रहने वाले मनुष्यों के व्यक्तित्व का विभाग प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह भारतीय संस्कृति ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों की स्थापना की है। ब्रह्मचर्य तथा संन्यास आश्रम में सात्विकता आध्यात्मिकता की प्रबलता होने के कारण ये दोनों आश्रम भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक रूप के परिचायक थे। गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था मानव के भौतिक विकास के लिए की गई थी, अतः यह आश्रम भारतीय संस्कृति के भौतिक रूप का द्योतक था। हमारे आर्ष ऋषियों ने वर्णाश्रम धर्म का विधान कर मनुष्य को मनुर्भवः अर्थात मनुष्य हो, मनुष्य बनो का कठोर दंडात्मक निर्देश दिया है जो नैतिक है, और बताया है कि आचारो परमो धर्मः, आचारवान और चरित्रवान ही बिरजवान बलवान हुआ करते हैं। जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी होगा वही सशक्त, स्वस्थ, सुंदर और कल्याणकारी होगा। शायद इसीलिए चेताया गया कि इमी कुपंथ मतदेत खगेशा, रहा ही न तेज तन बुद्धि बललेसा, अर्थात कुमार्गामी भ्रष्ट चरित्र वाले का तन बल और बुद्धि बल सब कुछ नष्ट हो जाता है। भारत की संस्कृति त्याग, बलिदान, सत्य, अपरिग्रह और ज्ञान की संस्कृति रही है। इस दिशा में चलते रहो का निर्देश है। चरै वयति, इसका मूल स्वर है वीर भोग्या वसुंधरा। भारत के लोग प्रलय में पले हुए वीर पुरुष हैं, अमर्त्य वीर पुत्र हैं, जिनके चरित्र में पूत और भुजा में शक्ति है। यही कारण है कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भारतीय संस्कृति ने सदैव संघर्ष किया और अपनी अस्मिता को सदियों से सुरक्षित बचाए रखा। आज विदेशी लोग भोगवाद और उपभोक्तावाद की संस्कृति से उबकर भारतीय संस्कृति को अपनाने लगे हैं, किंतु 20वीं शताब्दी में आधुनिकता के नाम पर जो कुछ हमारे देश के सामने परोसा जा रहा है, उसकी आड़ में बिंदास कहकर जो कुछ किया जा रहा है, उससे किसी भी सुसंस्कृत सभ्य समाज का मन आहत हो सकता है। समाज में जो कुछ विकृति आ रही है, वह मनुष्य के असंस्कृत जीवन शैली और गलत जीवन दर्शन अपनाने के कारण आ रही है। भौतिकवादी दर्शनों, विचारधाराओं तथा उद्योग टेक्नोलॉजी के विकास ने दर्शन, अध्यात्म, चेतना तथा आस्था की जड़ों को हिलाते हुए भौतिकवाद के महत्व को रेखांकित किया है। हम अपने को अधिक आधुनिक बनाने, विदेशी संस्कृति अपनाने, उसके जीवन दर्शन और जीवन विधि को धड़ल्ले से ग्रहण करने में लगे हुए हैं। विदेशी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और दिखावे ने हमें और अधिक कुरूप बना दिया है। विदेशी प्रशिक्षित नागरिक यहाँ आकर भारतीय समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिकता के नाम पर डसना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रक्रिया में सेक्स, नग्नता, अश्लीलता, धन, सुंदरता आदि का लालच दिखलाकर देश की नई पीढ़ी में मीठा जहर धीरे धीरे घोलना शुरू कर दिया है। इस तरह भारतीय संस्कृति पर खुल्लम खुल्ला दिन की रोशनी में आक्रमण होने लगा है। यही नहीं, नवजागरण के नाम पर सामाजिक सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को बाजारू संस्कृति में बदलकर उसे खुद की परंपरागत जमीन से बेदखल किया जाने लगा है। हमारे फिल्मी अभिनेता, राजनेता, अभिनेत्री और खेल जगत की हस्तियां अकूत धन कमाकर देव संस्कृति के विलास भाव को व्यक्त करने लगे हैं। फिल्मों, खेल तथा शिक्षण संस्थानों में प्रतिष्ठित पदों पर बैठे शिखर पुरुष, महिला यह खुलेआम कहने लगे हैं कि यौन संबंध शादी से पहले जायज है। इसी खुलेपन ने दंडिया गरबा जैसे सांस्कृतिक पर्वों पर जुआ जुतियों को खुली छूट देकर भ्रूण हत्याओं का न खत्म होने वाला सिलसिला कायम किया है। आज जीवन को श्रृंखल बनाने की अपेक्षा

0: उत्तरदायी बनाने की जरूरत है। अब साहित्य और कला भी बाजारू संस्कृति में ढलकर पूर्णतः व्यावसायिक होने लगा है। कला के नाम पर नंगे बदन रहना, तंग कपड़े पहनना और देह संचालन द्वारा अभिव्यक्ति देना अश्लीलता का खुला प्रदर्शन है, जो मातृवत पर दारेशु की उक्ति को तार तार कर देता है। सेक्स अपराध, नशा और हिंसा के फिल्मों और भड़कीले विज्ञापनों ने हमारी पवित्र संस्कृति को खरीदना बेचना शुरू कर दिया है। स्त्री आज बाजार की वस्तु माल बन गई है। उसके श्रद्धा रूपेण शांत धीर उज्जवल चेतना में और सौंदर्य का वरदान नहीं मिलता। अब तो वह किराए की कूख देने लगी है। शादी से पहले ही स्वच्छंद भोग करना चाहती है। यहाँ देह भाषा, देह संवाद की यथार्थ अभिव्यक्ति के नाम पर चुंबन चांटे, आलिंगन अभिसार की वासनात्मक देह सौंदर्य की दुर्गंध मिलने लगी है। फिल्मों, दूरदर्शन के कार्यक्रमों में प्रायः अश्लील गीतों और कामुक दृश्यों की भरमार आने लगी है। खुलेपन के नाम पर जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वे भी सड़कों पर हो रहे छेड़छाड़, हत्या, अपराध और बलात्कार आदि की बढ़ती हुई घटनाओं से पीड़ित हैं, संवेदित हैं, क्षुब्ध हैं। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की रही है। तभी तो हम वसुधैव कुटुम्बकम के प्रस्तोता माने जाते हैं। इतनी उदात्त और गौरवमयी संस्कृति को एक साजिश के तहत विकृत और प्रदूषित किया जा रहा है। भावी पीढ़ी को इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चरित में पूत, भुजा में शक्ति का अभिमान और हर्ष केवल इसी देश को रहा है। मातृवत परदारेशु और परहित सरिस धर्म नहीं, भाई से अधिक उदात्त संस्कृति किस देश की हो सकती है। अनेकता में एकता, तमसो मा ज्योति गमय, आचारो परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, सत्य में उजयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् आदि भारतीय संस्कृति की प्राण है। मानव प्रेम, लोक जीवन की एकता, जीवन सौंदर्य का सही उपभोग तथा विश्व मानवता का निर्माण जिसके सूत्र हैं, जो भारतीय जीवन को सैकड़ों वर्ष तक जीने के सीख देते हैं। जीवेम सर्वदा सतम, चलेम सर्वदा सतम, पश्येम सर्वदा सतम, यह भारतीय संस्कृति की ऊर्जा है, जिन्हें जीवन में अपनाने की जरूरत है। पिछले कई दशकों से हमारे विविध गतिविधियों के स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिन्हें पर्व त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और जन्म मृत्यु विवाह जैसे संस्कारों सहित शिक्षा अर्जन के तौर तरीकों में देखा जा सकता है। बाहर से आने वाली कोई भी संस्कृति, वह चाहे कितनी भी बलशाली क्यों न रही हो, हमारी विराट सांस्कृतिक चेतना में गल पच गई है। हमें अपने संस्कृति की उदात्तता, विराटता को राष्ट्र के जीवन से जोड़कर राष्ट्रीय चेतना जगाना होगा। इसे बरकरार रखने के लिए आने वाली युवा पीढ़ी में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की स्थिरता के लिए नैतिक और चरित्र की पवित्रता का पाठ पढ़ाना होगा। इसके लिए ब्रह्मचर्य, नैतिकता और योग को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। साथ ही देश के हर मंच पर, हर नुक्कड़ चौराहों पर सांस्कृतिक समारोहों और सांस्कृतिक संचरणों के माध्यम से देश के गिरते मूल्यों, शील, नैतिक और चारित्रिक संकट को सुधार करने का ऐलान करना होगा। भारतीय संस्कृति की सही और स्वस्थ परंपरा, जो मानव जीवन को गति देते हैं, उन्हें अपनाने से देश की मर्यादा के साथ उसकी एकता और अखंडता की भी रक्षा होगी। इस दिशा में भारतीय संस्कृति मंत्रालय से भी हमें रचनात्मक पहल की अपेक्षा है।
1: देखें श्रोता भाई, कितना बढ़िया डॉक्टर रामल सिंह सुनैनी बतैनी हमनी के, कि माने हमनी के जौन भारतीय संस्कृति के 10 दिशा बा, एकरा के हमनी के माने कैसे रखे के चाही। आ नौजवान लोग के बतावत कि जे आज के युवा पीढ़ी बाटे, उ एकरा के बरकरार रखे, एकरा खातिर जागरूक करे के पड़ी। आ हमनी के मतलब दिशा जौन 10 बाटे, एकरा के सही सलामत रखे के पड़ी। हमनी के भारतीय संस्कृति जौन बाटे, हमनी के धरोहर बाटे। तो देखी इतना बढ़िया जानकारी देला खातिर डॉक्टर अमल सिंह के बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। श्रोता भाई, देखी 11 अगस्त के महान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस के बलिदान दिवस मनावल जाला। इ देश के बच्चा बच्चा तक जानेलन। अगर न जानत होखस तब माता पिता के कर्तव्य बाटे कि उ लोग के मतलब शहीद लोग के बारे में बतावल कि माने कैसे कैसे हमने के आज़ाद भइल बानी जा। खुदीराम बोस जौन बाड़न, भारत के आज़ादी के लड़ाई में अपन जीवन देश खातिर न्यौछावर कर देले रहन। उ बहुत कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए रहन। 1908 में मुजफ्फरपुर में अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड के निशाना बनावे के प्रयास के बाद खुदीराम बोस गिरफ्तार भइलन। मुकदमा चलल 11 अगस्त 1908 के, महज 18 के उम्र में उनका के फांसी दे दिहल गई। आ देखी खुदीराम बोस के साहस जौन बा, देशभक्ति या बलिदान आजो देश के नौजवान खातिर एगो प्रेरणा के स्रोत बाटे। देखी उनकर जीवन हमनी के ई संदेश देला कि कि देश के

आजादी या सम्मान खातिर समर्पण और हिम्मत जौन बाटे बहुत जरूरी बाटे। तो देखी हमनी के शहीद खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर हमनी के सभे उनकर श्रद्धा पूर्वक उनका के याद करी जा आ देश के प्रति अपन जिम्मेदारी निभावे के संकल्प लिही जा। तो देखी तो रहल अब हमनी के चलत चलत एक नज़र मौसम के पूर्वानुमान पर डाल लेवे के। तो देखी श्रोता भाई कल के अधिकतम तापमान जौन बाटे 34 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान जौन बाटे 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। आ कुछ बूंदाबांदी झमाझम कुछ हल्का फुल्का बारिश भी जगह जगह होखे के संभावना बा हमनी के रोहतास जिला में। आ देखी यही पर आधारित हमनी के कुछ किसान भाई लोग के सलाह मशविरा दही ला जा कृषि के पर आधारित। तो देखी किसान भाई लोग खातिर सलाह बा कि खड़ा फसलन में सिंचाई स्थगित करी आ खाद कीटनाशक के छिड़काव आसमान साफ रहला पर ही करी। आ देखी कम वर्षा के चलते धान के खेतन में खर पतवार के वृद्धि अधिक हो सकेला, किसान लोग के समय पर खर पतवार निकाले के सलाह दिहल जाता जौना से कि खेतन में उचित वायु संचार नमी आ पोषक तत्वन के बेहतर उपयोग हो सके। जौना खेत में धान के रोपाई के मतलब 10 दिन 8 दिन हो चुकल बा ओकरा में खर पतवार नियंत्रण खातिर प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में ब्यूटा क्लोर 3.0 लीटर चाहे प्रोटी लाक क्लोर 1.5 लीटर चाहे पेंडी मेथालीन 3.0 लीटर मिला के आ ओकरा के छिड़काव करी। आ देखी पशुअन में समय समय पर देखी खुरपाका मुँहपाका रोग लगता तो ओकरा खातिर समय समय पर एकरा के पशु चिकित्सक से संपर्क करके आ अगर रोग के लक्षण दिखाई देवे उनका के समय पर टीकाकरण कराई या स्वच्छ सूखा आ बीमार पशुअन के स्वस्थ पशुअन से अलग रखी। रोग के लक्षण दिखाई देला पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करी आ पशुअन के अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखी। तो देखी जे प्याज के खेती कैले बा खरीफ प्याज के रोपाई खातिर खेत के तैयारी आसमान साफ रहला पर ही करी। खेत के जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छा तरह से सड़ल गोबर के खाद के प्रयोग करी लेकिन मानसून के देखते हुए। तेज धूप से पौधा के सुरक्षा खातिर नर्सरी के 6-7 फीट ऊंचा शेड लगा दही। तो देखें ई रहल किसान भाई लोग के कृषि सलाह। अब समय हो गल किसान भाई बहन लोगन से विदा लेवे के। तो चले चले के बेरा में सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम। ए कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहूं संतोष कुमार।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता अपना प्रसारण सुन रहे थे गांव घर। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए सांझ गीत कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत।

0: सैया हमार, जी हाँ, अभी आपने इस फिल्म में साधना सरगम को सुना। शब्दकार थे विनय बिहारी, स्वरबद्ध किया था ताबुन सुजीत कुमार ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, महेंद्र कपूर के स्वर में कवि प्रदीप के लिखे गीत की तर्ज बनाई है सी अर्जुन ने। फिल्म है जय संतोषी माँ।
1: यहाँ वहाँ जहाँ

और अब आइए सुन लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीतकार हैं चित्रगुप्त, फिल्म है गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो।

कार्यक्रम का समापन उषा मंगेशकर की गायी लक्ष्मण शाहबादी के लिखे और चित्रगुप्त के संगीत से संवारे गीत से। फिल्म का नाम है गंगा किनारे मोरा गांव।

0: उषा मंगेशकर के गए इसी गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

बुनियाद बुनियाद कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से राजेश आप सबों के बीच में है रेडियो सेट के माध्यम से। सचमुच आपके बीच में आकर ऐसा लगता है कि हम अपने लोगों के बीच में आ गए, और जब जानकारियां देते हैं ना तो गजब की संतुष्टि मिलती है। लगता है ऐसा कि हम सही और सटीक बातें आप तक पहुंचा रहे हैं बेवाकी के साथ साथ। जब हम कहते हैं आपसे ना कि रोजगार, हाँ रोजगार के लिए आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई कर लो, रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको भी युवा साथियों पढ़ने के बाद आपको भी रोजगार चाहिए ना, निश्चित रूप से चाहिए। एंड ऑफ द डे आपके माता पिता भी यही सोचते होंगे।

0: कि बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, नौकरी लग जाए, अच्छा पैसा कमाने लगे, उनकी जिंदगी सेटल हो जाए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और बुनियाद कार्यक्रम में यही बातें हम आपसे कहते हैं कि विशेषज्ञता हासिल कर लीजिए, रोजगार मिल जाए आपको, वैसे यूनिवर्सिटी का चुनाव कीजिए जहां सब कुछ मिल रहा है और खास करके एक प्लेसमेंट सेल भी हो। ये कार्यक्रम आपको पता है हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। आपको हमने ढेरों बातें बताई हैं यहाँ के बारे में, पूरी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, टेक्निकल पढ़ाई के बारे में, जो पैसा नहीं है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, ढेर सारी बातें हमने आपको बताई हैं इस कार्यक्रम में। और हमें बहुत सुकून है कि इस कार्यक्रम को सुनकर बहुत सारे हमारे छोटे छोटे भाई बहनों ने टेक्निकल पढ़ाई चुनी और आज अपने करियर में आगे निकल गए। लेकिन दुख तब होता है जब बहुत सारे युवा साथी जो हैं घर पर बैठकर अभी भी विचार करते हैं, हाँ, कि हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। तो भैया, कहीं ना कहीं से सोचने की जरूरत तो है, लेकिन शुरुआत करने की जरूरत उससे कहीं ज्यादा है। शुरुआत कीजिए, आपको निश्चित रूप से एक लक्ष्य मिल जाएगा, एक आयाम निर्धारित हो जाएगा और सब कुछ अच्छा अच्छा आपके जीवन में हो जाएगा। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें, नंबर नोट करें, है 9431899002। इस कार्यक्रम में लगातार हम आप सबों को कोर्सेज के बारे में बताते हैं, ज्यादातर बुलाते हैं अपने विशेषज्ञों को, जानकारियां दिलवाते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में अवनीश रंजन थे जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के विषय में जानकारियां दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया दोनों में अंतर करके कि प्लेन बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या अंतर है, कहां कौन आगे और कहां कौन थोड़ा पीछे है। लेकिन पढ़ने के बाद रोजगार मिलना, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पढ़ने के बाद रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, यूनिवर्सिटी ने या जहां से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसने क्या व्यवस्था की है। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में भी इसकी क्या व्यवस्था है, हमने जांच पड़ताल की आपके लिए और हमने पाया कि बजाबता एक पूरा यूनिट है आपके प्लेसमेंट को लेकर जो आपको तैयारी करवाता है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जाए, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है उसको कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, कैसे जॉब असिस्टेंस दिया जाए, ये सारी चीजें। और उस विभाग को जो देखते हैं ना, जो इंचार्ज हैं, आज हमारे साथ हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय।
1: हम अरिंदम मुखर्जी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड, इंचार्ज फॉर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी।
0: अरिंदम जी बुनियाद कार्यक्रम में आ गए हैं और करोड़ों युवा साथियों और उनके माता पिता से जुड़ गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि क्या क्या कुछ होता है बुनियाद कार्यक्रम में, हम जानकारियां देते हैं। आप हमें ये बताइए कि प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी छात्र के लिए और प्लेसमेंट के लिए।
1: देखिए, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि स्टूडेंट लोग हायर एजुकेशन में आता है फॉर गेटिंग फॉर एक करियर बनाने के लिए। और ये करियर बनाने के लिए गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लोगों को डेवलप करने के लिए हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग का जो प्रोग्राम है ये इंडस्ट्री रेडी है और इंडस्ट्री रेलिवेंट है। और हम लोग स्पेशली स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है टू गेट अ जॉब। ये जो कंपनी यहाँ पे आता है, ये कंपनी जैसा डोमेन नॉलेज में स्टूडेंट लोग का इवेल्युएट करता है,

0: और ये देखता है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, वो सिचुएशन हैंडल कर पाता है या नहीं, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में स्टूडेंट को डालता है। ये स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग पहले साल से ही स्टूडेंट लोग को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब उसका प्लेसमेंट सीजन आएगा वो कंपनी में बैठ के सक्सेसफुल होके हाथ में जॉब लेके उसका कोर्स खत्म करेगा। और हम लोग दूसरा चीज जो है, हम लोग प्लेसमेंट स्टार्ट कर देता है 6 महीना और 8 महीना पहले, कोर्स का खत्म होने का 6 और 8 महीना का पहले।
1: इसके लिए आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या होता है, कौन लोग होते हैं, ये सारा कुछ बताइए जरा हमारे बिहार और झारखंड के सुनने वालों को।
0: हम लोग का यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेनर है जो जिसका रेगुलर बेसिस में क्लास मिलता है, वो क्लास में जाता है और स्टूडेंट लोगों को रेडी करता है प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए। दूसरा चीज जो है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हायर करता है आपका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पहले आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और रेगुलर बेसिस में और एवरी मंथ वो कैंपस में आता है और हर डिपार्टमेंट को लेके वो बैठता है ट्रेनिंग देने के लिए। उसमें उसका पर्सनल इंटरव्यू ट्रेनिंग होता है, ग्रुप डिस्कशन ट्रेनिंग होता है, एक्सटेम्पो ट्रेनिंग होता है, रिटन टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनिंग होता है, रीजनिंग का ट्रेनिंग होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज का ट्रेनिंग होता है। हाँ, ये सब ट्रेनिंग हम लोग पहले से स्टार्ट कर देता है और ये आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के साथ एडिशनल ट्रेनिंग हम लोग देता है कि जब स्टूडेंट लोग प्लेसमेंट सीजन आएगा, स्टूडेंट लोग रेडी रहेगा और ये आपका उसका हाथ में एक नौकरी लग जाएगा।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारे साथ हैं अरिंदम मुखर्जी जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग विभाग के हेड हैं। इन्हीं की देखरेख में बच्चों को ट्रेन किया जाता है जब कंपनीज आती है पढ़ाई के बाद, और जब नौकरी की बारी आती है तो एकदम पुख्ता ट्रेनिंग देके बच्चों को इंटरव्यू देने लायक बनाया जाता है, नौकरी पाने लायक बनाया जाता है। और नौकरी बहुत बड़ी बात है, पढ़ने के बाद तो नौकरी मिलनी ही चाहिए। बहरहाल ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से, जो कि सासाराम रोहतास जमुआर में है। और एक टोल फ्री नंबर हम बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए 1800 121 0051 1800 121 0051। और एक मोबाइल नंबर है जो सिर्फ आप युवाओं के लिए ही लिया गया है कि आप इस पर जानकारियां ले सकें, और वो नंबर है 9431899002 9431899002 ये नंबर है, इस पर आप अधिक से अधिक जानकारियां ले सकते हैं। और राजेश फिर कहता है आप लोगों से, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई कीजिए। और अब तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे की भी कोई समस्या नहीं रही। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उससे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और 13-14 ऑप्शन है टेक्निकल पढ़ाई का, यहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल मुखर्जी साहब एक बात बताइए, कहते हैं कि जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी, हाँ जो हिंदी में बोलता है, हिंदी में इंटरव्यू देना चाहता है, उसके लिए थोड़ा रिसोर्सेज कम है, क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन है अभी बताइए।
0: देखिए, हमारा का हिंदी है कि ये नेशनल लैंग्वेज है, हाँ आपका पूरा भारत में इसका एक्सेप्टेबिलिटी है और इसका भी बहुत सारा डिमांड है। आप कोई भी आपका जो डेवलप्ड सिटी है, टाउन में है, सब जगह में जहां जहां पे कंपनी का हेड ऑफिस है वर्क लोकेशन में, वहां पे हिंदी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज और एक्सेप्टेबल है। और क्या है कि आप हिंदी इंग्लिश मिलके भी आप कोई भी चीज एक्सप्रेस कर पाता है तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। और हिंदी जो भी है आपको अच्छा तरीके से एक्सप्रेस करने पड़ेगा, हिंदी में हो और अंग्रेजी में हो, वो आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करने पड़ेगा, वो चीज सही होने से आपको जॉब मिल जाएगा।
1: हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपने सचमुच बहुत अच्छी

0: जानकारी दी। एक बात बताइए क्या 100% जॉब प्लेसमेंट के लिए आप गारंटी देते हैं, असिस्टेंस देते हैं? क्योंकि चीजें साफ साफ होनी चाहिए, एकदम खुल के, कोई छिपा के, लाग लपेट के साथ नहीं। बताइए क्या है मुखर्जी जी आपके यहाँ GNSU में?
1: आपको देखिए, इंडिया में और कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 100% जॉब गारंटी नहीं देता है। ये आपका प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, हम लोग का काम है स्टूडेंट बनाना, स्टूडेंट को रेडी करना, उसको नॉलेज देना। लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ा चीज है, हम लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देता है, और हम लोग का बिलीफ है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, इससे भी बेटर परफॉर्मेंस होगा।
0: वाह, बहुत खूब, आपने जो बातें थी आपने सच सच बता दी कि 100% हम असिस्टेंस देते हैं, गारंटी की बात नहीं है। चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा, कोई सजेशन देना चाहिएगा स्टूडेंट्स को, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं?
1: हमारा तो एक ही सजेशन है, एडवाइस है, जो भी बोलिए, स्टूडेंट लोग को बोलिए कि आपका टेक्निकल ट्रेनिंग और नॉलेज और स्किल उसको एक्वायर करना बोलिए, नहीं तो उसको तुरंत जॉब नहीं मिलेगा। उसको स्किल नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उसका उसके लिए वो आपका क्या है कि ऑब्सोलेट हो जाएगा इंडस्ट्री में, और इसीलिए एक टेक्निकल नॉलेज का बहुत ही जरूरी है।
0: बहुत सही कहा अरिंदम मुखर्जी साहब आपने स्टूडेंट से, कि टेक्निकल होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और राजेश भी कहता है कि भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इसलिए टेक्निकल में आ जाइए और नौकरी मिल जाएगी, इसकी आप आशा कर सकते हैं अगर जो आपने अच्छे से पढ़ाई की। मुखर्जी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जरूरत होगा तो हम फिर आपको बुलाएंगे बुनियाद कार्यक्रम में। पूरा बिहार और झारखंड आज जो आपसे बात हुई ये सुनकर लाभ उठाएगा युवा साथी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, चलने का वक्त धीरे धीरे करीब आता चला जा रहा है, पैसा नहीं है, क्या हुआ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, वैसे कोर्स को चुनिए जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है। टेक्निकल पढ़ाई करनी है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में 13-14 टेक्निकल पढ़ाई, मेडिकल से शुरू करके पैरामेडिकल से एग्रीकल्चर, बहुत सारे हैं, आप पता कर लीजिए इन नंबरों पर 9431899002 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर है 1800120051, इस नंबर पर पता कर सकते हैं। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने ये बुनियाद कार्यक्रम लेकर आने का राजेश को मौका दिया। चलते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: तो श्रोताओं, अभी आपने हमारा साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम सुना बुनियाद, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सब प्रेम नमस्कार। जिला जनसंपर्क कार्यालय कैमूर से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा आज जिला के 170,788 पेंशनधारियों को DBT के माध्यम से अंतरित की गई जुलाई माह की पेंशन राशि। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 1 करोड़

1,32,888 पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जुलाई माह की पेंशन राशि 1,100 रुपये प्रति लाभार्थी सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। वही एक अन्य सूचना के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित 19 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं रोहतास जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार रोहतास जिले में 9 से 17 अगस्त तक मनाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान। जी हां, सासाराम समाहरणालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अगस्त 2026 यानी आज जिला पदाधिकारी रोहतास के निर्देशानुसार जिले में 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से जिले वासियों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान तथा देश के प्रति कर्तव्यों की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के प्रथम दिन 9 अगस्त को जिले की सभी पंचायतों के पंचायत सरकार भवनों में पंचायती राज विभाग के माध्यम से तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक सहायक, मुखिया, सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। एक अन्य सूचना के अनुसार जिला जनसंपर्क कार्यालय रोहतास से खबर है कि आज दिनांक 10/8/2026 को मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में रोहतास के जिला पदाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया गया। बैठक में ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं उपभोक्ता सहित अन्य विकास विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। मुफ्त बिजली योजना, विद्युत आपूर्ति, टीबी मुक्त भारत अभियान, लंबित ASIR, राशन कार्ड एवं हर घर तिरंगा अभियान सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के उपरांत जिला पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए विद्युत वितरण कंपनियों, बैंक प्रतिनिधियों एवं कार्य एजेंसियों को बैंक ऋण आवेदनों का शीघ्र निष्पादन, अनावश्यक अस्वीकृतियों में कमी तथा लाभुकों को समय पर ऋण स्वीकृति एवं सब्सिडी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं राशन कार्ड निर्माण एवं नाम जोड़ने के विशेष अभियान में पात्र परिवारों की शीघ्र पहचान कर सभी आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा लंबित CMR यानी कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। श्रोताओं, आइए सुन लेते हैं एक नगमा।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: तीनों कॉलेज में,
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो

0: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
0: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
2: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
0: वो कहाँ है?
2: मिठाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: खतरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
11: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
8: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में कई भव्य तिरंगा यात्रा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,01,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए है तैयार। और सीतामढ़ी के विक्रम उमेश कुमार ने पेरू के लिमा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई यह यात्रा गांधी मैदान स्थित जेपी कोलंबर से शुरू हुई और करगिल चौक पर समाप्त हुई। एक रिपोर्ट।
1: हाथों में तिरंगा, जुबा पर देशभक्ति के नारे और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते लोग। मौका था

0: हर घर तिरंगा अभियान के तहत पटना में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा का। यात्रा में राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवकों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जगह जगह तिरंगे से सजी राजधानी में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा मार्ग राष्ट्रभक्ति के नारों और देशभक्ति गीतों से गूंजता रहा। तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और इसका सम्मान करना हर भारतीय का दायित्व है। उन्होंने लोगों से जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील की।
1: मैं पूरे बिहार वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ, तमाम लोग पंचायतों में स्तर से कार्यक्रम कर रहे, नगर निकाय में कार्यक्रम को किया जा रहा और यहाँ के बाद किसी तरह के कार्यक्रम करके वहाँ भी यात्रा करने का काम किया जाए। इसलिए अभी से लेकर 17 तारीख तक हम लोग सभी लोग जब भागीदारी करके और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ संस्कृति विभाग के द्वारा कला संस्कृति विभाग के द्वारा लगभग 21 लाख घंटे पूरे प्रदेश में इस अभियान में जुड़े हैं।
0: इधर जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत पंचायत स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अररिया, शेखपुरा, कैमूर, औरंगाबाद, मुंगेर और पटना समेत विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए हृदय स्पर्शी बन गया है। श्री शाह ने नागरिकों से अपील की कि वे तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से इस अभियान में भाग लें और उत्साहपूर्वक मनाएं। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्ष से सदन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यवाही में बाधा नहीं डालने का आग्रह किया।
4: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान

0: हंगामा नहीं करेंगे और गृहमंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: जदयू से राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि विपक्ष का रवैया संसद को किसी भी हाल में नहीं चलने देने का है, उनको जवाब से कोई मतलब नहीं है।
2: कॉपरेट तो करे विपक्ष, सकारात्मक डिस्कशन होने दे, उसमें सारी बात आ जाएगी, उसमें कहाँ दिक्कत है। इससे पहले भी जब रहा है हर एक इशू पर वो बोलते रहे, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो पार्लियामेंट किसी हाल में नहीं चलने दे, उसको किसी जवाब से नहीं मतलब कि कौन क्या जवाब है।
1: राजद के संजय यादव ने कहा कि विपक्ष आम लोगों की भावना को सदन में रख रहा है, विपक्ष के दबाव के कारण ही सरकार इस मुद्दे को लेकर चर्चा कराने पर सहमत हुई है।
3: विपक्ष जो जमीन पर जन भावना है उसको सदन में रख रहा है। 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, आज हम 10 अगस्त को बात कर रहे हैं, 21 दिन बाद विपक्ष ने इन पर दबाव डाला है, तब जाके ये राजी हुए हैं।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,01,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में मासिक पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इसके तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और बिहार निःशक्तता पेंशन योजना समेत 6 योजनाओं के लाभार्थियों के बीच राशि का हस्तांतरण किया गया। लगभग 1,158 करोड़ रूपये अंतरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: बहुत खुशी हो रही है कि आज लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को एक साथ हम लोग सभी के खाते में 1,100 रुपये का पेंशन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वृद्धजन है, विधवा बने और दिव्यांग, ये तमाम लोग समाज में अपने आप को आगे बढ़ा सके, और पेंशन के माध्यम से मूल भावना है कि उनके जीवन यापन आसानी से चल सके।
1: मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद थी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिसीमन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
6: पंचायत के चुनाव परिसीमन के बाद होने हैं, परिसीमन के बाद पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। दोनों ही काम है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाना है, तो टाइमलाइन हम कमिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब विभाग की तरफ से जो भी सहयोग किया जाना है निर्वाचन आयोग को, सारा सहयोग दिया जा रहा है, और पूरी कोशिश है कि विभाग की ओर से भी सही समय पे काम पूरा हो परिसीमन का, और उसके उपरांत चुनाव कराए जाएंगे।
1: प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 12,000 से अधिक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी आज सामूहिक अवकाश पर है। इन सभी ने विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। शिक्षक संगठनों ने प्रस्तावित अधिनियम से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पूर्णिया के श्रीनगर में सबसे अधिक 58.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है।

0: इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 11 अगस्त को उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग में कुछ जगहों पर आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है।
0: आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है।
2: सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर

0: धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहली बार कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। समाचार कक्ष से कल्पना झा।
1: सीतामढ़ी के विक्रम उमेश कुमार ने पेरू के लिमा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। श्री कुमार ने यह पदक पुरुष एकल वर्ग में अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में भारत के ही विजेंद्र को पराजित किया। विक्रम उमेश कुमार सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी गांव के रहने वाले हैं। वे अब तक 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप ने आज बिहार पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान दिया। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति संशोधन नियमावली 2026 के तहत दोनों की औपबंधिक नियुक्ति की गई है। पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने दोनों नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों का स्वागत किया। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दोहन ने जिला प्रशासन और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरुआत की। सहरसा, समस्तीपुर और गया में विभिन्न किसान और मजदूर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,01,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से मासिक पेंशन की राशि भेजी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए है तैयार। और सीतामढ़ी के विक्रम उमेश कुमार ने पेरू के लिमा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: दीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना।
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
3: कैमूर की पहाड़ियों और ऐतिहासिक विरासत को समेटे रोहतास में सावन के साथ प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का रंग भी गहरा हो गया है। सावन की दूसरी सोमवारी पर गुप्ता धाम से लेकर सासाराम के माँ तारा चंडी धाम, बुढ़वा शिव मंदिर

0: और तिलेश्वर धाम तक शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजन कर रहे हैं। इधर गुप्ता धाम और ताराचंडी धाम में श्रावणी मेला लगा है, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इंद्रपुरी बराज से सोन नदी में 17,591 क्यूसेक और पूर्वी और पश्चिमी संयोजक नहरों में 12,440 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचने से रोहतास समेत अन्य जिलों के किसानों को सिंचाई में राहत मिली है। नहरों में पर्याप्त पानी पहुंचने से धान की रोपनी और सिंचाई के कार्य में तेजी आई है। धान के कटोरे के नाम से मशहूर रोहतास में धान की रोपनी अंतिम चरण में है। जिले में करीब 96% रोपनी पूरी हो चुकी है। किसानों को उर्वरक की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। किसान भी खेती के काम में पूरी तरह जुटे हुए हैं। शारदीय खरीफ 2026 के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत जिले के डेहरी प्रखंड के किसानों को धान के खेतों की मेड़ पर अरहर की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत खेत की खाली पड़ी मेड़ों का उपयोग कर किसान बिना अतिरिक्त भूमि के अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि डेहरी प्रखंड को 236 इकाई का लक्ष्य मिला है। एक इकाई में किसान को 240 से 625 मीटर तक खेत की मेड़ पर अरहर की बुआई करनी होगी। वर्तमान में 200 इकाइयों के लिए 2 क्विंटल बीज प्राप्त हुआ है तथा प्रत्येक किसान को 1 किलोग्राम बीज निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले में 19 मॉडल स्कूल और 5 नए डिग्री कॉलेज शुरू किए गए हैं। विकास योजनाओं को गति देने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार समीक्षा और स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने अस्पताल, यातायात, पर्यटन स्थलों, बिजली, जल जमाव और विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जिले में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का काम तेजी से चल रहा है। बीते दिनों कार्य प्रगति को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। अब तक सैकड़ों घरों के छतों पर सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इच्छुक उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर संयंत्र लगाने का काम भी जारी है। इससे बिजली की बचत के साथ उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को भी कम करने में मदद मिल रही है। जिले में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में भी गतिविधियां हुई है। सिरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप पिच वर्कशॉप आयोजित की गई। ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहे स्थानीय स्टार्टअप की उपलब्धियां भी चर्चा में रही। विक्रमगंज अनुमंडल के घोसिया खुर्द स्थित उत्कर्ष सीबीजी प्लांट का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पराली और कृषि अवशिष्ट से तैयार किए जा रहे कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और सरकार तथा जिला प्रशासन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। जिले के सदर अस्पताल परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से बने मॉडल हॉस्पिटल में अब चिकित्सीय सेवाएं शुरू हो गई है। फिलहाल ट्रामा सेंटर, इमरजेंसी वार्ड और जनरल वार्ड का संचालन यहां किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को भी मॉडल हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया जा रहा है। सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव और मरीजों की सुविधाओं को लेकर प्रशासन ने निरीक्षण किया है और शीघ्र समाधान की योजना तैयार की जा रही है। संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता, समानता, सेवा और मानवता का संदेश के साथ जिले में भी कलश यात्रा निकाली गई। संत रविदास के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 7 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम जिले में आयोजित किए जा रहे हैं और फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के 11 साल पुराने एक मामले में अदालत ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसंधान के आधार पर आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है।
1: अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ई मन पसंद। ई मन पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला नगमा जंगल लव फिल्म से। मनोहर उदास और अनुराधा पौडवाल के।

शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अधीवा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान, करणवीर हाउस भूचो कैंसिया बठिंडा पंजाब से इस गीत को सुनने के लिए हमें मेल किया। प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत ने, तथा आपने भी सुनना चाहा इस गीत को, आप हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से, अजीज़ भाई, मतीन भाई, शैक चंद फारूक फूल वाले।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे 8:15 से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में यूपीआई लेन देन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉक्टर

मनोरंजन ओझा की गाई इसी रचना के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बंदगी के तहत असलम अकरम साबरी की गाई ये रचना।

बंदगी के तहत अभी आप असलम अकरम साबरी की गाई रचना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण। तत्पश्चात रात्रि 10 बजे से सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इन प्रसारणों की कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिल्म संगीत के चाहने वालों में बिरला ही कोई होगा जिसने महल फिल्म का ये गीत ना सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक के मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश की। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें समुचित सम्मान और प्रसिद्धि मृत्युपरांत मिली है। खेमचंद प्रकाश उन्हीं में से एक थे।

0: हेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। न केवल संगीत बल्कि नृत्य की भी आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक नर्तक थे। किशोरावस्था में ही खेमचंद प्रकाश को पहले बीकानेर और उसके बाद में नेपाल के राज दरबार में गायक कलाकार के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। आगे किस्मत उन्हें कोलकाता ले आई, जहां वे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर्स में नियुक्त हुए। 1935 में बनी फिल्म देवदास के संगीतकार तिमिर बरन के सहायक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। 1938 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक मजाहिया गीत भी गाया।
1: रास्ते में ठोकर खाई और चोट देखो आई और चोट देखो

उसके बाद खेमचंद प्रकाश मुंबई आ गए। शुरुआत हुई 1939 में। सुप्रीम पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्में मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन के लिए उन्होंने संगीत निर्देशन किया।

और फिर बहुत जल्द रणजीत मूवीटोन फिल्म स्टूडियो के नियमित संगीतकार के रूप में खेमचंद प्रकाश नियुक्त हुए। उस शुरुआती दौर में रणजीत मूवीटोन की फिल्में थीं दिवाली, होली, परदेसी, फरियाद इत्यादि। उन दिनों खेमचंद प्रकाश के गीतों में ज्यादातर स्वर होता था खुर्शीद का। इस जोड़ी ने 40 के दशक के आरंभ में बहुत से मशहूर गीत दिए। 1943 में बनी रणजीत स्टूडियो की फिल्म तानसेन जबरदस्त हिट हुई।

बिरद आपनो बिसरत काहे बिरद आपनो ये अचरज है।

1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी। इस फिल्म में एक गायक के रूप में किशोर कुमार को सबसे पहला अवसर दिया संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने। जिद्दी का ही एक और गीत जो लता जी ने गाया था, संगीत प्रेमियों द्वारा खूब पसंद किया गया।

क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरनमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए पीक डेफिसिट्स को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस प्रोत्साहन को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट इसके बारे में पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है, डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जा सके। मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी एक कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम्स घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर उसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के सोल्यूशन को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई हैं।

0: पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवर, ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है तो वो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है। कोई आएगा तो अच्छा है, स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकेंड सप्लीमेंट्री सतरम सिंह सांडो जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सभापति महोदय। ये विषय जो कि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती हैं प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब के डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता REC से PFC से थी, लेकिन REC PFC एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम्स या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा क्लोज करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्युटी पाई गई, उस एम्बिग्युटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
1: श्रीमान विजय चंदाकालिया जी, श्रीमान विजय चंदाकालिया जी,
3: धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूर्णिमा माता ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, सर दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। First in my bloodline, I am witnessing this green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore.

0: 120 gigawatt of renewable energy capacity and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. Sir, my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion, sir.
1: Honorable Minister.
2: सभापति महोदय, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूं बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन्स की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम आरओडब्ल्यू का जो फैक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की हैं। और नई गाइडलाइंस, मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइन जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे देंगे।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा। सो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है, सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर,
2: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशिएंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर काज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है, और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो ये स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो उसका हम जवाब देंगे।
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। रस रंग के तहत लीजिए सुनिए हिंदी एल्बम सॉन्ग्स।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मीना रोहरा और आज़म अली मुकर्रम की गाई इसी रचना के साथ ही रस रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, सावन नाम है प्रकृति के श्रृंगार करने का। सावन नाम है पौधों के भी सजने और संवरने का। दिशाओं के महकने का भी नाम है सावन। सावन नाम है युवती के हाथों में मेहंदी रचाने का। सावन नाम है दिलों में और भी मिठास भर लेने का। जब कभी भी सावन की बूंदें गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पायलों की झनकार कानों तक पहुंचती चली आ रही हो।

0: कुछ कहता है।
1: जी हाँ, सावन तो जरूर कुछ कहता है। आप सुने तो सही, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो जो प्रतिध्वनि पैदा होती है वो यही कहती है कि जिंदगी में सजीवता रखिए, जिंदगी में खुशहाली रखिए, आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी को रसमय बनाइए, खुशियों में सराबोर होइए। क्योंकि मिट्टी के साथ जब बारिश की बूंदें मिलती हैं तो जो सुगंध निकलती है वो तो यही कहती है ना कि ज़िंदगी के लिए हवा, पानी, मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी पर्यावरण को प्रदूषित न करें और शानदार वातावरण बनाएं।

श्रोताओं, आसमान में जब सितारे निकलते हैं तो उनकी दुनिया को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे जिंदगी उन्हें झांकते रहने को विवश करती है, क्योंकि सितारों की दुनिया बहुत ही हसीन है। वो कहते हैं ना कि चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है। जी हाँ, एक ही सितारा हसीन लगता है ना, और यहाँ तो सितारों की फौज जब आसमान में दिखे तब कैसा मंजर होता होगा, कल्पना करने की चीज़ है। और वैसे भी जब बादलों से चांद निकलता है तो उस रौनक के भला क्या कहने।

श्रोताओं, यादें हमारे चारों तरफ घूमती फिरती एक दुनिया होती हैं, जिनके सहारे हम बीते हुए दिनों को, या ये कह लें कि अतीत को दोहराते हैं, याद करते हैं।

श्रोताओं, यादें हमारे चारों तरफ घूमती फिरती एक दुनिया होती हैं, जिनके सहारे हम बीते हुए दिनों को या ये कहें कि अतीत को दोहराते हैं, याद करते हैं। हमारी यादों में कई खट्टे मीठे अनुभव भी भरे होते हैं, जहाँ से हम आगे की ज़िंदगी, आगे की राहों को तय करते हैं, अपने मंजिलों की तरफ बढ़ने की कोशिश। हमारी यादें हमारी सहचर होती हैं, दोस्त होती हैं।

श्रोताओं, हम कुछ सपने सोते हुए भी देखते हैं, कुछ सपने हमारी कल्पनाओं के भी रूप होते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सपने आमतौर पर दमित इच्छा शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं जब हम नींदों में होते हैं। वैसे महान साइंटिस्ट और दार्शनिक APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि सपने वो नहीं जिन्हें हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। जी हाँ, अपने सपनों को साकार करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। सकारात्मक विचारों का उदय हो, दृढ़ संकल्पित हों, सपने सच होंगे।

तो श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम चित्रपट तराने का आखिरी नगमा सुन रहे थे और इसी गीत के साथ ही आज के चित्रपट तराने कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक नजर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

जी हाँ, प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास आप नित्य प्रति सुनते हैं 7:30 से, और 8 आप सुनते हैं समाचार प्रभात। देशभक्ति संगीत 8:15 पर और 8:20 पर आप सुनते हैं। पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार 8:48 पर आप सुनते हैं और 9:10 पर हिंदी फिल्म संगीत गीत मालिका सुनते हैं। नौ बजकर 30 पर विविध भारती की प्रस्तुति आज के फनकार सुनिएगा। 10 हिंदी समाचार दिल्ली से प्रसारित, और 10:05 पर आप कल सुनेंगे हमारा साप्ताहिक प्रसारण आवाज। लोक माधुरी के अंतर्गत भोजपुरी एल्बम लोक गीत आप सुनते हैं 10:30 पर, और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स आप सुनते हैं रसधार कार्यक्रम के नाम से 10:45 पर। तो श्रोताओं, यह थी कल के प्रातःकालीन प्रसारण में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। अब एक नज़र कल के मौसम पूर्वानुमान पर। कल का अधिकतम तापमान 34 सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 सेल्सियस

सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और हवा में आर्द्रता 72% संभावित है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तो इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध